मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 15 जून सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है मंगल ध्वनि के साथ।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भागीदार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। कार्यक्रम के आज के अंक में आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 157 से दोहा संख्या 159 की अंतिम चौपाई तक का पाठ। संगीतकार सतीश भाटिया।
1: एपिसोड नंबर 60। 60

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

शाम 6:40 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे हमारे जयपुर केंद्र से। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें, डायरी को अपना दोस्त बनाएं, डिजिटल होता इंडिया, मौसमी फलों का सेवन। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ताकार श्रीमती अनीता व्यास की वार्ता, विषय है महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता और पारिवारिक सामंजस्य। शाम 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा स्वस्थ नींद के लिए योग। लघु जानकारी के विषय रहेंगे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्क लाइफ बैलेंस है जरूरी, शिक्षित युवा विकसित भारत, कोलायत सरोवर।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्य। वृक्षारोपण पूर्व स्थान का चयन है महत्वपूर्ण। सुकन्या समृद्धि योजना, तेज गर्मी में नवजात बछड़ा बछड़ियों की देखभाल।

सुबह 8:30 पर सौरभ कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ताकार सुभाष चंद्र बिश्नोई की वार्ता, विषय भारतीय शिक्षा में हिंदी का महत्व। और सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 10:00 हमारी इसी सभा में, दिन के 11:35 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8:00 और पुरानी फिल्मों से गीत आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर।

0: ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम खेती की बातें, राइजोबियम कल्चर की उपयोगिता विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री रामस्वरूप बिश्नोई।
1: किसान भाई राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आज आप बातचीत करा राइजोबियम कल्चर की उपयोगिता। कृषि रा जानकार लोग बतावे कि आ एक कल्चर है जकी ने आप जीवाणु खाद री एक महती भूमि

0: मान सको हो। एर मायने हुए कहीं किसान भैया कि राइजोबियम जो कि कल्चर है बा एक जीवाणु खाद रे रूप में किसान तैयार करे जके सु कहीं वे कि हवा रे मायने जो नत्रजन लेवन वाला जीवाणु है बे काफी मात्रा में रिया करे बे काम ओ करे कि दलहनी जो की फसल है बारो उत्पादन बढ़ाने खातर घना उपयोगी हुए। जी हाँ, आप हर फसल रे खातर जैविक खाद रो उपयोग करो, ये बात री सलाह दी जावे कि रासायनिक खाद री जगह जैविक खाद री बात करो। तो आज आप एक जैविक खाद री ही बात कर रिया हाँ। इर मायने दलहनी जो की फसल है बारी जो की जड़ा है बारे माथे गांठियां बनुड़ी रेवे और बां गांठियां रो निस्तारण करण वास्ते दलहनी फसल रे मायने राइजोबियम जो की कल्चर है बिरो प्रयोग करनो कृषि रा जानकार लोगों री फूट री सिफारिश है। जरूरत है कि अपन ई कल्चर ने समझनो है बा वायुमंडल ने एक तो फूट रो बनाए बिर मायने जो की पाई जावन वाली नाइट्रोजन गैस है बीर खातर भूमि ने स्थिरीकरण रो काम करे टिकाऊ बनावे और बाबा जीवाणुआ ने सक्रिय कर एरा अपनी जितनी भी दलहनी वर्ग री फसल है जके रे मायने अपरा मूंग है मोट है चणो है अने फूट रो उत्पादन लेवन खातर किसानों ने फूट री सिफारिश करी जावे कि आप राइजोबियम कल्चर रो उपयोग करो। करनो कहीं है कि आप ने दलहनी वर्ग री फसल री बुआई पहली इन तरह री एक उपचारित विधि अपनावनी है बिना आप लोग राइजोबियम कल्चर रो नाम दियो और एडो करने सु किसान जका है दलहनी फसल री जकी उत्पादन क्षमता है बा एक हेक्टर है मायने 30-40% बढ़ा सकेला। आप ही दो जे खेती करो बीरी जगह आप 30-50 किलो नाइट्रोजन प्रति साल जे डाल करो ला तो आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ेली। अब थाने बताने री बात आ है कि बी कल्चर रो आप उपयोग किया करो तो आप दलहनी फसल रे बीज ने बुआई पहली राइजोबियम कल्चर उपचारित करनो है। इर खातर आप आधा लीटर पानी रे मायने 50 ग्राम गुड़ रो घोल बनाए अर बी घोल रे मायने 10 मिनट ताई गरम कर पाछ ठंडो करनो है। जरूरत आ है कि बीर मायने आप 250 ग्राम जको राइजोबियम कल्चर रो पैकेट है बीर मायने 25 किला बीज रे माथे डाल और तावड़ ने हुकार हिया में सुकावनो है जके उ कही वे कि बीरी क्षमता फूटरी बनेला और चौखी बनेला। अब ठेके हो यहाँ कर मन फायदो कहीं हुई फायदो हुई कि जका भी राइजोबियम जीवाणु है बे नाइट्रोजन ने पौधे ताई पहुंचाने रो काम करी और वो नाइट्रोजन बा पौधा रे मायने ठीक रूप में ठहरुड़ो रही रुकुड़ो रही जके निशाना लोग स्थिरीकरण के वे बिसु कहीं हुई कि रासायनिक खाद और दूजी खाद री उर्वरका री जरूरत आपने कोनी पड़े और दलहनी वर्ग री जितनी भी फसल है बारो उत्पादन आप बढ़ा सकोला। इनरो प्रयोग करने हूँ आप जानोला कि रासायनिक नाइट्रोजन री आपने बचत हुएला दूजी जकी एक्स्ट्रा आप री खर्चाली बात है बा कम हुएला और फसल रे उत्पादन में वृद्धि हुएला। राइजोबियम जीवाणु कई करे कि कई कई है कि जका दूजा हानिकारक तत्व है बाने तो नष्ट कर दे और फसल रे मायने विटामिन और प्रोटीन बढ़ाने रो काम करे पौधे री जकी बढ़वार है बा बढ़ जावे और जड़ा रो विकास जो है वो बेसी हुए। इरो प्रयोग करने हूँ खेती री लागत है सीधी सीधी कम हुए और आप दूजी जकी खाद है बारो उपयोग करने री जरूरत कोनी तो वो खर्चो भी आप निकल जावे और रासायनिक खेती न कर आपने जैविक खाद देने री सलाह हर वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक दिया करे और बियारी आपने कल्चर ने उत्पादन ने बढ़ावन खातर जरूरी है क्योंकि जे आप रासायनिक उर्वरक रो काम बतों बतो लेवला तो वातावरण माथे भी दुष्प्रभाव पड़ेला। और काम वो है कि राइजोबियम जकी कल्चर है बिरो उपयोग करने सु आपने जका लाभदायक जीवाणु है बे और फूटरी बात है कि आपरी भूमि रे मायने कैंसुआरी जकी संख्या है बा बढ़ेली। अब देखो हगड़ा किसान चाहे कि मारी जकी खेतरी भूमि है बट मैं जैविक खाद रो प्रयोग करूँ कंपोस्ट खाद रो प्रयोग करूँ तो बट है कैंचुआ बढ़ेला बे कैंचुआ है बे अपना हगला मोटा मित्र है और भूमि री उर्वरा क्षमता ने कम न कर बढ़ाने रो काम करे कि जरूरत आ है कि आप वक्त मत है राइजोबियम कल्चर है बिरो उपयोग बतो बतो करा। और एक सावचेती और एक सावधानी आ रखनी है कि जको आप राइजोबियम कल्चर रो सीधो प्रयोग कर बीज तैयार करो बने कदे तावड़े में ना सुकाया सिया में सुखा उपयोग करया और आगे आगे ही बात ने बढ़ाया अपनी खेती ने बढ़ाओ दिया।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में राइजोबियम कल्चर की उपयोगिता विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री रामस्वरूप बिश्नोई। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। सुबह के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, आज का दिवस अपने आप में बेहद ही अद्भुत है, बेहद ही विशेष है, क्योंकि आज के दिन को एक विशेष जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वह जागरूकता दिवस हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे गार्जियन से जुड़ा हुआ है। आज 15 जून है और 15 जून को पूरे विश्व भर में बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे लिए सौभाग्य नहीं, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि बुजुर्गों से कैसे व्यवहार करें यह सिखाने के लिए इसके प्रति जागरूकता दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। आजकल के दौर में हम बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि वे बेहतर पैकेज की नौकरी पाने वाले व्यक्ति बनके उन स्कूलों से बाहर निकल सके। आजकल हम बच्चों को जर्मन, फ्रेंच और अदर लैंग्वेजेस इसलिए सिखाते हैं ताकि उन्हें वर्ल्ड की इन कंट्रीज में हाई पैकेजेस पे जॉब करना पड़े या फिर हमारी ही कंट्री में इन लैंग्वेज से संबंधित कोई जॉब्स हो तो उन्हें मिलने में आसानी हो। लेकिन हम एक बात की अवहेलना करते हैं, हम एक बात को भूल जाते हैं। जो बात है वो यह कि हम भले ही हाई पैकेजेस पे काम कर लें, जॉब कर लें, खूब पैसा भी कमा लें, लेकिन अगर हमें किसी से व्यवहार पूर्ण बातचीत नहीं करना आती, व्यवहारपूर्ण तरीके से किसी के मन को चोट पहुंचाए बगैर हमें उससे बिहेव करना नहीं आता है, तो फिर हमारा ये हाई पैकेज और ये पैसा किस काम का। आज पूरे विश्व भर में 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे भारत देश के संदर्भ में तो यह और भी बड़ी बात है, जहां पर पेड़ों को पूजना सिखाया जाता है, नदियों को पूजना सिखाया जाता है, पशु पक्षियों से प्रेम करना सिखाया जाता है और बड़े बुजुर्गों को तो यहाँ तक आगे के सुबह उठते हमें उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। पांव धो, चरण स्पर्श करने का जो कल्चर है वो सिर्फ हमारी भारत भूमि पर ही है। और ऐसे में हमें यह सिखाया जा रहा है कि हमें बुजुर्गों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए, उनसे दुर्व्यवहार न हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब हम क्या करें, करने को तो हम इतना कुछ कर चुके हैं कि संतानें विदेशों में जॉब कर रही हैं, अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात यह कि हमने ही अपने कर्मों से वृद्धाश्रम को जन्म दिया है। कहने को हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हों, आज हालात यह हैं कि पूरे भारत देश में कोई भी मंदिर श्रद्धालुओं की कमी से खाली नहीं पड़ा। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें करोड़ों रुपए का चढ़ावा नहीं आता हो। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां पर दर्शन के लिए लोगों को रोका जा रहा है क्योंकि इतनी अधिक भीड़ हो गई कि प्रशासन उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नियंत्रित नहीं कर पा रहा। चारों धाम भरे पड़े हैं श्रद्धालुओं से, पैर रखने तक भर की भी जगह नहीं है। लोग श्रद्धा में, भगवान को पूजने में भावनाओं से इतना ओतप्रोत हैं कि उन्होंने अनजाने में ही भारत देश में वृद्धाश्रम को जन्म दे दिया। कैसे हुआ यह सब, क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ी वृद्धाश्रमों की? अगर संतानें ईश्वर में इतनी श्रद्धा रखती हैं तो ईश्वर तो हमें कहते हैं कि सबसे पहले पूजनीय हमारे माता पिता हैं। हम उनकी अवहेलना करके, उनकी दवाइयों की व्यवस्था करे बगैर, उनके फूड की व्यवस्था करे बगैर चार धाम की यात्रा करने में व्यस्त हैं।

और श्रद्धालुओं ने चढ़ावा दे देकर इतनी भेंट चढ़ा दी है कि मंदिर ही नहीं, मंदिर में जो भी लोग जुड़े हुए मंदिर से करोड़ोंपति हो चुके हैं। और एक तरफ वृद्धाश्रम में लोग डोनेशन करने वालों की बाट जोह रहे हैं, कोई आएगा डोनेशन करके जाएगा तो हमारे लिए कमलों का इंतजाम होगा, कमरों में ट्यूबलाइट की व्यवस्था होगी, कूलर की व्यवस्था होगी, या फिर आज के बढ़िया से ब्रेकफास्ट की व्यवस्था होगी, कोई तो डोनेशन करने आएगा ही। हाँ जरूर आएगा, वो व्यक्ति आएगा जिसे शायद चार धाम की यात्रा करने में विश्वास न हो लेकिन लोगों की सेवा करने में विश्वास हो, वो व्यक्ति जरूर आएगा। और उन्हीं व्यक्तियों की वजह से आज पूरे देश भर में अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम चल रहे हैं। श्रोताओं, हमें हर पल हर क्षण ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के मंदिर में पूजा हो चाहे न हो लेकिन हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रॉपर फूड, प्रॉपर वस्त्र और प्रॉपर मेडिसिन की व्यवस्था होना जरूरी है। जवानी क्षण भर की है, बुजुर्ग अवस्था आना सब में तय है, सभी को बुढ़ापे के दौर से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में अगर हम अपने माता पिता की दवा और उनके फूड की व्यवस्था नहीं कर सकते तो हाँ फिर उन्हें वृद्धाश्रम में धकेलना तो बन ही जाता है, ऐसा मौका बन पड़ता है कि हमें उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़ता है। वृद्धाश्रम तो छोड़िए, कुछ लोग तो अपने माता पिता को चौराहों में, गलियों में, मंदिरों के बाहर भीख मांगने के लिए भी छोड़ देते हैं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है श्रोताओं, क्योंकि एक न एक दिन वृद्धावस्था या बुढ़ापे के वो दिन हमारे में भी आना है। और अगर हमारी संतान यह देखती है तो वह हमसे यही व्यवहार करेगी। हमें जब हम बीजारोपण इस तरह का कर रहे हैं तो हमें फिर यह उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हमारी जो संतान है वो हमारी सेवा करेगी। जब हम बच्चों की स्कूल की शिक्षा देते हैं, जब हम बच्चों को अच्छा खाना देते हैं, जब हम बच्चों को अच्छे कपड़े देते हैं, तब हम उलाहना देते हैं ना कि तुम्हारी शिक्षा पे मैंने 20 लाख खर्च किए या तुम्हारे फूड पे मैंने 50 लाख इन्वेस्टमेंट किए। तो फिर बच्चा बड़ा होने के बाद में आपको सिर्फ पैसा दे सकता है, सहारा नहीं दे सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के आधार पे तो आपको सिर्फ रिटर्न मिल सकता है और वह रिटर्न पैसों के रूप में ही मिलेगा। रिटर्न कभी भी आपको आपकी सेवा के रूप में नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने भी पग पग पर बच्चों को इस बात की उलाहना दी थी कि मैंने आपकी शिक्षा पर इतने रुपए खर्च किए, शहर की सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में इतनी महंगी फीस पर आपका एडमिशन कराया था, और आप है कि जॉब करके कुछ पैसे ही नहीं कमा पा रहे हैं। तो बच्चा आपको सिर्फ रिटर्न दे सकता है, आपकी सेवा नहीं कर सकता। जैसे संस्कार आप अपने बच्चों में देंगे वे उसी रूप में आपसे बिहेव करेंगे। दुनिया की सारी स्कूल, दुनिया की सारी मित्र मंडली फेल है उन व्यवहार के आगे जो व्यवहार बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। आज बड़े ही दुख का विषय है कि हमें अपने श्रोताओं से ये बात साझा करनी पड़ रही है, बोलना पड़ रहा है कि आज 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बात पर गौर जरूर कीजिएगा श्रोताओं, हम भी गौर करते हैं। सूचनाओं के साथ एंटरटेनमेंट को आपसे साझा करने का इसी क्रम में सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हम इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और भगवान से हम प्रेम भले ही करें या न भी करें, हमें सर्वप्रथम अपने माता पिता से, अपने गार्जियन से प्रेम करना चाहिए। बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में अनायासी छोटी मोटी बीमारियां उन्हें घेर लेती है। छोटे मोटे जो शारीरिक रोग है, व्याधियां हैं, उनका होना तय है, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और शारीरिक ढांचा इतना मजबूत नहीं हो सकता या होता है जो फूड से पूरा पोषण पाले। ऐसे में उनको दवाइयों की भी व्यवस्था होती है। तो एक खास बात यह भी कि उनकी साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होता है। अगर साफ सफाई नहीं रखी जा रही है उनके शरीर की, जिस कमरे में, जिस घर में वह रह रहे हैं उस घर की, तो भी उनमें छोटी मोटी बीमारियां होना तय है। ऐसे में उन्हें आप दवाइयों के बोझ से कुछ हद तक मुक्ति दिलाने के लिए योग की भी सलाह दे सकते हैं, योग सिखा भी सकते हैं। आजकल ऐसी सोशल साइट्स हैं

जहाँ पर योग से जुड़े विशेष प्रोग्राम, विशेष एपिसोड चलाए जाते हैं। उनके माध्यम से आप उन्हें योग घर पर ही करा सकते हैं अगर चलने में सक्षम नहीं है। अगर चल फिर सकते हैं तो विभिन्न जो पार्क हैं वहाँ पर भी ऐसे ट्रेनर उपलब्ध हैं जो योग सिखाते हैं। तो आप अपने बुजुर्गों को योग सिखाएं, उन्हें योग से जोड़ें। योग शब्द का मतलब होता है टोटल, जुड़ना, जोड़। जोड़ को योग कहते हैं। योग अपने आप में मनुष्य के शरीर का ईश्वर से कनेक्शन का जुड़ाव है। मन को, जो कि बहुत अत्यधिक चंचल होता है, मन मस्तिष्क में एक ही बार में सैकड़ों हजारों विचार आते हैं, उनको नियंत्रित करने का जो बहुत ही साधारण सा उपाय है वह है योग। तो आप अपने बुजुर्गों को योग सिखाएं। बढ़ती उम्र के साथ में वे बचकानी हरकत करने लगते हैं, बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उस क्षण आप ये याद रखें कि आपने भी बचपन में न जाने कितनी बचकानी हरकतें करी, उसके बावजूद आपके माता पिता ने आपको बड़ा किया है। ऐसे में उनकी बचकानी हरकतों को झेलने का भी जो पूरा दारोमदार है वो हमारी पीढ़ी पर है, हम पर है। हम उनकी हर एक आदत को, बात को अपनाएं, उन्हें सुने और उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए उन्हें प्रॉपर फूड, हाइजीनिक फूड दें और कोशिश करें कि उनकी थाली में जो फूड उनको परोसा गया है वो पूरी न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ में हो। और साथ ही साथ उनकी दवाओं के बोझ को कम करने के लिए योग, आयुर्वेद से उन्हें जोड़ें ताकि वे अपनी बढ़ती उम्र के शारीरिक ढांचे के साथ, मुस्कान के साथ, हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जी सकें। यह अधिकार उन्हें इस धरती पर और कोई नहीं दिला सकता। यह अधिकार उन्हें उनकी खुद की संतान दिला सकती है। ऐसे में आप ये कोशिश करें कि भले ही उनकी उम्र में, चूंकि इतनी साधन संपन्नता नहीं थी, कुछ कमियां रह गई होगी, लेकिन आप कुछ कमी ना छोड़ें, क्योंकि आजकल तो हर चीज के साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो भी चीज उन्हें चाहिए, जो भी चीज के अभाव से वो ग्रसित रहे अपनी पूरी जिंदगी में, वह चीज उन्हें लाने की आप पूरी व्यवस्था करें। और कोशिश करें कि आपके मदर फादर में या आपके गार्जियन जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी भी क्यों ना हो, उनके मन में किसी भी अभाव ग्रस्त होने की वजह से हीन भावना ना उत्पन्न हो। अगर वे थोड़ा बहुत भी 15 से 20 मिनट भी स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और वे अपने जीवन को अच्छे से संचालित कर सकते हैं। कई बार उनको फूड से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लो एनर्जी के शिकार रहते हैं, और अगर क्रॉनिक बीमारी से, जो आजीवन चलने वाली बीमारियां अगर उनसे ग्रसित हैं, तब समस्या थोड़ी गंभीर भी हो सकती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि उन्हें योग से जोड़ें। एक कमरे में बंद रखने की बजाय उनको बाहरी दुनिया से भी कनेक्ट करें। मोबाइल में आजकल इतनी सोशल एप्स अवेलेबल हैं कि वे वीडियो कॉल या किसी भी और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने मित्र मंडली से, अपने मित्र जो कुछ सर्किल उनका, फ्रेंड सर्किल, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और रिश्तेदारों से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर उन्हें चलाना नहीं आता है तो आप उन्हें सिखाएं, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। उनके स्वस्थ रहने से लेकर उनके फूड, उनकी प्रॉपर हाइजीन के साथ साथ उनके अच्छे वातावरण के लिए, ताकि वे स्वस्थ मानसिक माहौल में अपना जीवन जी सके। माता पिता का सम्मान करना या उनसे किस तरह से बिहेव करना है, उनकी बातों पर किस तरह से रिएक्ट करना है, ये दुनिया की किसी भी किताब में विद्यमान नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपनी बढ़ती उम्र के साथ बच्चों से जो व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं, कम से कम आपके जो आपसे जो बड़े हैं या आपके जो गार्जियंस हैं, उनकी उन एक्सपेक्टेशन को

फुलफिल करने की कोशिश करें, तो यह तय बात है कि कुछ हद तक आपकी संतान भी इस बात को समझेगी कि हमारे जो माता पिता हैं उनकी बढ़ती उम्र में हमें उनसे किस तरह से बिहेव करना है।

श्रोताओं, आजकल जो है तकनीक का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और तकनीकों में कई नई नई चीज़ों का समावेश होता है, कई नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है और तकनीक अपने आप में अपग्रेड भी होती है, अपडेट भी होती है। आज पूरे भारत देश में इसी क्रम में स्टार्टअप इंडिया का दौर चल रहा है। भारत सरकार इस पर काफ़ी प्रोत्साहन भी दे रही है कि युवा अधिक से अधिक इसमें जुड़े। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत देश की जीडीपी को तेजी दे सकती है, आर्थिक संबल दे सकती है, वह यह कि युवा नौकरी के बजाय स्वयं के रोजगार को अपनाएं, छोटे से ही शुरुआत करें, लेकिन हाँ शुरुआत करें जरूर। स्वयं के व्यवसाय करने वाला व्यक्ति आगे चलकर बड़ा उद्यमी बनता है और नए रोजगार पैदा करता है। अपने साथ 100 लोग, 1000 लोगों की टीम खड़ी कर उनके घर को, उनके परिवार को चलाने की जिम्मेदारी भी एक उद्यमी उठा सकता है। नवाचार अपनाएं, नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, नए आविष्कार करें और नए आविष्कारों से जुड़ी हुई कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग अगर आप अपनाना चाहते हैं तो आप अपने शहर के नज़दीकी रोजगार कार्यालय में संपर्क करें या जिला उद्योग केंद्र संपर्क करें, वहाँ पर अपने उद्यम से जुड़ी हुई जानकारी सबमिट करें और आपको वहाँ से लोन के रूप में जो राशि आपको चाहिए, सहायता राशि चाहिए, वह स्वीकृत होगी और बैंक के द्वारा वह आपको मिलेगी, ताकि आप अपना नवाचार, नव उद्यम शुरू कर सकें। और तो और सरकार के द्वारा उस लोन राशि पर कुछ हद तक छूट भी दी जाती है, ताकि आपको पूरी राशि जमा कराने की जरूरत नहीं होती, साथ ही साथ आप ग्रो कर सकें, जीवन में आगे बढ़ सकें, इसके लिए सरकार से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। एक पूरा सिस्टम कार्य करता है उन लोगों के लिए जो आज के दौर में स्टार्टअप अपना रहे हैं। किसी भी क्षेत्र का, स्पेशली आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, अगर इस क्षेत्र में AI से जुड़े नए स्टार्टअप अगर इंडिया में आते हैं तो पूरा विश्व भर, वैसे भी हमारी भारत भूमि की ओर सदैव आशा भरी नज़रों से देखता है, अगर AI में कुछ क्रांति आती है स्टार्टअप को अपनाकर, तो यह पूरे विश्व भर के आकर्षण का केंद्र रहेगा, अपने आप में अद्भुत होगा। बातों को देते हैं विराम, क्योंकि कार्यक्रम का वक्त हो रहा है पूरा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, एसपी बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है साजन।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

1942 ए लव स्टोरी का ये गीत अभी आपने सुना। स्वर था कविता कृष्णमूर्ति का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है आशिकी, स्वर हैं कुमार सानू का।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और के एस चित्रा की आवाजों में फिल्म लव का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है खामोशी, स्वर है अलका याग्निक और हरिहरन के।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

0: से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जल डमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा

0: आज से शुरू हो रही हैं। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
1: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच

चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं।

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। यूएस एंड ईरान रीच अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड लिफ्ट यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America

सन 2002 में पिछड़े और गरीब तबकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE पारित किया गया। शिक्षा में भाषा की अवधारणा। शिक्षा हम सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्ति के सम्मान, सफलता, आजीविका और पहचान बनाने में मदद करती है। इसी से ही सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक स्तर का निर्धारण होता है। इसलिए शिक्षा और भाषा का गहरा अंतर संबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी भाषा के जनक माने जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में उनका मानना था कि व्यक्ति अपनी भावाभिव्यक्ति मातृभाषा के माध्यम से सरलता और सहजता से प्रकट कर सकता है। इसलिए शिक्षा के लिए अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त और कोई भाषा हो ही नहीं सकती। उन्होंने लिखा है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिए को सूल। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के संबंध में उन्होंने फिर लिखा है, अंग्रेजी पढ़ के जदपि सब गुण होत प्रवीण, बे निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। अर्थात अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही किसी राष्ट्र की उन्नति अवनति निर्भर करती है। अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त ज्ञान विशिष्ट हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि से उसे हीन ही कहा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा के सिवाय और कोई भाषा हो ही नहीं सकती। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा चारों कौशल श्रवण, वाचन, पठन और लेखन परस्पर आदान प्रदान करता है। इसी से समाज और देश में संप्रेषण प्रक्रिया को सुदृढ़ और व्यापक बनाया जा सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का प्रारूप 10+2 की शिक्षा पद्धति के स्थान पर डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा 29 जुलाई 2020 को समस्त भारत में और केंद्र शासित प्रदेश में योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे अधिकांश राज्यों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ एक राज्यों ने इसका प्रतिरोध भी किया है। नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य देश के योग्य नागरिक तैयार करना है, जो देश के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीयता और भारतीयता की पहचान बनाए रख सके, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं के बारे में अपनी समझ बढ़ा सके। नई शिक्षा नीति का मूलभूत ढांचा 10+2 के स्थान पर अब +5+3+3+4 का पैटर्न स्वीकार किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए गए हैं। प्रथमतः 5 वर्ष का अर्थ है प्रथम 3 साल तक प्राइमरी स्कूल, उसके बाद 2 साल तक कक्षा 1 व कक्षा 2 में पढ़ना। इसके बाद 3 का अर्थ है कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ना होगा, और आगे 3 का अर्थ है कक्षा 6, 7 व 8 तथा आगे 4 का अर्थ है 9, 10, 11 व 12। कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में ही दी जाएगी। कक्षा 6 से व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप की शिक्षा दी जाएगी। इसका प्रधान उद्देश्य भारत के युवाओं को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय शिक्षा का माध्यम और हिंदी। आजादी के पश्चात से ही शिक्षा का माध्यम एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। उस समय अंग्रेजी का वर्चस्व था, उर्दू हिंदी का बोलबाला कम था। अनेक देशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक देश एक भाषा का सिद्धांत अपनाया गया था। भारत बहुभाषी राष्ट्र है, जहाँ संविधान में 22 से अधिक भाषाओं को मान्यता दी गई है, साथ ही अनेक उपभाषाएं व बोलियां बोली जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने जिस भाषा का स्वागत किया था वह ब्रज भाषा थी, वही एक हिंदी का रूप थी। इसी प्रकार बालकृष्ण शर्मा ने लिखा है, राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। यदि हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बात की जाए तो संविधान के भाग 5, 6 और 17 में समाविष्ट है। भाग 5 के अध्याय 120 में लिखा है कि संसदीय कामकाज की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। इसके प्रचार प्रसार के लिए हिंदी सप्ताह, पखवाड़ा, हिंदी दिवस आदि मनाया जाए। इसी क्रम में 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया गया था। भारतीय भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। यह भाषा अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। नई शिक्षा नीति 2020 में भी त्रिभाषा सूत्र फार्मूला को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत पहली भाषा मातृभाषा होगी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान है। दूसरी गैर हिंदी भाषियों के लिए हिंदी और हिंदी भाषियों के लिए 8वीं अनुसूची में से कोई एक भाषा होगी। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी अंग्रेजी होगी, ताकि भारतीय विश्व से आसानी से जुड़ सके। इसका कुछ विरोध कर रहे हैं तो कुछ

0: सहमत है। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए गए हैं। इसे चार चरणों में बांटा गया है। फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 3 से 8 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत भाषा कौशल और शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन कर उसके विकास को ध्यान में रखा जाएगा। प्रीपेट्री स्टेज, 8 से 11 साल के बच्चे जो कक्षा 3 से 5 तक के होंगे, जिसमें बच्चों का संख्यात्मक कौशल को मजबूत किया जाएगा और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। मिडिल स्टेज, इसमें कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के छात्रों को लिया जाएगा, जिसमें शैक्षिक पाठ्यक्रम को खत्म कर बहुवैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। छात्र किसी स्ट्रीम के भीतर नहीं अपितु अपनी मनपसंद के अनुरूप अपने विषयों को चुन सकता है। भारतीय शिक्षा और हिंदी की चुनौतियां। अगर हिंदी भाषा की एक भाषा के तौर पर सामयिक स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो इसके सामने अनेक चुनौतियां हैं। वैश्विक स्तर पर आज भी अंग्रेजी का वर्चस्व और प्रभुत्व है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी की जगह अंग्रेजी को ज्यादा जगह मिलती है। खैर, इतना होते हुए भी हिंदी अपना संघर्ष जारी रखे हुए है, जो एक दिन विश्व की भाषा बन सकेगी। भारतीय शिक्षा और हिंदी का महत्व। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। जिस क्षेत्र में बोली जाती है वहाँ उस समाज और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत रही है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से प्राचीन हिंदी का विकास हुआ है। अवहट को ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्राचीन हिंदी का नाम दिया था, जो आज आधुनिक हिंदी के रूप में हमारे सामने है। यह सर्वविदित है, किसी भी राष्ट्र की पहचान उस देश की भाषा से ही होती है। हिंदी के सामने चुनौतियां तो है, लेकिन अच्छी संभावनाएं भी है। कोई भी भाषा स्थिर नहीं होती। कहा भी गया है, 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर वाणी। निरंतर विकास और प्रगति ही भाषा को स्वस्थ और जीवित रखती है। उसका अन्य भाषाओं के साथ आदान प्रदान उसे समृद्ध और मजबूत बनाता है। हिंदी विश्व के 150 से अधिक देशों में फैले 2 करोड़ भारतीयों में बोली जाने वाली भाषा है तथा 40 देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। सर्वे के अनुसार विश्व में मंदारिन एक भाषा है के बाद हिंदी सबसे बड़ी भाषा है। फिजी की राजभाषा हिंदी है। इसके अतिरिक्त मॉरिशस, सुरिनाम, त्रिनाद, गुआना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल आदि देशों में बहुतायत से हिंदी बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 40% भारतीयों की भाषा हिंदी है। इसके अतिरिक्त 75% भारतीयों की दूसरी भाषा हिंदी है, जो इसे बोल और समझ सकते हैं। देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विस्तार ने हिंदी को महत्व दिया है। बॉलीवुड की फिल्मों में बढ़ती लोकप्रियता ने हिंदी भाषा को देश विदेश में पहचान दी है। अब दक्षिण की संस्कृति और कलाकारों, कहानीकारों की कथाओं को अपनाने से हिंदी की स्वीकारता में वृद्धि हुई है। UTFN कोडिंग के उपयोग से हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग इंटरनेट पर अधिकाधिक होने से इसका दायरा बढ़ा है। मोबाइल क्रांति ने तो खूब ही इसका सहयोग किया है। वर्तमान में गूगल के माध्यम से हिंदी भाषा को नई ऊर्जा मिली है। इंटरनेट के माध्यम से लेखन से हिंदी भाषा की स्वीकारता संपूर्ण देश में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। भारत में अंग्रेजी भाषा में जहां विषय वस्तु का निर्माण 19% है, वहीं हिंदी के लिए ये आंकड़ा 94% है। देश का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ा है। परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत के लोग दक्षिण में और दक्षिण भारत के लोग उत्तरी भारत में घुल मिल गए हैं, जिससे भाषा के विकास को गति मिली है। शिक्षा प्रणाली में त्रिभाषा सूत्र के फार्मूले से हिंदी का महत्व और अधिक बढ़ा है। यूनेस्को द्वारा भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिए मातृभाषा दिवस की शुरुआत की है। मातृभाषा में संवाद, वार्तालाप, चिंतन, विचार विमर्श से हिंदी का महत्व बढ़ा है। हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा अहिंदी भाषी क्षेत्रों की रचनाओं का अनुवाद अपनी भाषा में करने से देश में इसकी स्वीकारता तेजी से बढ़ती जा रही है। हिंदी भाषा का महत्व निर्विवाद है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। यह भारत की पसंदीदा आधिकारिक राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा है। इसका वृहद साहित्य, शब्दकोश, व्याकरण, साहित्यकार हैं। भाषाई विविधता, व्यापकता सभी भाषाओं को आत्मसात करने वाली सर्वगुण संपन्न भाषा है। हिंदी की 18 उपभाषाएं देशी विदेशी शब्दों को अपने में आत्मसात करने वाली श्रेष्ठ भाषा हिंदी है।
1: सौरभ, कार्यक्रम में अभी आपने सुनी वार्ता भारतीय शिक्षा में हिंदी का महत्व विषय पर। वार्ताकार श्री सुभाष चंद्र बिश्नोई।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित समाचार तरंग।

आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

0: मैं हूं आपके साथ सलेहा। श्रोताओं, जैसे जैसे हम 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर बढ़ रहे हैं, पूरे देश में योग के प्रति जागरूकता और उत्साह का माहौल भी बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धीरज जैफ, वरिष्ठ आचार्य, फिजियोलॉजी विभाग और प्रभारी अधिकारी योग ओपीडी एसएमएस अस्पताल जयपुर। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका आज के कार्यक्रम में आकाशवाणी स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि योग किस तरह हमारे जीवन को बेहतर और संतुलित बनाता है।
1: योग हमारे प्राचीन समय की विधि है जो हजारों हजारों साल के ऋषियों की रिसर्च के बाद में उन्होंने योग का आविष्कार किया। योग मूल रूप से एक आध्यात्मिक मार्ग रहा है जो एक ईश्वर प्राप्ति का साधन रहा है, पर अभी वर्तमान में आध्यात्मिक के साथ में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत अति आवश्यक है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करके ये बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है कि योग स्थापित हुआ है और जो हमारा योग है वो हमारे पास ही रहा है, बाहर नहीं गया है, नहीं

0: बाहर से जाके रिटर्न होके जब वहाँ से आता है तो योग से, जैसे योगा हो गया योगा से, पर वो नहीं रहा कि आज योग हमारे देश में वापस से पुनः स्थापित हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण से, और ये योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग का ये 11वां संस्करण है और पूरी दुनिया में ये एक वैश्विक स्वास्थ्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो खुद को सेहतमंद और चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ही योग की प्रासंगिकता आज के जीवन में पहले से ज़्यादा क्यों हो गई है?
0: अभी हमारी जो जीवन शैली है, कंपिटेटिव युग है, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए आपको, और आर्थिक युग हो गया है, तो इस युग में भागदौड़ बहुत हो गई है, समय व्यक्ति के पास कम है, तो कम समय के लिए योग सबसे लाभप्रद है कि आप कम समय में कम संसाधनों से आप स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं इसलिए। और दूसरा जो स्ट्रेस, उसमें योग बहुत ही लाभकारी है, तो शारीरिक स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आज के संदर्भ में योग बहुत महत्वपूर्ण है।
1: सर, आयुष मंत्रालय की ओर से इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है उसे रखा गया है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, और योगा फॉर हेल्दी एजिंग के साथ ही 15 जून से 21 जून तक पूरी तरह से योग सप्ताह को ही, इस सप्ताह को योग सप्ताह के रूप में डेडिकेट किया गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं?
0: योग के बारे सब लोग जानते हैं, पर जैसा कि मनुष्य की प्रकृति है कि वो धीरे धीरे उसको भूल जाता है, इसलिए ये योग सप्ताह है तो वापस से पुनः उसको याद दिलाने के लिए कि योग जीवन के लिए कितना लाभप्रद है, और जो लोग अब तक योग से नहीं जुड़े हैं नए लोग, उन लोगों को जोड़ने के लिए ये योग सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। और जो शिथिलता काम करते करते जीवन में, सामान्य जीवन में शिथिलता आ जाती है, थोड़ी स्लोनेस आ जाती है, उसको वापस से स्थापित करने के लिए, वापस से जगाने के लिए योग सप्ताह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक हैं।
1: और योग सप्ताह के अलावा ही 100 दिन पहले ही काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो जाता है और कई जगह सामूहिक योगाभ्यास शिविर लगाए जाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है अकेले की बजाय अगर मिलजुल कर या सामूहिक रूप से योगाभ्यास करें तो थोड़ी मोनोटनी भी ब्रेक होती है और वो दिलचस्प भी लगता है।
0: निश्चित रूप से योग अकेला जब व्यक्ति रोज करता है तो करते करते एक मोनोटोनस सा उसका हो जाता है, तो जब सामूहिक योग करते हैं और जब साथ में योग करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे से आपको सीखने का मिलता है और आपका जो आलस्य है वो दूर रहता है, इसलिए सामूहिक योग करना चाहिए बीच बीच में ताकि आपकी निरंतरता बनी रहे।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि तनाव और चिंता हमारी जिंदगी का हिस्सा ही हो गई है और बहुत दौड़ती भागती जिंदगी है, ऐसे में इन समस्याओं का समाधान अगर खोजें तो उसमें योग कितना प्रभावी है?
0: देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि योग एक आध्यात्मिक मार्ग रहा है, पर वर्तमान में देखें तो आध्यात्मिक के साथ में पुराने ऋषि मुनि इसलिए योग करते थे कि वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक साधना करें, इसको साधना करें, इसलिए ये हेल्थ है, योग का एक बाई प्रोडक्ट है, इसके द्वारा हम जो स्ट्रेस है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसको प्राप्त करने में योग अति महत्वपूर्ण है, जिसे प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इसके लिए बहुत ही ये लाभप्रद है। और जो आज की जीवन शैली है उसमें कम समय में और स्ट्रेस को, तनाव को कम करने के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि जीवन में आप थोड़ा बहुत भी समय निकाल पाते हैं प्रतिदिन 15 से 20 मिनट भी, कुछ प्राणायाम आप कर पाते हैं, मेडिटेशन आप नियमित कर पाते हैं, तो आपको स्ट्रेस कम करता है और आपकी जो कार्यशैली है और आप उसमें वृद्धि करता है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बार बार एम्फेसिस किया कि ये सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि इससे मानसिक स्पष्टता भी आती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ और भावनात्मक संतुलन में भी ये बहुत ही मददगार है, लेकिन कुल मिलाकर आती है बात अनुशासन की, तो इसके नियमित रूप से करने पे ही इसके फायदे सामने आते हैं, तो किस तरह प्रेरित किया जा सकता है नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, कि वो उनका रुझान योग की ओर बढ़े?
0: निश्चित रूप से जो अपने साप्ताहिक कार्यक्रम ये करते हैं तो उससे नई पीढ़ी को रुझान मिलता है, उसको एक मार्ग मिलता है, और उसको हम बार बार उसको ये समझाने की आवश्यकता है कि, और वो समझ भी रहे हैं, आज के नई पीढ़ी वाले योग भी बहुत करें कि उनके पास समय कम है तो योग करते हैं और योग उनके लिए लाभप्रद भी हो रहा है। तो दुनिया में कोई भी व्यायाम ऐसा नहीं है जो तीनों स्वास्थ्य आपको एक साथ देता हो, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, तीनों स्वास्थ्य आपको एक साथ मिलते हैं। बाकी आप जिम जाते हैं तो शारीरिक आपकी हेल्थ ठीक रहती है, बॉडी बिल्डिंग होती है, पर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो योग एकमात्र है। तो उसको नियमित करने से, एक तो डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है योग के लिए, कि नियमित योग करना चाहिए।

0: जब आदमी एक बार योग शुरू कर प्रारंभ करता है तो प्रारंभ भी लगता है थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे जब उसको आनंद आता है, नियमित करता है, तो एक समय एक तय होना चाहिए आपका, अर्ली मॉर्निंग आपको घर से निकलने से पहले आप योग करें। कुछ लोगों का समय नहीं मिलता, शामकाल भी भोजन से पहले योग कर सकते हैं, परंतु प्रातःकाल योग करना ठीक रहता है, आप फ्री रहते हैं, आपका शरीर ठीक रहता है, मन भी शांत रहता है। तो एक समय तय करें और नियमित योग करें। योग निरंतरता है, योग आराम से करने की चीज है, योगासन स्नेह स्नेह आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करना। इसलिए हरी और करी ये इसमें नहीं चलेगा, योग को आराम से करना है, मानसिक स्वास्थ्य के साथ में करना, आनंद के साथ में करना है, तो योग का बहुत ही लाभ प्राप्त होगा।
1: जी, अभी अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सी बीमारियां भी हमारी जीवन शैली का एक तरीके से हिस्सा ही बन गई है, चाहे वो हृदय रोग की बात हो, मधुमेह हो या मोटापा हो, हम इन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। तो ऐसे में इन बीमारियों के दुष्प्रभाव हैं, उन्हें कम करने में योग की क्या भूमिका है?
0: जैसे मैंने अभी कहा कि हरी और करी, हमारा खान पान भी करी हो गया है और बहुत जल्दबाजी में है, तो ये लाइफ मॉडिफिकेशन जब हुआ है तो ये सारी डिजीजेज हमारी लाइफ में आई हैं प्रोग्रेस के साथ में। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और बहुत सारी जो कैंसर वगैरह है, ये सारे खानपान से हमारा और अपने रूटीन से सारी डिजीज, स्ट्रेस हमारा बहुत बड़ा है, डिप्रेशन बहुत बड़ा है, ये सारी जो बीमारियाँ पहले कभी नहीं थी अभी बीमारियाँ बढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से योग उसमें बहुत लाभप्रदक है। माइग्रेन की समस्या बहुत बढ़ रही है, ऐसे में हम योग उपड़ी में मरीज हमारे पास आते हैं, उनका नियमित इलाज भी करते हैं, रिसर्च भी करती है। पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ी है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। तो इनमें योग बहुत फायदेमंद है, नियमित योग करने से, प्राणायाम करने से, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम करने से, और कुछ आसन हैं पर्टिकुलर डायबिटीज वगैरह में, पर इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने टेबलेट खाई, इंसुलिन का इंजेक्शन लिया, आपका ब्लड शुगर ठीक हो गया, ऐसा नहीं, बहुत समय चाहिए, धैर्य चाहिए। निश्चित रूप से ये प्रिवेंशन भी है, यदि आप पहले से कर रहे हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी, और यदि हो गई है तो उसको क्योर कर सकते हैं, कुछ दवाइयां आपकी डॉक्टर सलाह लेके उसकी डोजेस कम हो सकती हैं, मेंटेनेंस में उसमें बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, योग उसमें बहुत ही लाभदायक है।
1: यानी कुल मिलाकर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर साहब, आपने समग्र स्वास्थ्य की बात कही, तो क्या नियमित योगाभ्यास करने से इन दवाइयों पर निर्भरता भी कम हो सकती है?
0: निश्चित रूप से, जैसे डायबिटीज़ है तो पेशेंट यदि अपने खान पान पर ध्यान रखे, मीठा या शुगर कम रखे, तो निश्चित रूप से जो दवा ठीक रहती है, और यदि वो उसका घूमना फिरना रेगुलर है, व्यायाम इसका निश्चित एक मापदंड पे रहता है, और यदि योग करता है, देखिए योग में क्या होता है, निश्चित एक आसन वगैरह हैं वो अच्छे रहते हैं, तो इसमें डेफिनेटली दवाएँ कम हो सकती हैं और लाभ मिलता है उसमें।
1: डॉक्टर साहब, अभी हमने नई पीढ़ी की बात की और हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर आजकल के युवाओं को तनाव हो जाता है, चाहे पढ़ाई का हो या कॉम्पिटिटिव एज की बात करें या करियर को लेकर, और अवसाद में भी चले जाते हैं। ऐसे में योग इनकी किस तरह मदद कर सकता है?
0: देखिए, कुछ प्राणायाम करें, कुछ शारीरिक व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम जिसको कहते हैं, और मेडिटेशन करें, और कम समय में आप आजकल आप वर्क स्पेस में भी योग कर सकते हैं, आप जो सीट पर बैठे बैठे आपको सूक्ष्म व्यायाम अगर कर सकते हैं, बीच बीच में जिनके लॉन्ग सेटिंग रहती है, बहुत स्ट्रेस का काम रहता है, बहुत टारगेटेड इनका रहता है, तो वहाँ भी आप ऑफिस में भी योग कर सकते हैं, आजकल ऐसे चल रहा है, तो बीच में आप कुछ समय रिलैक्स कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, खाने के 2 घंटे बाद कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, खाने के ठीक बाद नहीं करें, सुबह मॉर्निंग में करें, तो थोड़ा समय अपने को निकालना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि यदि आपको लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो आपका शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, कि पहला सुख निर्गुण है, बाकी सब व्यर्थ है माया। तो यदि आप स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप कितने भी हैं एनर्जेटिक हैं तो आप लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। इसलिए योग को लाइफ में अपनाइए और स्वस्थ रहिए।
1: इसके साथ ही आपने बात की कि चाहे योगासन हो या फिर श्वास व्यायाम हो या फिर संक्षिप्त ध्यान, अगर सुबह समय नहीं मिलता तो इन्हें दिन में किसी भी समय किया जा सकता है।
0: निश्चित रूप से कि प्रातःकाल का समय ठीक रहता है, आपके पास समय रहता है, घर से निकलने से पहले आप फ्रेश रहते हैं, पर कोई बात नहीं, यदि प्रातःकाल नहीं कर पाए तो आप इवनिंग में जब वापस आप घर पे लौट के आए तब भी आप भोजन करने से पहले आप कर सकते हैं, और वहाँ भी समय नहीं मिले तो आप ऑफिस में जब भी समय मिले आपको खाने के तुरंत बाद नहीं करें, खाने के 2-3 घंटे बाद में कुछ प्राणायाम है, दीर्घ श्वसन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और कुछ देर का ध्यान है, आप बैठिए, आप बैठे बैठे ध्यान कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। तो जब भी आपको समय मिले योग कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ में बनाएं कि नियमित योग करना है तो सब ठीक रहता है।
1: डॉक्टर साहब, आप क्या सलाह देंगे कि क्या इसे ऑनलाइन सीखा जा सकता है और प्रैक्टिस किया जा सकता है, या इन पर्सन जाने में ही इसका ज़्यादा फायदा है?
0: देखिए, ऑनलाइन में आप एक मार्गदर्शन ले सकते हैं, एक आपको आइडिया मिल जाता है, पर बिना गुरु के आप योग नहीं करें, ऑनलाइन

0: ऑनलाइन देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास कई आते हैं कि सर हमने ये आसन किया था, हमारे बैकएक हो गया, हमारी ये प्रॉब्लम हो गई, हेडेक हो गया, इसलिए ऑनलाइन नहीं करें, किसी भी योग्य गुरु के सानिध्य में योग सीखें, फिर योग आपको करना चाहिए।
1: योग को लेकर कई तरह के प्रयोग भी किए जा रहे हैं। हाल ही में हवाई यात्रा के लिए भी योग प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे यात्रा संबंधी तनाव कम होता है, कई बार रक्त संचार जो बढ़ जाता है उसमें भी सुधार होता है। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है, क्या हवाई यात्रा के दौरान भी योग से सहायता मिलती है?
0: योग आप कहीं भी कभी भी कहीं कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। हवाई यात्रा में यदि आप जा रहे हैं तो दीर्घ श्वसन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, और श्वास क्रियाएं आप कर सकते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं। स्ट्रेस आपका रहता है उसमें तो आप तो थोड़ा सा मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, कोई एंजाइटी रहती है, कुछ को फोबिया रहता है, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। और कुछ हाइट पे जाने पे कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसमें प्राणायाम वगैरह ये मेडिटेशन बहुत निश्चित रूप से लाभकारी है।
1: सर एक सवाल ये रहेगा कि क्या अलग अलग आयु वर्ग के लिए या पुरुष और महिलाओं के लिए भी योगासन कॉमन है या इसमें भी कुछ फर्क होता है?
0: देखिए 8 साल की उम्र के बाद में बच्चा जब खेलता तो ठीक है, 8 साल के बाद में 60 साल तक आप कभी भी जब आपका शरीर काम कर रहा है तो आप योगासन आप कर सकते हैं। कुछ आसन हैं जो महिलाओं के लिए वर्जित हैं, जैसे मयूरासन वगैरह है, तो वो ऐसे आसन महिलाओं के लिए वर्जित, बाकी और सब आसन कर सकते हैं। तो कुछ वर्जित आसन वो नहीं करें महिलाएँ, और मासिक धर्म के समय कुछ आसन से आपको वो नहीं करने चाहिए उस समय, बाकी पूरे समय में ऐसा जेंडर बायस नहीं है कि वो मेडिटेशन भी कर सकती हैं, योग भी कर सकते हैं, पर जो आसन से हैं जो उनसे नुकसान हो सकता है वो आसन नहीं करें।
1: और अंत में हम आपसे ये कहेंगे कि स्वस्थ और संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने के लिए योग की बड़ी भूमिका है, इसे लेकर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जैन मैंने अभी कहा कि यदि आप निरोगी हैं तो ठीक है, इसलिए पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब व्यर्थ माया, इसको ठीक कर ले रे भाया, नहीं तो बिगड़ जाएगी तेरी काया।
1: बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक अंदाज में आपने अपना संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। हमारे अतिथि डॉक्टर धीरज जैफ का बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों से, अपनी बातों से हम सभी को समृद्ध करने के लिए। और श्रोताओं आपसे यही अपील है कि योग दिवस 2026 पर हम सब मिलकर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर सकारात्मक कदम बढ़ाएं। इसी संदेश के साथ अनुमति आपको बता दें, कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, संपादन माधुरी वशिष्ठ, प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है, अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत, चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। हॉर्मुज से विश्व की कुल तेल आपूर्ति

0: के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा, युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, इनोवेटर, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मौजूद हैं। जयपुर में कल कृषि और सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि अच्छी पैदावार के लिए किसान मिट्टी की जांच के आधार पर और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ही उर्वरकों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए, ताकि किसानों की वास्तविक जरूरत का सटीक पता चल सके। बैठक के दौरान उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी राज्य में खाद की निर्बाध आपूर्ति का पूरा भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही कृषि पर्यवेक्षकों को गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 700 सी मार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। इन सी मार्ट को अच्छी व्यापारिक संभावनाओं वाले स्थानों पर खोला जाएगा, ताकि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को आसानी से बाजार मिल सके। बैठक में महिला उद्यमों को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण विकास सचिव ने योजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लखपति दीदी, सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जैसी श्रेणियों में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि जयपुर के सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे देश के मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समन्वित कार्य योजना के साथ मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर के विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजधानी में कचरा संग्रहण, परिवहन और इसके वैज्ञानिक निस्तारण के लिए बेहतर कार्य योजना बना

0: कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खुले में कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही मॉनसून सीजन को देखते हुए जयपुर में जलभराव रोकने और नालों की सफाई के लिए समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी और बारिश का दौर जारी रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रविवार को जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और टोंक सहित कई शहरों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। दौसा और चित्तौड़गढ़ में तेज अंधड़ से पेड़ गिरने के समाचार हैं। और ब्यौरा हमारे जयपुर संवाददाता से।
1: बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक वर्षा 44 मिलीमीटर जयपुर के चौमू में दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के 7 शहरों में अधिकतम तापमान अब भी 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। फलौदी 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं सिरोही में सबसे कम 22.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। न्यूज रूम से मैं जयकिशन शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: हनुमानगढ़ में आज सुबह तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। इसके साथ ही जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। जिले में हुई बारिश से किसान नरमा, कपास और धान की फसल को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल पाली जिले में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान स्थानीय सांसद पीपी चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन नीतियों का सीधा लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने कम प्रीमियम वाली छोटी बीमा योजनाएं शुरू कर आमजन को बड़ी राहत दी है।
2: गरीबों की बात करें तो उनके लिए विभिन्न तरह की जो योजनाएं, बीमा योजना लेके आए हैं, जो 12 रुपए की भी है, 424 रुपए की भी है, इस तरह से छोटी छोटी अमाउंट की बीमा योजना ला कर करके उनके घरों में एक सुरक्षा प्रदान की है फाइनेंशियल। और उसके साथ साथ आज देखेंगे विश्व में भारत जो है आज एक नंबर पे है इस मामले में खाद्य सुरक्षा अपने नागरिकों को देने, और आने वाले टाइम में 2029 तक 5 करोड़ घर देने का टारगेट, और यही नहीं पानी के लिए हर घर नल के द्वारा पानी, इसके लिए करीब 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत। चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को

0: छू कर देखा।
1: आह कितने सुंदर कंचे। ओह
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
1: अरे अरे लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
2: सात का पहला सुनो।
3: सात एकम सात,
4: सात एकम सात,
3: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
5: आ गया।
1: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
1: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
1: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
1: रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
6: अप्पू।
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
6: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
6: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
6: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी।
6: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
1: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।

0: हाँ हाँ बता, डरना मत।
1: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
0: हाँ हाँ
2: वो कांपते हुए बोला,
1: वो कंचा।
0: कंचा?
2: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
0: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका, सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है,
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो?
0: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
0: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
0: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
0: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
0: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
0: क्या, कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
0: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
0: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
0: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
0: किधर?

0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिझकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
3: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
1: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
4: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
1: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी

0: कर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
1: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
2: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
2: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
1: दे दो।
2: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
1: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
1: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
1: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
3: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
3: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
4: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

NCERT। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है मोहरा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की

90 साल और एक स्वर्णिम सफर। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

बागी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, मीत ब्रदर्स मोनाली ठाकुर की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है कलयुग, स्वर है अतीफ असलम का।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार।

नोटबुक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहित चौहान और विशाल मिश्रा की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है भूल भुलैया, स्वर है के का।

रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह की आवाजों में फिल्म तुम बिन टू का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए हर्षित सक्सेना के स्वर में। फिल्म का नाम है मर्डर टू।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं फिल्म OMG 2 का ये गीत। इस गीत को गाया है हंसराज रघुवंशी ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
3: धन्यवाद।
2: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
3: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
2: जी।
3: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
2: जी।
3: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
2: जी।
3: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया, चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई में
2: जी।
3: तो हमारे युवा लगभग 30, 40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
2: जी,
3: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
2: जी,
3: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने AI चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइम लाइन। हमारे 95-97% जहाँ पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहाँ हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, AI ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके

0: 13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी एक हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
0: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए, हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O ब्यूट्रोस ऑक्साइड। लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है। और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233 जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है, अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं, अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स हैं जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाएं, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इंटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद बड़े हाउसेज तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोडमैप तैयार किया गया था

0: किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
1: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है। वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पर 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 वर्टिकल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली। यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
0: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता। क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
1: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें अभी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
0: जी।
1: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं। हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वैन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए ये उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
0: जी।
1: और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज हैं उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
0: जी।
1: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने ईजाद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया था, क्या था वूंड्स पे, तो वहां से पता चला कि साहब ये इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
0: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाएगी?
1: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट

0: सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: जी अब देखिए, आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी। आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए। और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बहुत ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशंस के लिए इस्तेमाल किया है उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिद्धूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए, लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, ना बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यही शोध किया, यही पले बले, और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें
0: तो? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत, वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं। और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर

0: सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बढ़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है। इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे चार अलग अलग हैं, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है। 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है खतरे का बायस तो ही है लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है, तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहां 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है, भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर, तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms.

इस गीत को हमने चुना है फिल्म आर पार से। इस गीत को गाया है गीता दत्त ने, गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सवारा है ओपी नैयर ने।

भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आबरू से, गाया है मोहम्मद रफी ने।

0: भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। अब रुख करते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। इस गीत को हमने लिया है फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।
1: बकियन का मेहमान है फिर भी जाने ना।
0: गीत को लिखा है शकील बदायूं ने और संगीत से सवारा है हेमंत कुमार ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म 12 o'clock का ये गीत। इस गीत को गाया है गीता दत्त ने। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और तर्ज बनाई है ओपी नैयर ने।

गीता दत्त के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत भूले बिसरे गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है।

0: उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मोंटेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:05 और ठीक 10 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का कार्यक्रम विवरण। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे रूपक, छोटी काशी के शिव, लेखक रहेंगे श्री राजा राम स्वर्णकार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर। दिन में 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत। चर्चा का विषय रहेगा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें, डायरी को अपना दोस्त बनाएं, डिजिटल होता इंडिया, मौसमी फलों का सेवन। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे एक वार्ता, विषय रहेगा महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता और पारिवारिक सामंजस्य। वार्ता का रहेंगी श्रीमती अनीता व्यास। साथ ही रसोई से व्यंजन बनाने की विधि के साथ कुछ देंगे ब्यूटी टिप्स और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत।

हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा स्वस्थ नींद के लिए योग। साथ दी जाएगी लघु जानकारी। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। वर्क लाइफ बैलेंस है जरूरी। शिक्षित युवा विकसित भारत। कौलायत सरोवर और रोजगार समाचार के साथ होगा क्विज टाइम और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। संध्या 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से अनुप्रसारित करेंगे। संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। चर्चा का विषय रहेगा इस सप्ताह के कृषि कार्य। वृक्षारोपण पूर्व स्थान का चयन महत्वपूर्ण। सुकन्या समृद्धि योजना। तेज गर्मी में नवजात बछड़ा बछड़ियों की देखभाल। मौसम की जानकारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी के साथ सुनवाएंगे कुछ लोकगीत। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 9:15 पर लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। पुरानी फिल्मों से गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। खेल जगत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे, जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे कुछ गजलें। तो ये थे हमारे आज शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का कार्यक्रम विवरण।

वाहन को सदा नियंत्रित गति से चलाएं। वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें। साथ ही चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना ना भूलें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग कभी ना करें। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:10 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं रूपक छोटी काशी के शिव। लेखक हैं श्री राजा राम स्वर्णकार।

0: सुनो सुनो सब जन मिल के सुनो, आकाशवाणी बीकानेर के जेपी मीना लेकर आए हैं राजस्थान दर्शन में श्री राजा राम स्वर्णकार का रूपक छोटी काशी के शिव।
1: मेहरबानो कदरदानो साहिबानो बांदानो खानदानो, आज आपके लिए लेकर आए हैं छोटी काशी के शिव के दर्शन। नटी मेरे साथ है, अरे नटनी, ओ नटनी, अरे कहाँ है तू?
2: एरे नट, ऐसे क्या अकेला अकेला बोले जा रहा है?
0: हाँ ए नटनी, हर कोई अकेला ही तो बोल रहा है।
2: जानती हूँ, मगर यह छोटी काशी, यहाँ सब मिलकर एक स्वर में बोलते हैं, तो तुम्हें क्या नजर लग गई?
0: अरे मुई, नजर लगे मेरे दुश्मन को? मेरे जैसे काले कलूटे को भला नजर लग सकती है?
2: बीकानेर काले गोरे का भेद नहीं करता, यहाँ समता की सरस्वती सदियों से बह रही है।

0: तभी तो कहते हैं कि बीकानेर छोटी काशी है। यहाँ हर संप्रदाय, हर धर्म के लोगों में आपसी भाईचारा, स्नेह, पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मिलकर मनाने का वर्षों पुराना रिवाज आज भी जिंदा है।
1: यहाँ मानव केवल कृति से नहीं अपितु संस्कृति से अपना जीवन निर्माण करता है।
2: ओम सौराष्ट्रे सोमन।

0: नाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम।
1: संस्कृति मानव की आत्मोन्नति का मापदंड भी है और आत्म अभिव्यक्ति का साधन भी।
2: मध्यकालीन राजपूताने की रियासतों में बीकानेर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

0: जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर में राठौर राज्य की स्थापना की।
1: और राव बीका ने नए राज्य की स्थापना हेतु 100 घुड़सवारों और 500 सैनिकों के बल पर अपने भाइयों, चाचा और अन्य साथियों सहित बीकानेर के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और देशनोक, चांडासर, कोडम देसर में निवास करते हुए 1488 ईस्वी में राती घाटी में बीकानेर राज्य की नींव।

0: शक्ति और कूटनीति को आधार बनाकर श्री करणी जी के आशीर्वाद से राव बीका ने 3000 गांवों पर अपना अधिकार कर लिया। इसका प्रभाव पूगल से फतेहपुर और भटिंडा से नागौर तक विस्तारित माना जाता है। यहीं पर उसने अपने आप को शासक घोषित कर बीकानेर राज्य स्थापित किया।
1: बीकानेर राज्य आधुनिक बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों से मिलकर बना था, जिसकी सीमाओं पर बहावलपुर, लोहारू, हिसार, फिरोजपुर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर राज्य अवस्थित थे। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से राजपुताने में ये दूसरे नंबर पर था।
0: जहां बीकानेर राज्य विस्तारित रहा, वह जांगल प्रदेश के रूप में विख्यात था।
1: इसी क्षेत्र में सरस्वती और दृष्टवती जैसी पवित्र नदियों के बहने के साक्ष्य उपलब्ध है।
2: ओम गंगा जमुना सरस्वती कावेरी कौंती।
1: मनुस्मृति और महाभारत के भीष्म पर्व में भी इस प्रदेश का उल्लेख मिलता है।
3: मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ।
0: हाँ हाँ, तभी तो बीकानेर को छोटी काशी कहते हैं।
4: छोटी काशी का तात्पर्य ऐसा है कि महाराज बीकानेर के जो महाराजा, प्रसिद्ध महाराजा थे श्री गंगा सिंह जी, तो यहाँ पढ़ाई का अभाव था। मतलब आगे पढ़ने के लिए लोगों को दिक्कत होती थी। उन्होंने क्या किया कि बनारस के अंदर जहाँ जहाँ मुख्य धाम है वहाँ बीकानेर के लिए अलग अलग, वहाँ बनारस विश्वविद्यालय के अंदर बीकानेर का अलग प्रकोष्ठ बना हुआ है कि यानी कि बीकानेर के लोग ही जो आके आएंगे तो वहाँ रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था होती थी। जो बीकानेर के पंडित लोग हैं और भी है, वो संस्कृत है, साहित्य है, गंगा है, रुद्री है, यजुर्वेद है, गीता है, जो भी है संस्कृत है, छह दर्शन बताए गए, इसमें ज्योतिष भी है, दर्शन भी है, शास्त्र है, गीता है, तो वांग्मय है, तो उनको पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं हो, उसके लिए वो वहाँ जाते थे। उनको वहाँ बनारस के अंदर खाना पीना रहना की सब महाराजा गंगा सिंह जी की तरफ से सुविधा होती थी। वो फिर वहाँ से पढ़ कर आकर के यहाँ के जो पंडितों को, जो ब्राह्मण बच्चों को है, जो प्रतिभावान होते हैं, उनको पढ़ाते थे। इसलिए उनको क्या है, छोटी काशी, वो भी काशी है, ये छोटी काशी इसलिए नाम प्रसिद्ध दिया है कि वो बनारस है। बनारस कह दो, काशी कह दो, वाराणसी कह दो, तीनों एक ही नाम है। वहाँ जो गंगा सिंह जी, उनको जो यहाँ के भगत, जो पंडित पुष्करणा ब्राह्मण है, और भी पवारिक भी जाते थे, कंडेलवाल भी जाते थे, शर्मा मतलब साग जी भी जाते थे, तो वहाँ से पढ़ करके आते विद्वान वो, कि वो अपने यहाँ अपने भक्तों को पढ़ाने प्रयास करते थे। और इसी आधार पर वो गंगा सादुल जो विश्वविद्यालय, गंगा ये सादुल ब्रह्मचारी आश्रम है, तो उसमें पढ़ाते थे वो गंगा सिंह। तो ये इस कारण ये छोटी काशी का संबंध है कि वो बड़ी काशी है और ये छोटी से वहाँ से पढ़ करके विद्वान पूरा शिक्षा

0: अर्जन करने के बाद में यहाँ आते थे और यहाँ के लोगों को पढ़ाते थे।
1: पुराणों और अन्य प्राचीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि पूर्व में यहाँ समुद्र था।
2: अरे वाह!
1: जो भूगर्भीय और भौगोलिक परिवर्तनों के कारण उभर कर रेगिस्तान क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। मेरे शहर के लोग अलबेले हैं, रसीले हैं, गर्वीले हैं, अपनी मस्ती में डूबे हुए स्पंजदार रसगुल्ले हैं।
2: तुमने सही कहा नटनी, यहाँ सभी अपनी अपनी मस्ती में आनंद के साथ धर्म संपन्न जीवन जी रहे हैं, तभी तो यहाँ का सावन जगत प्रसिद्ध है। एक दोहा तो तुमने सुना होगा ना? सुना दूं? सियाड़ो काटू भलो, उनाड़ो अजमेर, मारवाड़ नित्रो भलो, तो सावन भी कारे।
1: बिल्कुल सही। नगर सेठ लक्ष्मीनाथ, माँ करणी जाम्बोजी और कपिल मुनि के साथ अनेकों लोक देवी देवताओं के वरद हस्त से बीकानेर विपदाओं में भी सुरक्षित रहा।
2: बिल्कुल सही कहा।
1: यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति ने ही इसे छोटी काशी का दर्जा दिलाया है। यहाँ कभी धार्मिक वैमनस्य नहीं फैला।
2: सच का।
1: सभी अपने अपने धर्मों का अनुसरण कर रहे हैं।
2: बिल्कुल।
1: विश्व कल्याण की भावना के मद्देनजर आपसी सद्भाव, भाईचारा ही इस शहर की असली पहचान है।

0: मारवाड़ के स्वामी राव जोधा के बड़े पुत्र बीका ने अपने बाहुबल से विक्रम की 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये प्रदेश भाटियों परमारों से छीनकर अपने वंशजों के लिए बीकानेर राज्य की स्थापना विक्रम संवत 1545 वर्ष 1488 अक्षया द्वितीया के दिन की।
1: बिल्कुल, और ये नगर रेतीले धोरों से युक्त रहा है। नगर स्थापना के पश्चात विभिन्न जातियों परिवारों का आगमन यहाँ होता रहा है। ये धीरे धीरे एक सुसंस्कृत समाज के रूप में स्थायी रूप से यहाँ के निवासी बन गए।
0: सभी समाजों की सामाजिक आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ सार्वजनिक निर्माण का एक अनवरत सिलसिला प्रारंभ हुआ। इससे बीकानेर इतिहास श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ
1: और यहाँ की जल तृषित मरुभूमि के निवासी जल संग्रहण, धार्मिकता और आध्यात्मिकता के प्रति सदैव जागरूक और सचेष्ट रहे। अपनी सांस्कृतिक और सांसारिक प्रवृत्तियों की पूर्ति के लिए उन्होंने नगर परकोटे के बाहरी क्षेत्र को साफ सुथरा, शुद्ध, पर्यावरण युक्त और पूर्ण रूपेण एकांतिक रहा।
0: वहाँ नगर के विभिन्न जाति समुदायों की पंचायतों ने अपनी अपनी इकाई के अनुसार बहुत खूबसूरत बगीचियों का निर्माण भी करवाया। यहाँ की जनता अकाल, दुकाल, भयंकर गर्मी और कड़ाके की ठंड में भी अपनी अनथक श्रमशीलता से अपने जीवन यापन को कामयाब बनाती रही है, किंतु चतुर्मास यानी वर्षा ऋतु में अपनी लोक आस्था और विश्वास के साथ मेले मगरियों का आनंद लेना और मनोरंजन करना, इसमें भी यहाँ के लोग पीछे नहीं हटते हैं।
1: बिल्कुल, और सावन भादो मास में बीकानेर और उसके आसपास प्रकृति की सघन

चारों ओर हरियाली, तालाबों का लबालब भरा रहना और लोक देवी देवताओं की अर्चना वंदना मेलों की भरमार देखने योग्य बन जाती है।

0: घूमते वन्य पशुओं की छटा बीकानेर की आभा में चार चांद लगा देती है।
1: भक्त जन कावड़िए तीर्थ स्थल से शुद्ध जल कावड़ में भरकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए लाते हैं उस जल को और जल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं।
2: नमः शंकराय च नमस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च पंचनानांदी सुख स्वस्त्रम समर्पयामि नमः।
0: आजादी से पहले भी बीकानेर एक धर्मधरा रही है। महाराजा गंगा सिंह जी की सुपौत्री सुशीला कुमारी जी की शादी थी। देश भर के राजाओं, उद्योगपतियों, बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों, रियासती भारत के प्रधानमंत्रियों, विद्वानों और धर्माचार्यों को कुमकुम पत्रिकाएं भेजी जा चुकी थी।
1: और तभी महाराजों को पता चला कि 18 फरवरी 1940 को होने वाली शादी के दिन मोहरम पड़ता है। मोहरम यानी पूरी मुस्लिम जाति के लिए गमी का दिन।
0: गमी के दिन शादी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें शादी की तिथि में परिवर्तन करना होगा, हमारे आदेश की पालना की जाए।
1: तभी महाराजा गंगा सिंह के आदेश से शादी की दूसरी तिथि तय हुई। कुमकुम पत्रिकाएं दोबारा छपाई गई। अतिथियों से क्षमा याचना करते हुए तिथि परिवर्तन का कारण भी बताया गया।
0: अमर सिंह राठौर लोक नाट्य का ये संवाद। अमन चैन से रहे देश में हिंदू मुसलमान, आज सार्थक सिद्ध हो गया। महाराजा गंगा सिंह ने अपने 53 वर्ष के सुदीर्घ शासन काल में प्रजाहित के कई कार्य किए। महाराजा की कीर्ति केवल हिंदुस्तान में नहीं अपितु विदेशों में भी फैली हुई थी। गंग नहर के द्वारा बीकानेर राज्य में जल संकट को दूर कर उसे पंजाब के समान उपजाऊ बनाने का अनथक सार्थक प्रयास किया। इसी कारण आज बीकानेर जल संकट से बच गया है।
1: बीकानेर राज्य के अंतिम शासक महाराजा सादुल सिंह थे। इनके समय बीकानेर राज्य का विलय भारत संघ में हो गया।
0: आजाद भारत का ये खूबसूरत शहर भगवान शंकर भोलेनाथ के आशीर्वाद से पल्वित और पुष्पित हुआ है।

यहाँ दूर दूर फैले रेतीले धुरे हैं, वहीं यहाँ के भवनों, जगत प्रसिद्ध हवेलियों और राज प्रासादों की बारीक कोरनी और उनके कला वैभव की शान, तीर्थ स्थलों गजनेर झील में स्वतंत्रता से विचरते दुनिया भर के परिंदों और अभयारण्य में घूम

0: वैसे तो बीकानेर में शिव जी के अनेकों मंदिर हैं। पूरे सावन में इन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है, मगर सोमवार के दिन इन मंदिरों में पूरे दिन मेले का सब माहौल बना रहता है।
1: बिल्कुल, और भक्तजन दर्शन के साथ अभिषेक करते हैं और अपने मन वांछित फल की प्राप्ति हेतु विशेष अनुष्ठान करते देखे गए हैं। महाराजा डूंगर सिंह जी के अपने शासनकाल में अपने पिता महाराजा लाल सिंह की याद में दुलमेरा के लाल पत्थरों से 1880 में लालेश्वर महादेव मंदिर बनाया, वो भी शिवबाड़ी में। ये मंदिर सबसे पुराना शिव मंदिर माना जाता है, जिसका इन दिनों विशेष आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है।
2: मैं ब्रह्मलीन परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी स्वामी सोमगिरी जी महाराज जी का शिष्य विमर्शानंद गिरी। बीकानेर के अंदर यूं तो महादेव के सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन इस लालेश्वर महादेव मंदिर पर शायद महादेव की ही एक अनूठी कृपा हुई है कि इस महादेव मंदिर का निर्माण आज से लगभग 141 वर्ष पूर्व तत्कालीन महाराजा डूंगर सिंह जी ने अपने पिताजी लाल सिंह जी की स्मृति के अंदर बनाया, तभी से इसका नाम पड़ा लालेश्वर महादेव मंदिर। इस महादेव मंदिर के अंदर जितने भी संत महंत आए उनकी साधना और परम पूज्य गुरुदेव की अटूट अमूल्य साधना के कारण ही हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो जब भी इस मंदिर के अंदर आते हैं एक बात निश्चित रूप से कहते हैं कि इस मंदिर के परिसर में किसी भी कोने में आप खड़े हो जाइए, आपको एक अलौकिक शांति का, अलौकिक आनंद का अनुभव होता है।

0: ये गुरुदेव इस मंदिर के अंदर नवंबर 1994 में पधारे। इससे पूर्व ये मंदिर 5 साल तक लगभग खाली रहा और उस वक्त जो इस मंदिर को जितनी क्षति हुई वो अपने आप में सबसे डार्केस्ट पीरियड ऑफ द टेंपल रहा। लेकिन फिर ईश्वर की ऐसी लीला रही कि पूज्य गुरुदेव जब यहाँ पर आए, पूज्य गुरुदेव ने आते ही यहाँ पर जन जन के हित के लिए, मानव मन के कल्याण के लिए मानव प्रबोधन प्रन्यास की स्थापना की और उस प्रन्यास का एकमात्र उद्देश्य यह था कि व्यक्ति का, परिवार का, राष्ट्र का सर्वोन्मुखी विकास हो। उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प रहा गीता ज्ञान परीक्षा, जिसके माध्यम से ईश्वर की विशेष अनुकंपा से पिछले 25-26 सालों में लगभग 12 लाख विद्यार्थी इस मानव प्रबोधन प्रन्यास और गीता ज्ञान प्रसार से जुड़े हुए हैं। पूज्य गुरुदेव का ये भी कहना था कि यदि संस्कृति की रक्षा करनी है तो उसमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी में भी दक्ष होना आवश्यक है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने सन 2002 में संवित शूटिंग संस्थान की स्थापना की और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि शायद पूरे विश्व में एकमात्र यही ऐसा मतलब धार्मिक स्थल है जिसके माध्यम से जो संवित शूटिंग संस्थान संचालित हो रहा है उसमें 4 इंटरनेशनल शूटर, 16 नेशनल शूटर और 22 स्टेट शूटर हैं।
1: इसके अलावा गोपेश्वर महादेव मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर, सब्जी मंडी, कोट गेट, रंगोलाई महादेव, हर्षोल्लाव शिव मंदिर, सांसोलाव शिव मंदिर और अपने मार्कंडेश्वर शिव मंदिर, मुक्ता प्रसाद नगर, धरनी धर्म महादेव मंदिर, कर्मीसर रोड,
2: मैं ओम प्रकाश शर्मा पुजारी, श्री धरनीधर महादेव मंदिर, श्री रामसर रोड, बीकानेर। श्री धरनीधर महादेव मंदिर 320 साल पुराना प्राचीन मंदिर है जिसमें शिव मंदिर के अलावा बहुत बड़ा प्रांगण और नीचे मैदान, तालाब, बाग बगीचे सभी हैं। इस मंदिर को आचार्य श्री धरनीधर जी ने बनाया था। यहाँ सुबह 5:30 बजे से विधि विधान से पूजन शुरू होता है। करीब 7-1 बजे आरती होती है, उसमें अष्टलक्ष्मी पूजन करके श्री गणेश जी, पार्वती जी माता, कार्तिकेय, नंदीश्वर, हनुमान जी महाराज और गायत्री माता की मूर्ति की पूजा होने के बाद शिव लिंग की पूजा करते हैं। अष्टलक्ष्मी पूजन की करके फिर आरती होती है।
3: नाम सूरज कंवर है।
1: सूरज कंवर जी, आप यहाँ धरनीधर महादेव मंदिर में विराज रही हैं इस वक्त सुबह के समय, कितना समय हो गया आपको मंदिर में आते हुए और क्या महसूस होता है?
3: काफ़ी होगी समय, भजन महसूस अच्छी हुए, भजन भगवान रे मंदिर जावा अच्छा लागे, माने भजन कीर्तन भी अच्छा लागे करे, लुगया आवे कभी ज़्यादा आ जाए कभी कम आवे, लुगया भजन कीर्तन कराए, काती में ज़्यादा आवे काती में भजन कीर्तन अच्छा करे।
1: मग्गा देवी जी, आप यूँ बताओ कि भाई अठाई मंदिर में आप आओ, धरनीधर महादेव मंदिर में, तो बीकानेर शहर में तो बहुत शिव मंदिर है और अठे बहुत भक्ति भी लोग करे शिव जी री, इरो के कारण के मातम है?
4: मातम वही है कि शिव जी सब बड़ा शिव जी है, सब पूरे भगवान राम विष्णु महेश सगड़ा आई जाए जा सगड़ा यहाँ मातम ज्यादा है। मारे अठे 4 मंदिर है, अठी ने मेरे महेश्वरा माथे, अठी ने मानन जी मंदिर है।
1: प्राची, आपको देख रहा हूँ यहाँ शिव मंदिर में, धरनीधर में आप आई हुई हैं सुबह सुबह के वक्त में, कितना समय हो गया आपको यहाँ पर आते हुए और कैसा लगता है यहाँ?
5: 1 महीना हुआ है मेरे को, 1 मंथ हुआ है। और मैं यहाँ आई थी तब सुबह मॉर्निंग की जो आरती होती थी वो देख के फिर थोड़ा इंटरेस्ट हुआ तो फिर मैं आना स्टार्ट किया मैंने।
1: शिव जी कैसे लगते हैं?
5: पता नहीं, अभी तो सेवा स्टार्ट की है, बाकी अच्छा लगता है।
6: मेरा नाम गणेश कुमार पुरोहित है, मैं बीकानेर निवासी हूँ। अभी मैं बीकानेर के प्रसिद्ध शिव मंदिर है हर्षोल्लाव के अंदर अमरेश्वर महादेव मंदिर में खड़ा हूँ। यहाँ पर सावन के अंदर बहुत अच्छा मेला लगता है और नित्य प्रतिदिन सवेरे शाम अभिषेक होता है। सावन के अंदर प्रातः 5 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाती है और अलग अलग बुकिंग रहती है, मतलब जो भक्तों के समय कम रहता है और भारतीय परंपरा के 27 दिनों का महीना होता है तो उसमें के अंदर अधिक से अधिक भगत अपना अभिषेक करवाने के प्रयास करते हैं।
7: मेरा नाम राजेंद्र कुमार सेवक है।
1: जी राजेंद्र जी, आप यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर बीकानेर में पुजारी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, महादेव का जो ये विग्रह है, ये स्वरूप है, कितना प्राचीन है, कहाँ से आया, कैसे बनाया और कैसे स्थापना हुई और क्या पूजा का विधान है, मान्यता क्या है?
7: ये काशी विश्वनाथ मंदिर नाम से प्रसिद्ध है, संसोला तालाब

0: अब इनके पीछे बना हुआ है। और काशी विश्वनाथ नाम से ये पूजाएं होती है। श्रावण मास के अंदर विशेष चार पांच पूजाएं होती हैं, विशेष प्रदोष के दिन होती है, और उसके अंदर महादेव शिव की मनोकामनाएं भगतों की पूर्ण करते हैं।
1: मेरा नाम तारूराम है साहब।
2: तारूराम जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ आप मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के बाहर खड़े हैं, यहाँ आप काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं, कितने समय से कर रहे हैं?
1: मैं यहाँ 40 साल से कर रहा हूँ। टूटी का कचरे का काम करता हूँ, मेरा यहाँ डिपो है एक सेट कर, मैं यहीं घाटा बल चलाता हूँ।
2: अच्छा, थोड़ा ये बताइए जो महादेव मंदिर है ये कितना प्राचीन है?
1: ये सब 40 साल से ये जहाँ भजन भाव भी होता है सावन सावन है, और सेवा पूजा भी होती है, और ब्राह्मण ब्राह्मण भेड़ा भी होता है, और गोठा गोठा भी होती है, बूंदा भी पीता है लोगे, और अच्छी तरह धूमधाम से सावन सावन यहाँ मनाता है।
3: श्याम सुंदर जोशी पारिक नापा शहर में, यहाँ 26 साल से भगवान की सेवा में हाजिर रहता हूँ। अंदर गणेश विग्रह, कार्तिकेय विग्रह, भगवती पार्वती जी गौरी स्वरूप में, भगवान शिव का विग्रह जो है पंचानन स्वरूप में है।
4: चंद्रशेखर शर्मा जी, आप लालेश्वर महादेव मंदिर बीकानेर से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं
5: जी।
4: मैं जानना आपसे चाहता हूँ कि भगवान शिव और बीकानेर में जो उनकी भक्ति की लहर बह रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
5: हाँ, बीकानेर ऐसा स्थान है कि आँख बंद करके इसके बारे में जब चिंतन करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं ये कौन सी भूमि है, मतलब मरुभूमि है, तप भूमि है, और यहाँ भगवान विराज रहे हैं। और जो छोटी काशी, छोटी बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये भी काशी ही है और एक बड़ा तीर्थ है, महत्वपूर्ण तीर्थ है।
6: अष्ट पहलू, मुक्तिनाथ महादेव मंदिर, ब्रह्म बगीचा और नीलकंठ महादेव मंदिर आदि सभी जगह दर्शनार्थी हर हर महादेव के रंग में रंगे नजर आते हैं।
7: बिल्कुल, महादेव मंदिरों के अलावा भी तो बीकानेर आदमी और आदमी के बीच में दीवारों को पसंद नहीं करता। जनकवि हरीश भादाणी कहते हैं,

0: वह न तो हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई में भेद करता है, न ऊंच नीच में विश्वास रखता है, न काले गोरे में, न धनवान और गरीब में, और न ही पुरुष और स्त्री के बीच में खांचे बनाता है।
1: बीकानेर का विश्वास है तो अटूट इंसानियत में, सांप्रदायिक सद्भाव में, मनुष्य के हृदय में पनपने वाले पावन प्यार में है। बस यही बीकानेरियत ही हमें छोटी काशी का दर्जा दिला देती है।
0: पूरा आसमान मेघों से आच्छादित, घटाएं घिर घिर बरसने को आतुर, ऐसा नजारा सावन में अवश्य देखने को मिल जाता है। जो भी प्रवासी बीकानेर से बाहर अपने व्यापार के सिलसिले में रहते हैं, वे इस समय अपने देश जरूर आते हैं। और सिलसिला शुरू होता है तालाब में ऊपर से छलांग लगाकर पानी में कूदने का, होठों में दाल बाटी चूरमे का, जिसमें हर मजहब हर समुदाय के लोग मन से इंद्र भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। विशेष सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक कर उन्हें रिझाया जाता है। ललाट पर चंदन से त्रिपुंड करके शिव को रिझाया जाता है।
1: पहला साफी साफ कल पाछे रंग लगाए, पहला साफी साफ कल पाछे रंग लगाए, चला जाए कैलाश पर शिव को शीश नवाए। राजा राम स्वर्णकार अपनी कविता में कहते हैं, तीसरी आंख भले ही लगे पर देख सकती है महाकाल के विपुल काल खंड के आर पार, सदियों पूर्व के अतीत से लेकर दूर भविष्य के गर्भ तक है उसकी दृष्टि का विस्तार, उसकी सीमा अथाह है अंतरिक्ष के उस पार से लेकर।

रसातल के गर्भ तक उसका प्रभाव है। सरासी तिरछी हो जाए जो उसकी नजर, तो डगमग डोलने लगे धरा, तटबंधों को तोड़कर समंदर, जल मगन कर दे बस्तियां गांव नगर, आग उगलने लगे ज्वालामुखी, डराने लगे भीषण बमंडर, जरासी तिरछी हो जाए अगर उसकी नजर, जरासी तिरछी हो जाए यदि उसकी नजर, शंकर यदि प्रलयंकर है तो शिव है कल्याणकारी। अब

0: जरा सी तिरछी हो जाए यदि उसकी नजर। शंकर यदि प्रलयंकर है तो शिव है कल्याणकारी। अब तीसरी आंख की अमृत दृष्टि की है बारी। इस अमृत दृष्टि में सृजन का आह्वान है। वेदों पुराणों उपनिषदों स्मृतियों और महाकाव्यों का कालजयी आख्यान है। कालजयी आख्यान है।
1: ओरे नटड़े, कहाँ कविता के साथ बहा जा रहा है? इधर सुनने वालों को कुछ और नहीं बताना क्या?
0: अरे बताना क्यों नहीं नटनी, बताना है कि इस रूपक में भाग लिया कविता वर्मा और प्रमोद शर्मा ने। प्रस्तुति सहयोग दिया सूरज भान चूड़ा ने। तकनीकी सहयोग दिया आलोक सहानी ने। प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद शर्मा और संयोजक थे जेपी मीना।
1: तो फिर अब विदा लें।
0: बिल्कुल,
1: सभी को धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: साष्टांग प्रणाम।
0: प्रणाम।

0: अभी आप रूपक सुन रहे थे छोटी काशी के शिव, लेखक थे श्री राजा राम स्वर्णकार। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12:40 और ठीक 15 सेकंड हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: तू ही इश्क है रांझेदा।
0: इस गीत को हमने लिया है फिल्म तेजस से, गाया है ओशा जैन और शाश्वत सचदेव ने।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक आइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़े आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म यारिया 2 से गाया है सचेत टंडन और साथियों ने। गीत को लिखा है मनन भारद्वाज ने, संगीत से सवारा है नुसरत फतेह अली खान ने।

आइए सुनते हैं कौसर मुनीर के लिखे गीत को। संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने, इस गीत को गाया है दीपाक्षी और अल्तमश फरीदी ने। फिल्म का नाम है घूमर।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन का एक बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात
1: हनीफ। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सोमवार से खुल जाएगा। विश्वभर से प्रमुख नेताओं ने अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया है और इसे पश्चिमी एशिया में स्थायित्व बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण राजनयिक कदम बताया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। सुश्री सीतारमण ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवंबर में शुरू होगी। प्रदेश में नहरों के जीर्णोद्धार और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जायका प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए के 12 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार इन कार्यों में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले की सिद्धमुख नोहर और भाखड़ा नहर प्रणाली की मरम्मत और रीलाइनिंग के काम किए जाएंगे। इन कार्यों के पूरा होने से नहरों की जल वहन क्षमता में सुधार होगा और किसानों के खेतों तक पर्याप्त मात्रा में पानी तेजी से पहुंच सकेगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि इन स्वीकृत कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर वर्षा झालावाड़ के खानपुर इलाके में दर्ज हुई। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़, झालावाड़ के पचपहाड़, छीपा बड़ोद, चौमू, मांगरोल, छबड़ा और बसवा में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। कल जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, दौसा, टोंक समेत कई जिलों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। राज्य में कई स्थानों पर अभी भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। सर्वाधिक तापमान फलौदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिलानी में 41.2 और बाड़मेर में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। राज्य में कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है। प्रदेश भर में आज सोमवती अमावस्या श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हरणी और तिलस्वा महादेव मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु पवित्र स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। पाली के सोमनाथ मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। महिलाएं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और दीप दान कर सुख समृद्धि की कामना कर रही है। वहीं बाड़मेर सहित प्रदेश के

0: अन्य हिस्सों में गौशालाओं में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने का सिलसिला दिन भर से जारी है। तीर्थराज पुष्कर में आज पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां सरोवर में स्नान करते समय गहरे पानी में गए एक युवक को सिविल डिफेंस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। अजमेर जिले के जसनगर क्षेत्र में लूणी नदी के रपट पर एक बस और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार एक ही परिवार के सदस्य सोमवती अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चौथ का बरवाड़ा के पास मिर्ची से भरे एक ट्रक के त्रिलोकपुरा अंडरपास में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भरतपुर के बयाना स्थित दरबारहना झरने के नीचे पिकनिक मना रहा एक युवक गहरे पानी में चला गया जिससे डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 1:05 और ठीक 30 सेकंड हो चुके हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रही हैं श्रीमती गीता शर्मा और श्रीमती बिंदु शर्मा।

0: महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी बिंदु शर्मा और
1: गीता शर्मा का
0: प्यार भरा नमस्कार। और नमस्कार उन तमाम बड़े बुजुर्गों को जिन्होंने हमारे पालन पोषण शिक्षा दीक्षा में अपना योगदान दिया, नन्हे कदमों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हमें खिलाया पिलाया और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए अपनी जिंदगी की सारी कमाई हमारे ऊपर नौछावर कर दी।
1: बिल्कुल बिंदु, सही कहा आपने। तभी तो हमारे बुजुर्ग हमारे घर की शान होते हैं, बच्चों की जान होते हैं और अनुभव की खान होते हैं, है ना। और वो जब तक हैं तब तक हम उनकी छत्र छाया में सुरक्षित रहते हैं।
0: सही कहा आपने, बुजुर्गों के रहते घर में कहीं भी जाओ ताला भी लगाने की जरूरत नहीं होती। बच्चों को सही तरीके के पालन पोषण देना, जैसे कहानी के माध्यम से बहुत सारी बातें नैतिक आध्यात्मिक और जीवन से उपयोगी और बता देते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, और सच्चे दोस्त बन जाते हैं बच्चों के।
1: बिल्कुल सही कहा बिंदु जी। पता है मुझे आज भी याद है कि कैसे हमारी जो दादी थी वो सभी बच्चों को नहलाकर, और फिर उस समय तो सभी आंखों में काजल डालते थे, मोटा मोटा है ना, वो डाल करके तैयार कर देती थी, और फिर उसके बाद जो भी व्यंजन बनता था चाहे वो दाल खिचड़ी हो रोटी हो सभी बच्चों को खिला करके फ्री कर देती थी। और हमारी जो मम्मी और चाची ताई थी उनको बच्चों की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी। और फिर जब रात होती थी और सोने की बारी आती थी तो नई नई कहानियां सुना करके बच्चों को सुलाती थी। और मुझे वो भी बात याद है कि जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी ना तो मैं चुपके से जाकर के ना अपनी दादी को कहती थी कि दादी माँ मुझे ना ये चीज़ खानी है, तो वो झट से दादाजी से या पिताजी से मंगवा लेती थी और ढेर सारे अच्छे अच्छे व्यंजन भी बना करके हमको खिलाती थी।
0: हाँ मुझे याद है, मेरी भी दादी जी बहुत अच्छे अच्छे भजन भी सुनाती थी, ये सब तो करती थी साथ में भजन भी सुनाती थी। और हमारे जो

0: बुजुर्ग है ना, वो इतना हमारे लिए कर देते हैं, पर जब बारी हमारी सेवा करने की आती है ना, तो समाज उससे मुंह फेर लेता है। ये बड़ी दुख की बात है, है ना। और आजकल वृद्धाश्रम जैसी संस्थाएं उनको संभालती है, है ना। बच्चों को फुर्सत तक नहीं है अपने पेरेंट्स को संभालने के लिए, अपने ही घर से उनको बेगाना कर देते हैं, उनकी खुशियां तक छीन लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं बिंदु जी। आज समाज के अंदर ऐसे कई घर देखने में आ रहे हैं जहां पर बुजुर्गों की नज़रअंदाजी की जा रही है, लेकिन हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो हमें ये नहीं सिखाती है। वो हम उसने हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाया है। जो हमारे संयुक्त परिवार थे, किस तरह हम उनमें प्यार के साथ में रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, ये सभी चीज़ें हमारे संस्कृति ने हमको सिखाया।
0: हाँ, एक जीवन पद्धति हुआ करती थी इस प्रकार की। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जिनके बुजुर्ग वृद्धाश्रम में हैं, जाओ ले आओ, लौटा लो अपने घर की खुशियों को और प्यार को, और कम से कम शाम ढलने के साथ जब आप खाना खाने बैठो तो उनको साथ लेके बैठो, अपना पन दो थोड़ा सा, ताकि आपका घर प्यार का मंदिर बन जाए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये मंदिर सखियों तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ में होंगे। और जब हम बात कर रहे हैं साथ की बिंदु, तो क्यों ना अपनी सखियों को भी अपने साथ में लेकर के चलते हैं गीतों के समंदर में।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, आज है एक खास दिन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
3: अच्छा, तभी आपने बुजुर्गों की बात की थी बिंदु जी।
2: जी हाँ, क्यों नहीं करूं। आज 15 जून है और आज विश्व भर में मनाया जा रहा है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की या और उपेक्षा हिस्सा उसके खिलाफ विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
3: बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है बिंदु जी, क्योंकि ये जो बुज़ुर्ग हैं, जब धीरे धीरे बुज़ुर्ग मतलब बुढ़ापे की तरफ जब अग्रसर होते हैं तो अपनी अवस्था के कारण वे कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए उनको सुरक्षा देना, उनका सम्मान करना हम सभी की ड्यूटी बनती है।
2: और हाँ, बुज़ुर्गों के खिलाफ हो रहे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम सुनते हैं, देखते हैं कि उनका कितना अपमान हो रहा है, बेचारे क्यों अपमान सहन करें।
3: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कहीं कहीं तो देखने में आता है कि जो बच्चे हैं वो अपने बुज़ुर्गों की देखभाल सिर्फ उनकी संपत्ति के लिए ही करते हैं।
2: हाँ, ये भी देखने में आता है।
3: और उस संपत्ति के लिए और उनके पैसों को जबरदस्ती हड़पने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, बुजुर्ग हमसे क्या चाहते हैं, सिर्फ जो उनकी बुनियादी जरूरत है, भोजन, दवा पानी और प्यार, बस इतनी ही चीजें उनको चाहिए। और क्या हम उतना उनके लिए नहीं कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा गीता आपने। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज के दिन को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि उनको उनका सम्मान पूर्वक जीवन लौटाया जा सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही हम सभी को भी

0: ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने परिवार और रिश्तेदारी के अलावा जहाँ पर हम कार्यरत हैं या फिर हम जब सफ़र करते हैं जैसे ट्रेन बस में, तो वहाँ पर अगर हमें बुज़ुर्ग नज़र आते हैं तो हमें उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना है।
1: हाँ, कई बार जैसे सीट ऊपर की नीचे की होती है, मतलब बात है ना, तो उसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए हमको कि बेचारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी दिक्कतें हमें समझनी चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बुज़ुर्ग सिर्फ हमें हमसे प्यार की और सम्मान की ही मांग करते हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए होता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और बिंदु जी, प्यार से ज्यादा खूबसूरत एहसास तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ये प्यार ही है जो सभी की हर एक दूरी को मिटाता है, तो क्यों ना हम भी मिटाते हैं इस दूरी को।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: सखियों, अर्थ जिसके पीछे आज पूरी दुनिया दौड़ रही है, चलते चलते हम समाज में महिलाओं की भी बारी आ गई है कि वे भी अर्थ प्राप्त करें, है ना। इस हेतु हम सुनवाते हैं हमारी बहनों को वार्ता। वार्ताकार है श्रीमती अनीता व्यास, विषय है महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता और पारिवारिक सामंजस्य। तो आइए सखियों, सुनते हैं वार्ता।
3: आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां नारी केवल घर तक सीमित नहीं रही, वह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पायलट, उद्यमी और प्रशासक के रूप में समाज में अग्रणी भूमिका निभा रही है। ये परिवर्तन केवल आकस्मिक नहीं बल्कि वर्षों के संघर्ष, शिक्षा और जागरूकता का परिणाम है। आर्थिक आत्मनिर्भरता क्या है? आर्थिक आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने जीवन की आर्थिक जरूरतों को स्वयं पूरा करने की क्षमता। महिलाओं के लिए इसका अर्थ है उन्हें किसी और पर आश्रित न रहकर अपनी आय, व्यय और निर्णयों में भागीदारी का अधिकार होना। वहीं दूसरे व्यक्तियों पर आर्थिक निर्भरता किसी अन्य पर आश्रित होने की भावना को जन्म देती है, जो तनाव, असंतुलन या संघर्ष का कारण बनती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लाभ: आत्मसम्मान की वृद्धि, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा, बच्चों के बेहतर भविष्य में योगदान और पारिवारिक सहयोगी की भूमिका में मजबूती। पारिवारिक सामंजस्य का आशय: पारिवारिक सामंजस्य का अर्थ है घर में सभी सदस्यों के बीच सहयोग, संवाद, विश्वास और समझ का वातावरण, जहां नारी के आत्मनिर्भर बनने के बावजूद रिश्तों की मधुरता बनी रहे, वही सच्चा संतुलन है। आर्थिक स्वतंत्रता और पारिवारिक भूमिका: एक महिला जब कामकाजी होती है तो वह दोहरी भूमिका निभाती है, एक ओर कार्यालय या कार्यस्थल पर उत्तरदायित्व, दूसरी ओर घर में माँ, पत्नी, बहू या बेटी की जिम्मेदारी। यह संतुलन तभी संभव है जब परिवार सहयोगी हो। समाज में बदलती धारणाएं: पहले ये माना जाता था कि घर संभालना ही स्त्री का काम है, पर आज स्त्रियां घर और बाहर दोनों क्षेत्रों में सफलता से भूमिका निभा रही हैं। ये सोच का सकारात्मक परिवर्तन है। बुनियादी स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को अनेक सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद ज़्यादा सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराती है। इसका न केवल महिलाओं पर बल्कि उनके परिवार, समाज और देश पर बड़े पैमाने पर असर पड़ता है। आत्मनिर्भर महिला, सशक्त परिवार: जब महिला आत्मनिर्भर होती है केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को सशक्त बनाती है। वह बच्चों को अच्छे संस्कार, शिक्षा और आत्मबल दे सकती है। महिलाओं के प्रति भेदभाव और उपेक्षा को केवल साक्षरता और जागरूकता पैदा कर ही खत्म कर सकते हैं। पारिवारिक चुनौतियां: महिला के कामकाजी होने पर कई बार घर में असहजता, समय की कमी, आपसी गलतफहमियां और तनाव जैसे मुद्दे उभरते हैं, इसलिए परिवार का सहयोग और समझ अनिवार्य है। पारिवारिक सामंजस्य में संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर महिला अपने विचारों, थकान, समय की कमी आदि को परिवार से खुलकर साझा करे तो रिश्तों में दूरी नहीं आएगी। संतुलन की कला: एक सफल आत्मनिर्भर

महिला वही होती है जो अपने करियर और परिवार दोनों में संतुलन बनाए रखती है। ये आसान नहीं, परंतु संभव है, योजना, समय प्रबंधन और सहयोग से। पति व ससुराल का दृष्टिकोण। अगर पति और ससुराल ये समझे कि नारी की आर्थिक स्वतंत्रता पूरे परिवार के विकास की कुंजी है, तो महिला और परिवार दोनों समृद्ध होंगे। परिवार और आधुनिकता का संगम। महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकती है, फिर भी वह अपने पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं और संस्कारों को निभा सकती है। ये दोनों विरोध नहीं बल्कि पूरक है। ग्रामीण महिलाओं की भूमिका। आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों और डिजिटल माध्यमों से आर्थिक रूप से सक्रिय हो रही है। ये भारत के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। शिक्षा का योगदान। शिक्षा ही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। जब बेटियों को बचपन से ही शिक्षित किया जाए, तो वे आगे चलकर आत्मनिर्भर, सशक्त और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीती है। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास। एक महिला जब खुद के निर्णय खुद लेती है, तो उसमें आत्मविश्वास आता है। वह स्वयं को समाज के सामने व्यक्त कर पाती है। बच्चों पर प्रभाव। कामकाजी माताएं बच्चों को जिम्मेदारी, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का जीता जागता उदाहरण देती है। बच्चे भी उन्हें देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। कई बार दोहरी जिम्मेदारियों के कारण महिलाओं पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में परिवार की संवेदनशीलता और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। नीति और समाज की भूमिका। सरकारों द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप इंडिया, महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बदल रहे हैं। इधर कुछ वर्षों से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में वृद्धि हुई है, जो कि बहुत ही चिंतनीय है। शहर भी महिलाओं के लिए असुरक्षित हो चले हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण महिलाओं को पर्दे में रखने की सोच का जन्म होता है। किंतु सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वे पर्दे में सुरक्षित रहेंगी? घर से बाहर ही नहीं, बल्कि घर में भी महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं के साथ ही घरेलू हिंसा और यौन अपराधों में वृद्धि हो रही है। पर्दे में या दरवाजों के भीतर महिलाओं को बंदिनी बनाकर रखना इन सबका हल नहीं है। जरूरत है उन बंद दरवाजों को खोलने की, रोशनी को अंदर आने देने की, उस प्रकाश में अपना प्रतिबिंब देखने की, उसे निहारने की, निखारने की। इस कड़ी में एक और अहम दरवाजा आत्मनिर्भरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी है। जरूरत है कि हम अपने अस्तित्व को पहचानने की और इसको बनाए रखने की और एक कदम बढ़ाने की। हम लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि पाक कला और गृह कार्य में निपुणता ही एक नारी के लिए परिपूर्णता है। क्या कभी किसी ने इस बात पर जोर दिया कि उनका पढ़ना लिखना भी उतना ही जरूरी है, जो कि उनके बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना ही आज के समय में उतना ही आवश्यक है। आर्थिक रूप से सक्षम होना केवल परिवार के लिए नहीं, अपितु उनके लिए भी, अपने लिए भी आवश्यक है। शिक्षा का महत्व तब पता चलता है जब परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा हो या किसी लड़की के वैवाहिक जीवन में अचानक परेशानी आ जाए। तब शिक्षा और आत्मनिर्भरता से ही एक लड़की को ना तो अपने माता पिता पर, न ही अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन एक सम्मानजनक जीवन के लिए धन की आवश्यकता होती है। एक सुखी जीवन यापन के लिए किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी अति आवश्यक है, जो कि हमारे कौशल में निखार लाता है और हमारे व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करता है। व्यवहारिकता, अनुभव और कौशल विपरीत से विपरीत स्थिति में जीवन यापन में सहायता करता है। ऐसा नहीं है कि अशिक्षित महिलाओं में कौशल और हुनर कम है। कृषि, कुटीर उद्योग, पारंपरिक व्यवसाय, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय जैसे कार्यों से महिलाओं को अपने इस हुनर को बाहर लाना है और देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा के अभाव और आर्थिक पिछड़ेपन के और विकृत मानसिकता के कारण विभिन्न आडंबरों एवं अंधविश्वासों के चलते महिलाओं का शोषण किया जाता है, ऐसे स्थानों पर महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए एवं आत्मरक्षा के तरीके भी सिखाए जाने चाहिए। पुरुषों की भांति महिलाएं भी देश की समान नागरिक हैं और उन्हें भी स्वावलंबी होना चाहिए, ताकि समय आने पर व्यवसाय कर सके और अपने परिवार को चलाने के लिए मदद कर सके। यही जागरूकता है कि उनको, उनके परिवार को और देश के विकास को गति देंगी और एक नई दिशा देंगी। एक खुशहाल भविष्य की कामना करते हुए इस बात का संकल्प कीजिए।

0: मैं अपने हुनर को पहचानूंगी और स्वावलंबी बनकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनूंगी। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और पारिवारिक सामंजस्य दोनों का संतुलन आवश्यक है। एक महिला अगर आत्मनिर्भर हो और उसका परिवार सहयोगी हो तो वे चमत्कार कर सकती है। आइए हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो और रिश्तों से जुड़ी भी रहे।
1: तो सखियों, आपने जाना इस वार्ता के जरिए कि किस प्रकार महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहकर पारिवारिक संतुलन को बनाती हैं। वार्ता का विषय था महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता और पारिवारिक सामंजस्य, और वार्ताकार थी श्रीमती अनीता व्यास। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कैलाश जी की आवाज में ये संदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारम्बार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

शिक्षा व्यक्तित्व के विकास की प्रथम सीढ़ी है, पर शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। बालक का सर्वांगीण विकास हो, जिसमें बालक का शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो, तकनीकी ज्ञान हो। आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का तात्पर्य बहुत व्यापक हो गया है। शिक्षा वो चाबी है जो व्यक्तित्व को निखारती है, विकास के द्वार खोलती है, सपनों को नई उड़ान देती है। शिक्षा वो धन है जो कभी चोरी नहीं किया जा सकता। तो आइए सुनते हैं ये एक संदेश।

हो। आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का तात्पर्य बहुत व्यापक हो गया है। शिक्षा वो चाबी है जो व्यक्तित्व को निखारते हैं, विकास के द्वार खोलती है, सपनों को नई उड़ान देती है। शिक्षा वो धन है जो कभी चोरी नहीं किया जा सकता। तो आइए सुनते हैं ये एक संदेश।

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: बिंदु जी, ये जो हमारा जीवन है ना, इसकी यात्रा के दौरान हम सभी अच्छे बुरे सभी तरह के पलों का सामना करते हैं, और इन्हीं पलों या क्षणों के दौरान जब खुशियों का हमारे जीवन में आगमन होता है तो हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं होता है, है ना। लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है या हमारा मन उदास होने लगता है तो हमें जीवन एक बोझ के समान लगने लगता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, हम सभी की मानसिकता यही होती है, लेकिन होना भी यही चाहिए कि जब खुशियाँ का आनंद लिया जाए तो हमको कठिन समय में भी हताश क्यों होना चाहिए, क्यों घबराना चाहिए,
1: बिल्कुल
2: अपना मन क्यों उदास करना। जीवन चलने का नाम है, सुना है ना आपने। अच्छा हो या बुरा, समय गुजर जाता है, बस यादें रह जाती है, बीते समय की यादें। तो क्यों उस समय को हम बेहतर तरीके से जिए, अपने मन की उदासी को दूर करने के लिए विकल्प चुने और मन के शांति और सुकून को हम जी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने बिंदु जी, कि हमें अपने मन की उदासी को दूर करने के लिए ऐसे विकल्प चुनने चाहिए जिनसे हमारे मन को शांति और सुकून मिले। तो सखियों, जब भी आपको उदासी लगे तो प्रकृति से बेहतर तो हमारा साथी कोई हो ही नहीं सकता है। तो जहाँ तक हो प्रकृति के बीच में अपना समय बिताएं, अपनी उदासी को पेड़ पौधों की ठंडी ठंडी हवा से दूर करें, फूलों की खुशबू को अपने जेहन में उतारें, और बिंदु जी, जब कानों में पक्षियों का सुमधुर कलरव गूंजता है ना, तो मन में स्वयं ही सुकून का वास होने लगता है ना।
2: बिल्कुल सही। साथ जब कोई साथी हो हमें सुनने वाला, तो मन का गुबार जो होता है ना वो निकल कर अलग अलग आ ही जाता है, और उसमें मजा भी आता है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई भरोसेमंद व्यक्ति ही नहीं मिलता, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हम घबराने लगते हैं।
1: लेकिन बिंदु जी, हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने सुना तो होगा ना कि किताबों से बेहतर हमारा कोई भी दोस्त नहीं होता है।
2: हाँ, ये तो ठीक कहा।
1: तो सखियों, किताबों को अपना मित्र बनाएं, जो भी कुछ पढ़ना अच्छा लगता है उसे पढ़ें, और अगर लिखने का शौक रखती हैं तो भाई उससे बेहतर बात और हो ही नहीं सकती है। तो जब भी मन खुश हो या हताश हो, अपने शब्दों को, अपने जज्बातों को कागज़ पर ज़रूर बयां करें, अपनी डायरी ज़रूर लिखें।
2: बिल्कुल, क्योंकि डायरी ही केवल कागज का एक बंडल नहीं होती है, बल्कि अपनी सच्ची मित्र वही होती है। क्योंकि जब हम अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते, तो डायरी हमारी भावनाओं को सुनती है।
1: बिल्कुल।
2: और अपनी खुशियां, परेशानियां, दुख, सपने, सफलताएं, विफलताएं, सभी कुछ हम डायरी में लिखते हैं और अपने मन को हल्का करते हैं।
1: और डायरी लिखने से बिंदु जी, न केवल हमारा मन हल्का होता है, बल्कि हमारे विचारों में भी स्पष्टता आती है, और साथ ही ये हमारी यादों को संजोकर भी रखती है, जिन्हें हम बाद में पढ़कर अपने जीवन के अनुभवों से काफी कुछ सीख भी सकते हैं। और पता है, डायरी कभी हमारी आलोचना नहीं करती है, बल्कि हर समय हमारा साथ देती है।
2: इसलिए हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ समय निकालकर लिखना चाहिए, दिन भर के अनुभव को लिखने चाहिए, ताकि हमें न केवल हमारे रिश्ते

0: के बारे में बल्कि स्वयं के बारे में भी जानने का मौका मिल सकता है और हम मानसिक स्तर पर मजबूत भी बनते हैं।
1: सही कहा आपने, और धीरे धीरे ये डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी जो हमें ये सिखाएगी कि उदासियों को ज्यादा देर ठहरने मत दो, उदासियों को ज्यादा देर ठहरने मत दो, क्योंकि जिंदगी मुस्कुराने का एक नया बहाना जरूर देती है। तो मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए।

0: जी हाँ बिंदु जी, हमारी मुस्कुराहट वो रोशनी है जो अंधेरे दिलों में भी उजाला कर देती है। वो नायाब हीरा है जो हर दुख को हल्का और हर खुशी को दोगुना कर देती है ना। और हमारी ज़िंदगी हमें मुस्कुराने के अनेकों जरिए भी देती है, बस ज़रूरत होती है हमें ये जानने और समझने की कि किस तरह से हमें उसे सुविधाजनक और बेहतर बनाना है।
1: बिल्कुल, जब हम आसान और सुविधाजनक जीवन की बात करते हैं तो पहले जिन कामों को हम घंटों लाइनों में लगकर करते थे, आजकल मोबाइल और कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनटों में कर लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और ये सभी कुछ संभव हो सका है बिंदु जी डिजिटलीकरण के जरिए, यानी कि तकनीक और इंटरनेट का उपयोग करके हम कार्यों को आसान, तेज और सुविधाजनक तरीके से कर पा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य या फिर बैंकिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र का कार्य हम आसानी और सुगमता से कर पा रहे हैं सिर्फ तकनीक के माध्यम से।
1: शिक्षा की बात की जाए तो ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकें और शैक्षणिक ऐप भी बहुत सारे आ गए, बच्चे घर बैठे बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं।
0: और अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आज हमें घंटों अस्पताल में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बैठे मरीज अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज डॉक्टर से करवाते हैं। साथ ही हमारी जो भी स्वास्थ्य जानकारी होती है ना, वो भी ऑनलाइन सुरक्षित रहती है। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तो कभी रिपोर्ट्स भूल गए या पर्ची भूल गए, तो ये जो भूलने की समस्या का खामियाजा हमें ऑफलाइन भुगतना पड़ता है ना, ऐसा ऑनलाइन में नहीं होता है, क्योंकि हमारी सारी जानकारी वहाँ सेव हो जाती है।
1: सही कहा आपने। बैंकिंग की बात की जाए तो आज UPI, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान में पैसे भेजना और प्राप्त करना कितना आसान हो गया, और अब तो घर बैठे बैठे ही बैंक से जुड़े अधिकांश कार्य हम कर ही लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही अगर हम कृषि के क्षेत्र के बारे में बात करें तो किसानों के लिए तो ये तकनीक बेहद फायदे का सौदा रही है। आज किसान मोबाइल के माध्यम से मौसम की जानकारी, फसलों के उचित दाम और नई कृषि तकनीकों के बारे में जानकर अपनी खेती के को पहले से और भी बेहतर बना रहे हैं।
1: अरे हम किसानों की ही बात क्या करें, हमें हमारे जब अभी जैसे थोड़ा आंधी तूफान का मौसम होता है ना, तो तुरंत हमारे मोबाइल तुरंत बता देता है कितनी देर में आने वाला, हम अलर्ट हो जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: है
0: सही।
1: वही सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी जहां लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे ना, अब वहां नहीं लगाने पड़ते है ना, मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से हो जाते हैं। अगर कार्ड से जुड़ी जानकारी है ऑनलाइन देखी जाए तो अपडेट की जा सकती है।
0: बिल्कुल, आधार कार्ड की तरह ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, बिजली पानी गैस के बिल ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, पेंशन छात्रवृत्ति अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी हम आवेदन करके ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही। और डिजी लॉकर में भी महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे जा सकते हैं, साथ ही विभिन्न सरकारी वेबसाइटों और पोर्टलों के माध्यम से शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती हैं और उसकी स्थिति भी देखी जा सकती है।
1: तो देखा सकिए आपने तकनीक का सही उपयोग किस तरह हमारे जीवन को बेहतर बना देता है, साथ ही आसान भी बना देता है और समय पर मेहनत दोनों की बचत होती है।
0: तो क्यों ना सखियों इसी तकनीक का इस्तेमाल कर हम सुनवा दें आपको ये प्यारा सा गीत।

सखियों, प्रकृति जो हमारी माँ है हमें समय समय पर बहुत कुछ खाने पीने के लिए देती है। अगर बात करें हम गर्मी की, तो फलों की बात तो भाई क्या बात है, ठंडक महसूस होता है जब नाम लेते हैं। जैसे गर्मी में आम है, तरबूज है और खरबूजा है, और इसके जैसे कैरी का जूस है, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें अपना मन लुभाती है और खाने की इच्छा करती है। सखियों अब हम चलते चलते चलते आपको ले चलते किचन में, और आप जूस पीजिए और अपनी सखियों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, नमस्कार।

0: announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
4: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन होता है। इस

0: ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमेरिकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 153,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 253,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
4: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं।

0: यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के

0: लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 2:30 और ठीक 10 सेकंड हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आइए सुनते हैं फिल्म जुड़वा का ये गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीत को लिखा है देव कोहली ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

जगे दोनों एक दूजे के होने लगे, अब ना हल्की सी भी आए कभी दूरी जैसे पत्ता कोई। आइए सुनते हैं फिल्म फाइटर का ये गीत। इस गीत को आवाजें दी हैं विशाल मिश्रा और शिल्पा रॉय ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए फिल्म वाई चीट इंडिया से ये गीत। इस गीत को गाया है अरमान मलिक ने। गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीत दिया है रोचक कोहली ने।

तुमसा नहीं देखा। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को गाया था श्रेया घोषाल ने, गीत को लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

आइए सुनते हैं अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को। संगीत दिया है प्रीतम ने, आवाजें श्रीराज श्रीधर और जावेद अली की। फिल्म का नाम है थैंक यू।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के ठीक 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। संध्या 5 बजे अपनी संध्याकालीन सभा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मेरी 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 5 बजने को हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवा दिलों की धड़कन युववाणी, और मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त भवानी,
1: और मैं हूं आपके साथी कुमकुम स्वामी, और आप सभी का हमारे कार्यक्रम युववाणी में स्वागत है।
0: कुमकुम, आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि जैसे पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई है, मन भी एकदम खुश और तरोताजा था।
1: अरे वाह भवानी, लगता है आज तुम्हें नींद अच्छी आई है।
0: बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए नींद पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन कल रात समय पर सो गई थी तो सुबह बड़ा अच्छा महसूस हुआ।
1: सच कहूं भवानी, हम अक्सर खाने पीने या फिर एक्सरसाइज की बात करते हैं, लेकिन अच्छी नींद को उतना महत्व नहीं देते, जबकि ये भी हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा आधार है।
0: बिल्कुल, और जब नींद अच्छी होती है तो हमारे शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है।
1: तुमने कभी गौर किया है कि जब नींद पूरी नहीं होती तो दिन भर चिड़चिड़ापन रहता है और काम में भी मन नहीं लगता,
0: छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती है। बिल्कुल, दरअसल कुमकुम तुम्हें पता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर खुद को ठीक करने यानी रिपेयर करने का काम करने लगता है। पूरे दिन जो थकान जमा होती है वह दूर हो जाती है, यानी जैसे मोबाइल को चार्ज करने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी नींद की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, अगर मोबाइल को ठीक से चार्ज ना करें तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है।
0: बिल्कुल, मैंने देखा है कुमकुम कि जब नींद पूरी नहीं होती ना तो याददाश्त पर

0: इफेक्ट पड़ता है।
1: बिल्कुल, अच्छी नींद हमारे दिमाग को आराम देती है, इससे सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है और हम अधिक ध्यान से काम कर पाते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, कई विद्यार्थी देर रात तक पढ़ाई करते रहते हैं और सोचते हैं कि इससे ज्यादा याद होगा, लेकिन वास्तव में अच्छी नींद भी उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई।
0: बिल्कुल, अब हमने नींद की बात की है तो मुझे लगता है हमें योगा की भी बात कर लेनी चाहिए।
1: योग और अच्छी नींद का बहुत गहरा संबंध है।
0: अच्छा, वो कैसे कुमकुम?
1: वो ऐसे कि जब हम नियमित योग करते हैं तो शरीर की मांसपेशियां आराम महसूस करती हैं, मन शांत होता है और तनाव कम होता है। इसका सीधा असर हमारी नींद पर पड़ता है, यानी कि योग करने वाले लोगों को अच्छी नींद आने की संभावना ज्यादा होती है।
0: बिल्कुल, और सोने से पहले दोस्तों मोबाइल चलाने वाली जो आदत है, मुझे लगता है ये हमें थोड़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि 5 मिनट मोबाइल देखेंगे और फिर देखते देखते कब 1 घंटा निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और फिर नींद देर आती है क्योंकि मोबाइल और अन्य स्क्रीन के से निकलने वाली जो रेज होती है वो हमारे दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी तक जागने का समय है। इसलिए सोने से कुछ समय पहले मोबाइल से दूरी बनाना ही एक अच्छी आदत है।
1: बिल्कुल भवानी, तो चलिए हमारे दोस्तों के साथ कुछ उपाय साझा करते हैं।
0: बिल्कुल, और वो कौन कौन से उपाय हैं?
1: पहला उपाय है कि रोज लगभग एक ही समय पर सोने और उठने की आदत बनाइए।
0: बिल्कुल,
1: सोने से पहले भारी भोजन करने से बचिए, दिन में थोड़ा शारीरिक श्रम या फिर हल्का व्यायाम जरूर कीजिए, सोने से पहले मन को शांत रखने की कोशिश भी कीजिए।
0: क्या ऐसा कुछ आसान योग या अभ्यास तुम्हें पता है जो हमसे हो जाए?
1: हाँ बिल्कुल भवानी, सुबह कुछ मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास, अनुलोम विलोम और ध्यान बहुत लाभदायक हो सकते हैं।
0: अरे वाह, और इन्हें करने के लिए बहुत अधिक समय की भी जरूरत नहीं होती दोस्तों।
1: सही कहा, नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों के विकास के लिए पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है, वहीं बुजुर्गों के लिए अच्छी नींद शरीर और मन को स्वस्थ रखने में भी मदद करती है।
0: यानी हर उम्र में नींद का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो श्रोताओं, आज की बातचीत से हमने ये जाना कि अच्छी नींद केवल आराम के लिए नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य की पूंजी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और योग प्राणायाम तथा संतुलित दिनचर्या हमारी नींद को बेहतर बनाती है। तो इसी के साथ दोस्तों, योग आप कैसे भी कर सकते हैं, योग में आप रनिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, जिससे आपको मन की शांति मिले। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी आकाश।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: तो दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्त हो चला है क्विज सेगमेंट का, जहां आपसे दो प्रश्न किए जाएंगे और उन प्रश्नों के जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में दिए जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी के साथ आज का हमारा पहला सवाल है कि किस शहर ने जून 2026 में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए QR कोड आधारित विक्रेता पंजीकरण और निगरानी प्रणाली शुरू की है।
1: और दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल है, जनवरी 2026 में एनमेड सिस्टम एग्जीबिशन और सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन का आयोग कहाँ हुआ था। दोस्तों, इनका आंसर जो है हम कार्यक्रम के

0: गिफ्ट में आपको बिल्कुल देंगे। तब तक दोस्तों अपन अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
1: दोस्तों वैसे ज़िंदगी भी एक तरह की क्विज़ है, कुछ सवालों के जवाब किताबों में मिल जाते हैं, कुछ इंटरनेट पर, और कुछ के जवाब हमें अनुभव सिखाते हैं।
0: बिल्कुल, और अगर अनुभव की बात करें ना कुमकुम, तो हमारे घरों में एक ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज़िंदगी जीने के साथ साथ हमें उन्हें कैसे ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो भी बताया है।
1: बिल्कुल, जिन्होंने बिना किसी गाइड बुक के मुश्किल समय का सामना किया है, बिना किसी ट्यूटोरियल के जिम्मेदारियाँ निभाई है, और बिना किसी शॉर्टकट के जीवन को जीना सीखा है।
0: जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है हमारे बड़े बुजुर्गों की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, कई बार वही लोग अकेलेपन और असमान जैसे इन चीज़ों का सामना करते हैं। इसी विषय की ओर ध्यान दिलाने के लिए हर वर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
1: और भवानी, क्या तुमने कभी गौर किया है कि घर का सबसे पुराना व्यक्ति अक्सर घर का सबसे शांत व्यक्ति भी बन जाता है?
0: बिल्कुल,
1: वही दादाजी जो कभी पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते थे, वही दादी जो पूरे घर की धुरी या फिर आधार हुआ करती थी, एक समय ऐसा भी आता है जब वो धीरे धीरे बोलना कम कर देते हैं।
0: हाँ कुमकुम, कई बार इसलिए नहीं कि उन्हें उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है कि शायद अब कोई उन्हें सुनने वाला ही नहीं है।
1: दोस्तों, आज जब हम विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मना रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार सिर्फ मारपीट या फिर कठोर व्यवहार तक सीमित नहीं है। कई बार अनदेखी, अपमानजनक शब्द या फिर उनकी भावनाओं को महत्व ना देना या फिर उन्हें अकेला छोड़ देना, ये भी दुर्व्यवहार का एक रूप है।
0: बिल्कुल, और दुख की बात ये है दोस्तों कि ये सब अक्सर किसी अजनबी के द्वारा नहीं होता, बल्कि उन्हीं लोगों के द्वारा होता है जिनके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है।
1: बिल्कुल भवानी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मेहनत की, और जब हमारे पास ही वक्त नहीं है, हर व्यक्ति अपने काम में, करियर में, पढ़ाई में या फिर जिम्मेदारियों में व्यस्त है।
0: बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से जोड़ तो दिया है दोस्तों, लेकिन कई बार अपने ही घर में लोगों से दूर कर दिया है। घर में सभी लोग मौजूद होते हैं, लेकिन बातचीत कम होती जा रही है। ऐसे माहौल में बुज़ुर्ग सबसे अधिक अकेलापन महसूस करते हैं दोस्तों।
1: बुज़ुर्गों की सबसे बड़ी ज़रूरत हमेशा सुविधाएँ नहीं होती, कई बार उन्हें सिर्फ किसी का साथ चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ देर बैठकर उनकी बातें सुने, उनके अनुभवों को महत्व दे और उन्हें ये महसूस करवाए कि आज भी वो परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे हम बचपन में उनसे बात करते थे, उनके पास बैठकर खेला करते थे, और आपको याद है कि हमारी नानी, हमारी दादी हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाई करती थी, हमें छोटी छोटी बातों से, हमारी मम्मी से हमें डांट से बचाया करती थी।
1: भवानी, बचपन की वो कुछ बातें ही बड़ी अजीब होती है, उस समय वो बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन बड़े होने पर एहसास होता है कि वो कितनी खास थी। तुम्हें पता है भवानी कि अब भी मैं जब भी ननिहाल जाती हूँ, तो मेरे नाना जी मेरे आने से पहले ही वो सब कुछ खाने की चीज़ें ले आते हैं जो मुझे पसंद है। बचपन से लेकर आज तक वो चीज़ कभी नहीं बदली, और यही शायद उनका प्यार दिखाने का तरीका है।
0: और कुमकुम, ननिहाल आते वक्त भले ही आपके पास एक बैग हो, लेकिन ननिहाल से जाते हुए ज़रूर 3 से 4 बैग आपके पास ज़रूर होंगे, क्योंकि वो खेत की फ्रेश फल और सब्जियां भी ले आते हैं आपके लिए। आपको जो चीज़, फ्रूट्स, आपको खिलौने, जो भी आपके पास आपको पसंद हो, वो चीज़ सब आपके लिए अवेलेबल करवा देते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, बचपन में हमने उनके साथ कितनी छोटी छोटी खुशियां बांटी है। कभी उनकी गोद में सर रख कर सो गए हैं, कभी उनके साथ बाजार चले गए, तो कभी उनसे जिद करके कहानी सुन ली।
0: बिल्कुल, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े लोग नहीं होते दोस्तों, वो चलती फिरती यादें होते हैं, वो अनुभवों का संग्रह होते हैं, और उन गलतियों और सफलताओं की कहानी होते हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियां सीखती हैं।
1: कल्पना कीजिए दोस्तों कि अगर एक परिवार में दादा दादी या फिर नाना नानी ना हो, तो कितनी कहानियाँ खो जाएंगी, कितनी पारंपरिक ज्ञान, कितना जीवन की सीखें हम तक पहुँच ही नहीं पाएंगी।
0: दरअसल किसी समाज की पहचान सिर्फ उसकी आधुनिक इमारतों से नहीं होती दोस्तों, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कहा जाता है ना कि किसी पेड़ की मजबूती उसकी जड़ों में पता चलती है, और बुजुर्ग हमारे समाज की वही जड़ें हैं। जड़ें दिखाई कम देती हैं, लेकिन पूरे वृक्ष को संभाल के रखती हैं।
1: इसलिए दोस्तों, आज जब वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ कदम थोड़े धीमे हो गए हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, हम भी उनके साथ प्यार से रहें, और जो प्यार उन्होंने हमें हमेशा दिया है।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आज

0: का दिन सेल्फ एनालाइज का दिन है। ये अपने घर के उस सदस्य की ओर देखने का अवसर है जो शायद चुपचाप हमारे लौटने का इंतजार कर रहे हों। ये उस फोन कॉल का अवसर है जो हम कई दिनों से टाल रहे हों, या उस बातचीत का अवसर है जिसे हम फिर कभी कहकर टाल देते हैं। कभी कभी सम्मान बहुत बड़े कामों से नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ों से भी होता है। कुछ मिनट साथ बैठ जाना, उनकी बातों पर ध्यान देना, उनकी बातें सुन लेना, यकीन मानिए इन छोटी छोटी बातों से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और साथ ही उनको भी बहुत खुशी मिलेगी।
1: और हर बुजुर्ग के दिल में बस यही ख्वाहिश होती है कि कोई उनके सुख दुख में शामिल हो और उम्र के हर मोड़ पर उनके साथ उनका साथी बनकर रहे।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: दोस्तों, अभी हमने बात की उन बुजुर्गों की जो कभी परिवार की धुरी हुआ करते थे। दिलचस्प बात यह है कि बुजुर्गों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार हमेशा कठोर शब्दों या फिर बुरे व्यवहार से नहीं होता। कई बार ये समय की कमी के रूप में भी दिखाई देता है ना भवानी?
5: बिल्कुल, क्योंकि आज की दुनिया में लोग अपने कामों में इतने उलझ गए हैं कि अपनों के लिए ना समय निकालना बहुत मुश्किल लगने लगा है उन्हें। और यहीं से जन्म लेता है एक बहुत अहम सवाल कि हमारी व्यस्तता और हमारी जिंदगी के बीच संतुलन कैसे बने।
4: भवानी, जब हम स्कूल में होते हैं तो सोचते हैं कि बस पढ़ाई खत्म हो जाए फिर जिंदगी का मजा आएगा। कॉलेज में पहुंचते हैं तो लगता है बस नौकरी मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। नौकरी मिल जाती है तो लगता है बस प्रमोशन हो जाए फिर आराम मिलेगा। और देखते ही देखते ये फिर कभी आता ही नहीं।
5: ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। मज़ेदार बात ये है कुमकुम कि इंसान चांद तक पहुंच गया, समुद्र की गहराई नाप ली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बना ली, लेकिन अपने ही दिन में 24 घंटे कैसे संतुलित करने हैं ये पहली और आज की हमारी मोस्ट क्या कहते हैं इसे इम्पॉर्टेंट बात है। सुबह का समय देखिए, अलार्म बजता है हम उसे बंद करते हैं, 5 मिनट बाद फिर बजता है हम उसे फिर बंद करते हैं, फिर अचानक एहसास होता है कि अब तो सचमुच देर हो रही है।
4: किसी का नाश्ता भागते भागते होता है, कोई जूते पहनते पहनते फोन देख रहा होता है और कोई घर से निकलते हुए याद करता है कि चाबी कहाँ रखी थी। और
5: ये सब सही है।
4: बिल्कुल, और ये सब सिर्फ इसलिए ही हम समय के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समय कभी हमारे पीछे नहीं भागता, वो तो अपनी चाल से चलता है, भागते हम हैं। और धीरे धीरे हमारी जिंदगी भी एक लंबी टू डू लिस्ट बन जाती है।
5: बिल्कुल दोस्तों, एक समय था जब शामें अलग हुआ करती थी, घर के बाहर बच्चे खेलते थे, पड़ोसी बिना किसी खास वजह से मिलने आ जाते थे और अगर कोई पूछता था कि क्या काम है तो जवाब होता था कि कोई काम नहीं है, बस मिलने आ गए। आज अगर कोई बिना काम के मिलने आ जाए तो सबसे पहले शक होता है कि आखिर बात क्या हो गई। समय बदल गया है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, तकनीकी भी बढ़ गई है और इसी के साथ हमारी रफ्तार भी बढ़ गई है। लेकिन एक सवाल भी इसी के साथ बढ़ रहा है कि क्या हमारी खुशी भी उतनी ही बढ़ी है।
4: यही वो जगह है जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस की ज़रूरत सामने आती है। असल में ये तो वही पुरानी समझदारी है जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग वर्षों से अलग अलग शब्दों में कहते आए हैं कि काम करो लेकिन इतना भी मत करो कि अपने लोगों के लिए समय ही ना बचे। उस समय शायद वर्क लाइफ बैलेंस जैसा आकर्षक शब्द नहीं था, लेकिन भावना बिल्कुल वही थी।
5: हर व्यक्ति कुछ बेहतर करना चाहता है, हर युवा अपने सपनों को साकार करना चाहता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दोस्तों, सपने होने चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना कि जिंदगी कोई ऐसी दौड़ नहीं है जिसमें फिनिश लाइन पर पहुंचकर ही जीना शुरू किया जाए।
4: अगर हम ये सोचते रहें कि अपनी मेहनत हम अभी मेहनत कर लेते हैं खुश बाद में होंगे तो ये तो संभव नहीं है। एक दिन हम बहुत सफल हो जाएंगे लेकिन ये याद ही नहीं रहेगा कि खुश कैसे हुआ जाता है। यही कारण है कि काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल कुमकुम, बचपन में झूले पर बैठते समय हम सब ने एक बात सीखी है कि अगर वजन एक तरफ ज़्यादा हो जाए तो संतुलन बिगड़ जाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, एक तरफ सिर्फ काम, दूसरी तरफ पूरी जिंदगी। अगर काम का वजन इतना बढ़ जाए कि परिवार, दोस्त, अपनी हेल्थ

0: आराम और खुशी, ये सब कुछ आपको नजर ही ना आए, सिर्फ काम काम, तो जीवन संतुलित बिल्कुल भी नहीं रहेगा दोस्तों।
1: भवानी, आज की दुनिया में वर्क लाइफ बैलेंस की चर्चा इसलिए भी बड़ी है क्योंकि काम अब ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। पहले लोग ऑफिस से घर आते थे तो काम पीछे छूट जाता था, अब जेब में रखा मोबाइल ऑफिस को भी साथ ले आता है। रात को मैसेजेस, सुबह ईमेल, वीकेंड पर कॉल और कभी कभी छुट्टियों में भी मीटिंग। लगता है जैसे काम ने भी तय कर लिया हो कि वो अकेला नहीं रहेगा, जहाँ हम जाएंगे वो भी साथ आएगा।
0: बिल्कुल, इसीलिए दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब हम सभी को सीखना होगा कि काम को उसकी जगह देना और जीवन को उसकी जगह देना। सपनों को भी समय मिलता है और अपनों को भी, लक्ष्य भी पूरे होते हैं और यादें भी बनी रहती है, कमाई भी बढ़ेगी और मुस्कान भी। इसलिए दोस्तों हैप्पी रहे और काम भी करते रहे,
1: क्योंकि दिन के अंत में जिंदगी हमें सिर्फ ये नहीं पूछती कि हमने कितना कमाया, बल्कि ये भी पूछती है कि हमने कितना जिया, कितने पल अपने सपनों को दिए, कितने अपनों के साथ बिताए और इस भाग दौड़ में कहीं खुद को तो नहीं खो दिया।
0: बिल्कुल,
1: शायद इन सवालों का जवाब तलाशते हुए हर दिल कभी ना कभी यही कहना चाहता है कि जिंदगी कुछ तो बता।

0: कुछ तो बता जिंदगी। अगर दोस्तों ये सॉन्ग आप भारतीय सेना और हमारे देश के वीर जवानों के दृष्टिकोण से अगर देखें ना, तो ये गीत उनके आदम्य साहस, अनिश्चित जीवन और देश के प्रति उनके प्रेम की एक अद्भुत दास्तान बन गई है। और इसी के साथ हम सुनेंगे भारतीय सेना, जो है कैलाश खेर के द्वारा।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आज सुबह तुम्हें पता है कुमकुम, आज सुबह जब मैं बाजार गई थी तो वहां पर दुकान पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था और वो मोबाइल से ऑनलाइन जो कहते हैं ना ऑनलाइन खरीदारी और वाले जो ग्राहक होते हैं उनसे काफी अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहा था।
1: भवानी, यही तो बदलाव है। जब युवा सीखते हैं, समझते हैं और नई चीजों को अपनाते हैं तब समाज भी आगे बढ़ता है।
0: सही कहा। वैसे भी किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा ही होते हैं दोस्तों। अगर युवा शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे तो देश भी विकास की गति में आगे बढ़ेगा।
1: लेकिन एक बात बताओ भवानी, कि क्या सिर्फ स्कूल या फिर कॉलेज की डिग्री हासिल कर लेना ही शिक्षा है?
0: बिल्कुल नहीं कुमकुम, शिक्षा का मतलब केवल किताबों का ज्ञान नहीं होता दोस्तों। शिक्षा हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने और जिम्मेदार नागरिक बनने की क्षमता जो देती है।
1: अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है लेकिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है तो उसकी शिक्षा अधूरी समझी जाएगी।
0: और दूसरी ओर जब कोई युवा शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन और सामाजिक समझ भी विकसित करता है तो हम समाज के लिए एक प्रेरणादायक बन जाते हैं। और दोस्तों, साथ ही आपको पता है कि आज के युवाओं के पास अवसर भी बहुत सारे हो गए हैं, जैसे इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्स, नई तकनीकी। जो सीखना चाहता है उसके लिए कई रास्ते खुल चुके हैं दोस्तों। पहले जानकारी पाने के लिए साधन समिति में जाना पड़ता था, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन के एक क्लिक से हमें सारी जानकारी हमारे पास होती है।
1: अक्सर हम विकसित भारत की बात सुनते हैं भवानी, लेकिन विकसित भारत वास्तव में है क्या? विकसित भारत का अर्थ है ऐसा देश जहां अच्छी शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, रोजगार के अवसर हों। असली विकास तब होता है जब लोगों का जीवन बेहतर हो, उनकी सोच आगे बढ़े और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिले।
0: बिल्कुल, आजकल हम देखते हैं दोस्तों कि कई युवा नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जैसे नवाचार देश की प्रगति में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवा नई समस्याओं का समाधान खोजते हैं और नए रोजगार भी पैदा करते हैं। कई बार एक छोटा सा विचार भी बहुत बड़ा बदलाव ला देता है दोस्तों। उसी के साथ इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन अक्सर युवाओं की सोच और उनके प्रयासों से ही शुरू होते हैं।
1: मुझे लगता है भवानी की शिक्षा आत्मनिर्भर बनने का सबसे मजबूत साधन है।
0: बिल्कुल, और शिक्षित व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपने परिवार को संभाल सकता है और समाज के विकास में भी योगदान दे सकता है।
1: और जब लाखों युवा आत्मनिर्भर बनते हैं तब देश भी मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल, और साथ ही सबसे पहले तो उसे अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषय पर पॉजिटिव भूमिका निभानी चाहिए
1: और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, आज का समय डिजिटल युग भी है कुमकुम, जैसे युवाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। डिजिटल तकनीकी का सही उपयोग शिक्षा, व्यापार और तो साथ ही कृषि के क्षेत्रों में भी किया जाता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तकनीकी का उपयोग संतुलित और जिम्मेदार तरीके से किया जाए।
1: और दोस्तों, शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र निर्माण की नींव भी है।
0: बिल्कुल, और जब युवा शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार बनता है तो वह विकसित भारत का सपना और भी करीब आ जाता है।
1: तो आइए हम सभी शिक्षा को महत्व दें,
0: बिल्कुल,
1: निरंतर सीखते रहें और अपने देश की प्रगति में अपना योगदान दें।

0: जिंदगी की भाग दौड़ में संतुलन बनाए रखने की बात तो अभी हमने की ही भवानी, लेकिन कभी सोचा है कि जब इंसान संतुलन खोजते खोजते थक जाए तो उसे सुकून कहाँ मिलता है? कभी किसी शांत किताब में, कभी किसी पुराने गीत में, और कभी किसी ऐसी जगह पर जहाँ पानी की लहरें भी धीरे धीरे बात करती हुई महसूस हों। और हमारे बीकानेर की ऐसी एक जगह है कोलायत सरोवर।
1: बिल्कुल दोस्तों, मरुभूमि के बीच स्थित ये सरोवर वर्षों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसे कपिल सरोवर भी कहा जाता है और इसका संबंध महर्षि कपिल से माना जाता है। कोलायत बीकानेर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है और राजस्थान के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। अब और आप सभी महर्षि कपिल के बारे में तो जानते ही होंगे, एक ऐसे ऋषि जिनका नाम भारतीय दर्शन के इतिहास में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता था। आज अगर कोई छात्र दर्शन शास्त्र पढ़ता है तो उसे सांख्य दर्शन का नाम अवश्य मिलता है। इस दर्शन के प्रतवर्क माने जाने वाले महर्षि कपिल हैं।
0: मजेदार बात यह है भवानी कि कोलायत का आकर्षण सिर्फ धार्मिक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की आध्यात्मिकता में विशेष रुचि ना हो तो तब भी वो इस स्थान पर प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: आखिर रेगिस्तान के बीच इतना विशाल और शांत जलाशय देखने का अनुभव अपने आप में अनोखा है।
1: बिल्कुल, मजेदार बात तो ये है कुमकुम कि कोलायत का आकर्षण सिर्फ धार्मिक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की आध्यात्मिकता में विशेष रुचि ना भी हो तब भी ये स्थान उसे अपनी प्रकृति सुंदरता से प्रभावित करता है। इसी के साथ ही कुमकुम, तुम्हें पता है कि हमने आज अपने दोस्तों से क्विज पूछे थे, तो चलिए इसका आंसर देते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल था कि किस शहर ने जून 2026 में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए QR

0: कोड आधारित विक्रेता पंजीकरण और निगरानी प्रणाली शुरू की।
1: बिल्कुल,
0: जिसका सही जवाब है अहमदाबाद।
1: और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, जनवरी 2026 में अनमेंट सिस्टम एग्जीबिशन और सिमुलेशन एंड ट्रेंडिंग एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है अबू धाबी। साथ ही दोस्तों, हम अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं आज का आपका फेवरेट सेगमेंट रोजगार सूचना।
0: दोस्तों, RSSB ने वरिष्ठ एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
1: बिल्कुल,
0: इस भर्ती की परीक्षा 22 और 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन प्रक्रिया के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: पर ध्यान रहे दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सिर्फ 25 मई से 23 जून 2026 तक भरे जाएंगे, तो जल्द ही अपनी एबिलिटीज चेक करें और आवेदन करें। इसी के साथ दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का।

0: आज हमने कितनी सारी बातें की है ना कुमकुम। आज हमने कॉलेज सरोवर के बारे में जाना और हमने बुजुर्गों के बारे में भी बात की। और दोस्तों इसी के साथ हमने आपसे क्विज भी पूछे और उम्मीद करती हूँ कि आपने उनके आंसर बहुत सही खोजे होंगे।
1: बिल्कुल, तो इसी के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। मैं थी आज की आपकी साथी कुमकुम स्वामी।
0: मैं थी आपकी साथी भवानी। तो लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार।

अभी युवा श्रोताओं ने अपना कार्यक्रम युवाणी सुना, प्रस्तुति थी कुमकुम स्वामी और भवानी चंगानी की। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 5:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही गीतकार, और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मजरू सुल्तानपुरी के द्वारा लिखे गीतों को। तो सुनिएगा 6:05 पर प्रोग्राम एक ही गीतकार।

सात बजे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। 7:45 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। 8 बजे समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से गीत। रात्रि 9:30 पर

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गजलें।

अभी आपने सुना हमारी आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1355 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: छह बजने को हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने

0: औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। नमस्कार, आदाब और एक बहुत ही खूबसूरत शाम। आज की शाम संगीत के उस सुल्तान के नाम जिन्होंने 5 दशकों तक अपनी कलम से हमें मोहब्बत करना सिखाया। जी हाँ, भारतीय सिनेमा के पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता मसरूर सुल्तानपुरी साहब। मसरूर साहब कहते थे, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। आइए इस सुरीले कारवा की शुरुआत करते हैं लता जी के गाए इस बेहद खूबसूरत और शांत नगमे के साथ।

मजरू साहब का असली नाम असरार उल हसन खान था और मजरू का मतलब होता है घायल। तो उन्होंने खुद घायल होकर हमें प्यार की मीठी चुभन का एहसास कराया। उनकी कलम में वो जादू था जो इंसानी जज्बातों को छू लेता था। सुनते हैं किशोरदा की आवाज में दर्द और संजीदगी से भरा यह खूबसूरत गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मार्चुन चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही गीत।

और कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी के द्वारा लिखे गीत। मजरू साहब सिर्फ उदासी और संजीदगी के ही शायर नहीं थे, बल्कि रोमांस और मस्ती लिखने में भी उनका कोई सानी नहीं था। आर डी बर्मन साहब के साथ संगीत मिलकर उन्होंने जो जादुई दौर रचा, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म यादों की बारात से।

दिल चुराने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। मजरू साहब की सबसे बड़ी खूबी यही थी, उनके शब्द सीधे दिल में उतर जाते थे। जब उन शब्दों को किशोर कुमार साहब की आवाज़ मिलती थी तो इतिहास बन जाता था। आइए उसी इतिहास को दोहराते हैं और इस महफिल में जोश को बढ़ाते हैं और सुनते हैं यह सदाबहार रोमांटिक गीत फिल्म मेरे जीवन साथी से।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: मौसी सुल्तानपुरी साहब भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी शायरी और इन अमर गीतों के ज़रिए वो हमेशा हमारे दिलों की धड़कन बनकर जिंदा रहेंगे। आज के कार्यक्रम में एक ही गीतकार में बस इतना ही। ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। 6:30 होने को हैं। कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बागड़े आज सीकर के जसरासर में शहीद स्मारक में शहीद गोवर्धन सिंह ढाका की प्रतिमा अनावरण के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सीकर, झुंझुनू और नागौर सहित शेखावाटी क्षेत्र के जवानों का देश की तीनों सेनाओं में विशेष योगदान है। राज्यपाल ने शहीद गोवर्धन सिंह ढाका के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगी और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आज भारत दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व की अपेक्षाओं का केंद्र बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जागरण को भी समान महत्व दिया है।

0: है। श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में रिकॉर्ड निवेश आया है और व्यापक बदलाव हुए हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
0: आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के साथ ही हुगली नदी पर 500 नावों में योग सत्र आयोजित करने की योजना है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और सहायता राशि के चेक तथा विशेष योग्यजन को सहायक उपकरण वितरित किए। वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र में लगाए गए शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह शिविर सरकार की सुशासन और जनसेवा की सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य सचिव ने शिविर में आवेदकों से संवाद भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं। 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि ग्राउंड स्तर पर पहुंचे और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है इसको और ज्यादा मजबूत करें।
0: प्रदेश में विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से भी स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज भरतपुर और डीग में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं गृहमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने करौली में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सलुम्बर जिले में कल इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शहरी सेवा शिविर नगर परिषद क्षेत्र में लगाया जाएगा, वहीं ग्रामीण सेवा शिविर कई ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर आज एक कार और डंपर के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 3 बच्चे शामिल है। हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका बीकानेर के PBM अस्पताल में इलाज जारी है। कार में सवार ये सभी लोग हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले थे और बीकानेर के मुकाम से वापस हरियाणा जा रहे थे। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए नागौर के अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत का आज उनके पैतृक गांव पांचोटा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले उनकी पार्थिव देह विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट लाई गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण

0: अधिकारी जय राठौड़ ने खेमाराम कुमावत की देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ और कोटा की टीम ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर देवरी गांव के पास एक कंटेनर ट्रक से 2000 किलोग्राम से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया। कंटेनर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये मादक पदार्थ मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाया जा रहा था। प्रदेश में बच्चों को दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए कल से राज्यव्यापी स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत विशेषकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, साफ पीने का पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि देश में डायरिया आज भी बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। गर्मियों और बारिश के मौसम में बच्चे दस्त रोग से अधिक ग्रसित होते हैं और उपचार नहीं होने पर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग में परियोजना निदेशक बाल स्वास्थ्य डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचे हर बार की थीम पर गतिविधियां आयोजित होंगी।
1: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है, शुद्ध पेयजल का सेवन, साफ सफाई, स्वच्छता, इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें UDH हो गया, PHED हो गया और पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट, इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा, अगर घर में 5 साल से छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली, ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक PAM का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस माह की बैठक का मुख्य विषय पोषण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका रहा। विभाग की शासन सचिव पूनम ने बताया कि इन बैठकों के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास के लिए जन जागरूकता को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए परिवारों की सहभागिता को और खासतौर पर पिता की भूमिका को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिलों में आज कहीं आंधी चली तो कहीं हल्की सी मध्यम बारिश हुई। हनुमानगढ़ में सुबह अंधड़ के बाद तेज बरसात हुई जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। झुंझुनू में भी दोपहर बाद मौसम बदला और कई जगह तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। चूरू और डीग में आंधी के बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। राज्य के कई अन्य पूर्वी जिलों में भी आंधी और तेज हवाएं चलने तथा कहीं कहीं बारिश के समाचार हैं। इन गतिविधियों से पूर्वी हिस्सों में पारा गिरा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आज भी उमस और गर्मी का असर रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभागों में अगले 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। देश भर में 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लागू हो जाएगा। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना में 7,581 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरिम आवंटन निर्धारित किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा जिसे आवश्यकता और मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। इस तरह राजस्थान में इस योजना के लिए कुल 11,581 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध होगी जो प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। उदयपुर जिले में इन दिनों मानसून की आहट के साथ पर्यटन गतिविधियां बढ़ने लगी है। वहीं जिले में जल संरक्षण, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, प्रशासनिक गतिविधियां और जनसरोकारों से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया। उदयपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम दूध तलाई क्षेत्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, प्रभारी सचिव टी रविकांत, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई। इसके बाद प्रभात फेरी और कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। उदयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग के शासन सचिव और जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत

रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई। इसके बाद प्रभात फेरी और कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। उदयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग के शासन सचिव और जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आगामी मानसून को देखते हुए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। पेयजल प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, खाद और बिजली आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर समीक्षा की गई। संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। मॉनसून के आगमन से पहले उदयपुर को पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। एक प्रमुख ट्रेवल पोर्टल द्वारा जारी भारत के शीर्ष 15 मॉनसून पर्यटन स्थलों की सूची में उदयपुर को देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। राजस्थान से केवल उदयपुर और माउंट आबू ही इस सूची में शामिल हुए हैं। सूची में केरल का मुन्नार पहले और गोवा दूसरे स्थान पर है। मानसून के दौरान पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और स्वरूप सागर झीलों के भरने के साथ अरावली क्षेत्र का वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। सज्जनगढ़ स्थित मानसून पैलेस से झीलों

0: हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग रखी गई है। उदयपुर की बेटी खुशी ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनकर मेवाड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली है। फ्लाइंग ऑफिसर खुशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में प्राप्त की और बाद में बीएन विश्वविद्यालय से बीसीए की पढ़ाई की। खुशी ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट पास कर एसएसबी चयन प्रक्रिया पूरी की और हैदराबाद में पायलट प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका गणतंत्र दिवस परेड के लिए भी चयन हो चुका है। उमरड़ा स्थित साई तिरुपति विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एमबीबीएस, एमडीएमएस तथा विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपलब्धियां प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की गई। विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब जिराफ लाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। वन विभाग द्वारा जिराफ के लिए विशेष एनक्लोजर बनाए जा रहे हैं। सेंचुरी क्षेत्र में बनाए जा रहे इस परिसर में पर्यटकों के लिए पाथवे और जिराफ के लिए अलग होल्डिंग तथा डिस्प्ले एरिया विकसित किया जा रहा है। परियोजना पर करीब 2,70,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वन विभाग के अनुसार एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत नर और मादा जिराफ का जोड़ा उदयपुर लाया जाएगा। जिराफ के आने के बाद वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उदयपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो प्रदेश रा शूरवीर देश री हिफाजत माय खास काम कीनो। आयुष मंत्रालय 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावन सारू आज औपचारिक कार्यक्रमारी शुरुआत कीनी। बीकानेर जिला री श्री डूंगरगढ़ माय भया सड़क हादसा रे कारण एक ही परिवार रा 6 जना री मौत। अर प्रदेश माय बच्चा ने दस्त हूँ बचावन अर इलाज सारू काल स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू करियो चावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज सीकर जिला राजसरा

0: शर्माए शहीद गोवर्धन सिंह ढाकारी मूर्त रो अनावरण कीनो। ई मौके श्री बागड़े शहीद गोवर्धन सिंह ढाकारा बलिदान ने याद करता थका कहो कि हमारी शहादत आवती पीढ़ियां ने हमेशा सीख देवेला। राज्यपाल कहो कि राजस्थान शूर वीरां री धरती रही है। वह कहो कि नागौर सीकर और झुंझुनू समेत शेखावाटी हलका रा जवान देश री हिफाजत रा काम माए मोटो योगदान दीनो है। राज्यपाल कार्यक्रम माए शहीद रा परिवार वाला रो ईमान कीनो और स्मारक परिसर माए पौधा रोपया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि भारत मजबूत भरोसाओं भरिया देश रा तौरों सामने आ रहो है। वे आज जोधपुर में खबरनवीसां सागे बातचीत करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल रा कामकाज री उपलब्धियां रो जिक्र कीनो। शेखावत कहो कि भारत दुनिया री उम्मीदां रो केंद्र बन गयो है और साल 2047 ताईं विकसित देश बनवाओड़ी तेजियों बढ़ रियो है। वे कहो कि लाड़ला 12 साल माए देश माए जबरदस्त निवेश आयो है और मोटा बदलाव आया है।
1: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
0: 21 जून ने मनाया जावन वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए आयुष मंत्रालय री ओर आज नई दिल्ली माए औपचारिक कार्यक्रम शुरू करी चिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो इन साल रो मुद्दो स्वस्थ जीवन के लिए योग राखी चियो है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव नई दिल्ली में खबरनवीसा ने बतायो कि योग दिवस रो खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए कोलकाता रा रेड रोड माथे रखियो जावेला। वे बतायो कि इन मौके 45 मिनट रो योग प्रोटोकॉल रखियो जावेला। खास कार्यक्रम सा गई हुगली नदी माए 500 नावा माए योग सत्र रखण री योजना है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर माए लगाई जा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कीनो। वह शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कर और सरकार कानून जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां रा बारा माए जानकारी हासिल कीनी। मुख्यमंत्री पात्र लोगों ने पट्टा सर्टिफिकेट मदद री रकम रा चेक और विशेष योग्यजन ने जिंदगी आसान बनावण रा साजो सामान दीना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जयपुर विकास प्राधिकरण रा नागरिक सेवा केंद्र में लगाया जा रहा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कर और व्यवस्थावां रो जायजो लीनो। ई मौके वे कहो कि ऐ शिविर सरकार री सुशासन और जन सेवा री सोच ने सांचीकरण माए खास काम कर रहा है। मुख्य सचिव शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कीनी। वे अहलकारा ने शिविर माए आवन वाला लोगों ने साफ कोई सागे आसान तरीकाओं टेम सर सेवा मुहैया करावन रा हुकम दीना।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं। 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि ग्राउंड स्तर पर पहुंचे और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है इसको और ज्यादा मजबूत करें।
0: जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत आज भरतपुर और डीग माई लगाई जा शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो। वह जनताओं सरकार री न्यारी न्यारी योजनावां रो फायदो लेवण री अरज कीनी। गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढमी करौली माई व्यवस्थावां रो जायजो लीनो। सलूंबर जिला रा नगर परिषद हलका माए काल शिविर लगाया जावेला, जदके गांवई हलका माए मैथुड़ी झल्लारा की माता सुला जय समंदरी पीलादर सेमारी री सड़कड़ी सराड़ा री चावंडर

0: साड़िया रे सती के चोरी ग्राम पंचायत ना माए शिविर लगाया जावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। बीकानेर जिला रा श्री डूंगरगढ़ माए नेशनल हाईवे नंबर 11 माथे आज एक कार रे डंपर री फेंट माए आ जावन रे कारण व्या हादसा एक ही परिवार रा 6 जना री मौत वे की। मरण वाला माए 2 महिलावां एक लोग और 3 बच्चा शामिल है जदका एक टावरी घनी जख्मी वेगी जिनरो बीकानेर रा PBM अस्पताल माए इलाज चाल रियो है। कार माए सवार ए लोग हरियाणा रा माए फतेहाबाद रा रहवासी हा। असम रा जोरहाट माए भारतीय वायुसेना रा AN-32 विमान हादसा माए वीर गति हासिल करन वाला नागौर रा वायु अग्निवीर खेमाराम कुमावत रो आज मारा गांव पांचोटा माए फौजी मानसा गए दाग करती होचियो। मानी पार्थिव देह खास विमान नु जयपुर हवाई अड्डा माथे लाई ची। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर री सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ खेमाराम कुमावत री देह माथे फूल चढ़ार वाना श्रद्धा भाव सागे याद कीना। प्रदेश माए बच्चा ने दस्त लागण बचावण और दस्त तो मंदा भया बच्चा रा इलाज सारू चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओर काल स्टॉप डायरिया अभियान शुरू करियो जावेला। 31 जुलाई ताई चालन वाला ई अभियान रा तहत 5 साल री उम्र छोटा बच्चा माए डायरिया री रोकथाम टेम सर इलाज साफ सफाई पीवण रा साफ पानी और जन जागरूकता सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जावेला। चिकित्सा विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि डायरिया आज ही बच्चा रा स्वास्थ्य उंजुड़ी गंभीर चुनौती है। वह कहो कि उनाला और चौमासा माए बच्चा ने दस्त लागण री बत्ती शंका रहवे है और एड़ो भेवन री सूरत माए इलाज नी मिलन पर मौत रो खतरो ही वह है। स्वास्थ्य विभाग माए बाल स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी बतायो कि अभियान रे दौरान स्वच्छ जल समुचित उपचार डायरिया से बचें हर बार मुद्दा मत है कार्यक्रम रखा जावेला।
1: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है शुद्ध पेयजल का सेवन साफ सफाई स्वच्छता इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है जैसे इसमें UDH हो गया PHED हो गया और पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा अगर घर में 5 साल से छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए आज महिला और बाल विकास विभाग री ओर अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक राखी ची। इनरो खास मुद्दों पोषण संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका राखी चियो। विभाग री शासन सचिव पूनम बतायो कि मीटिंग रे दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्यार्थियां रा माए तांसाग केंद्र री आगली कार्य योजना बच्चा री आंगनबाड़ी केंद्र माए रोजीना हाजिरी शाला पूर्व शिक्षा कार्यक्रम और पोषण जुड़िया व्यवहार माए बदलाव रे बारा माए चर्चा कीनी। रबे मौसम प्रदेश रा उत्तराद उगनी जिला माए आज ही कठे कठे आंधी बारिश हुई। हनुमानगढ़ माए आज हमारा तेज अंधड़ सा गई बरसात सड़क माथे पानी भर गयो। झुंझुनू माए दोपहर पाछे कई ठोणा जोरदार बायरो बाजन सागे बिरखा भी। चूरू और डीग माए आंधी पाछे बारिश हुए वणु मौसम ठंडो वे गयो। राज्य रा कई उगनी जिला माए आंधी बारिश रा समाचार है। दूजी कानी आतुणी हल्का माए हाल ही उमस और गर्मी रो जोर है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर कोटा और जोधपुर संभाग माए आवता 4-5 दिन ताई आंधी बारिश चालता रहे वन रा आसार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ली रहो।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का

ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। 7 बज चुके हैं, अब ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे, ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहना ने अनिल सिंह खिचड़ और
1: आप मुक्ता जैन घना घना राम राम, राम।
0: मुक्ता जी राम राम
1: राम राम अनिल भाई आपने भी मोकला मोकला राम राम
0: आपा जो अपनो कार्यक्रम है गुंजे गांव गुआड़ वो तो देखो शनिवार ने सुना ही सुना हाँ और वह में ज्यादा से ज्यादा जगह सुनना रहा अपना ग्रामीण भाई है वह आपरा पत्र भी लिख के आपकी फरमाइश जगह गीत लाए वो सुन सके है और वही सारू देखो अपनो जो आज रो कार्यक्रम है वह में आप समय की चर्चा भी करा और अपनी जकी खेती बाड़ी री बातें है वह बतलावन करा और आप स्वस्थ रहने रहा जगह मंत्र है वह भी जाना कभी आप स्वस्थ किया रहा कोई भी काम धंधो करा मुक्ता बहन तो वह में किया सबसे पहले अपन यो ध्यान रखना पड़े कि भाई आप स्वस्थ हो जब भी काम ने अच्छे तरीके से कर सका।
1: अनिल भाई देखो आप सही बात कही कि आप अगला स्वस्थ रह सह नहीं तो आप काम सुचारू पूर्व सुचाल सी है आप देखो इन दिन देख रहे हैं कि मौसम बड़ो बदल रही है कभी आंधी है कभी बिरखा है और मतलब टाइम ही कोनी बिरखा रो और देखा तो जो कि बिरखा हो रही है और अपना किसान भाई है बेबी अच्छो फायदो ले रहा है ये बदलते मौसम रे मायने जलवायु परिवर्तन है या प्राकृतिक संसाधन पर दबाव बढ़ रहे है या अनेक तरह का जिका आप देख रहे हैं कि बदलाव हो रहे है तो इन बदलाव रहे होने के बावजूद भी चाहे गर्मी पड़ो चाहे सर्दी हो अपना काम धंधा तो अपना तोड़ना ही पड़ सी और अपना किसान भाई है या बारह मजदूर है या सड़क निर्माण आरो है बने सगला ने अब वो काम तो करना ही पड़ सी और इन दिन जिको प्रोग्राम है आपा किसान भाई सु बातचीत करा हाँ तो इस समय अपन खेती बाड़ी में कई कई चीजा रो ध्यान रखना अनिल भाई तो आप थोड़ा बताओ मने
0: तो देखो मुक्ता बहन आप खेती बाड़ी में तो अपनो काम धंधो है वो पूरे साल भर चालतो ही रहे खासकर अपन ध्यान देवा कि खेती बाड़ी रमाई अपना जो को अबार बिरखा रो टेम है तो बिरखा रो टेम रमाई अपना खेत रो जो की बिरखा हुआ है वह पानी बारे नहीं जावे मैं खातर मेटबंदी करनी जरूरी है मैं और मैं सरु आपा देखा कि मेटबंदी करने रहे सागे सागे जो की खेत री गहरी जुताई है वह भी करनी नहीं भूला और खास करके जो अपना किसान भाई बहन है वो जागरूक किसान भाई बहन है और वह जाने के भी कम खर्चे में ज्यादा पैदावार लेनी है तो जो की अबार बिरखा री टेम है वह में बिरखा हो

0: और आप बीजान कर सकें तो उत्तम किस्म रा जका उन्नत बीज है और कम पानी यानी कम सिंचाई रे माई उत्पादन देना रहा है, बिरानी खेत में उत्पादन देना रहा है, अपनी जकी आप बीजान रो टाइम है वह अनुसार आप बीज रो चयन कर बीजान करा और बीज सुन जकी बीज की दूरी है, कतार सुन कतार की दूरी है, उन बातों रो आप ध्यान में ही रखा।
1: और ये सगे सगे नहीं भाई, अगर आप बीजा वो भी अच्छो चयन करा जा तो आप बीज दे उपचारित कर अगर आप पानी खेती बाड़ी में उपयोग लेवा तो भी आपने काफी फायदो मिल सके, जिसु कहीं है कि पौधा री मजबूती बढ़ सी, भी अंकुरण क्षमता बढ़ सी और अनेक तरह जिका रोग हुए नहीं बस वो भी बने निजात मिल सी। इधर सगे सगे जिका खेत में आप कीटनाशक डाला नहीं, अगर बिंगो भी आप सही मात्रा में मतलब खेत किसो है, खेत री माटी किस है, बिंग अनुसार आप अगर प्रयोग करा तो आप पानी जिकी मिट्टी री गुणवत्ता है बाबी बनी रह। और अनिल भाई अगर ध्यान देवा तो कृषि यंत्र अभी देखा कि आधुनिक तकनीक आयोड़ी है नई नई, जिसको कही है कि किसान भाई चोखो उत्पादन ले सके, चोखो मुनाफो ले सके, तो कृषि यंत्र री भी समय समय मत जांच कर लिया तो भी सही रहती अपने।
0: तो देखो अब बार बिरका रो टेम है, अपने अपना जका मशीनरी है उनारो खास करके ध्यान देना है, जिना में अपा कैस का भी जका पुर्जा है जिना में तेल देना जरूरी हो, बिरका रे टेम में उना में तेल भी देवा, जका मशीनरी रा नट बोल्ट है उनान भी अपा टाइट करना कसना नहीं भूला, और जकी अपा ध्यान देवा कभी जठे कठे पानी इकट्ठो होते है वह जगह अपा अपनी मशीनरी या अपना जका कृषि रा यंत्र है उन्होंने खड़े नहीं करा, क्योंकि अपने उन्होंने जंग लाग जावे। और जकी अपा ध्यान देवा कभी अपना कोई भी कृषि रो यंत्र है बने आप काम में लेने से पहला बैंगी मिट्टी उतार देवा और मैंने अच्छे तरीके से काम माई लेवा, जकी कल्टीवेटर है तो उन्होंने आप पैनी धार कर लेवा ताकि आसानी से अपने मशीनरी ने कम जोर आवे और कम ईंधन री खपत में ज्यादा क्षेत्र पापा भी जान कर सका, बुआई कर सका और बैंग सागे सागे जुताई भी कर सका।
1: तो कहने का मतलब वो ये अनिल भाई की अगर खेती में समय माथे पर आप चोखो कार्य करा नहीं तो आप आने वाले समय में निवेश भी चोखो मिल सी, और आज ही तैयारी है जो काल रो आधार होया करे है। और अनिल भाई ये प्रोग्राम ने आगे बढ़ावा और आप एक मीठो सो गीतड़ लो सुना।
0: हाँ तो सुनायो मीठो सो गीतड़ लो।

मुक्ता बाँडेको अबारापा मिठो सो गीत लो सुन्यो और गाइड हो सीमा मिश्रा और साथीहरी आवाज रमाई और अपन बात करा अपनी खेतीबाड़ी री पशुपालन री बेन सागे सागे अपन ने मोटो काम किए के अपने जगह टबरिया है उन्होंने पढ़ाई लिखाई करनी ध्यान देनो बहुत ही जरूरी है और ध्यान देवा कि भाई अपना टबरिया ने चाहे छोर हो चाहे छोरी हो अच्छी शिक्षण संस्था रमाई उन्हारो प्रवेश दिलावा एडमिशन दिलावा ताकि आगे अच्छे तरीके से पढ़ लिख अच्छा मिनक बने अच्छी शिक्षा लेवे।

0: मुक्त बैंड देखो बारा अपन संदेश सुनियो और अपनी जो कि बात चल रही टाबरान पढ़ान लिखान रही हाँ। तो उन्हें कनी अपन ध्यान देवा कि भाई आप टाबरिया ने अच्छे तरीके से आगे बढ़ने रो अवसर देवा।
1: तो अनिल भाई जरूरी है बच्चा रो आज रो जो बच्चों है वो कल रो बहुत ही अच्छो नागरिक बन सी और इन वास्ते जरूरी है कि चोखे स्कूल में भी न डाला भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दा। और अनिल भाई आपा देखो बात करा अभी बारिश रो मौसम है बिरखा बरस रही है और इन बिरखा रे महीने अगर आपा एक पौधो लगावानी तो बहुत ही चोखो सी और एक यो मतलब आपा ने खूब सारा पौधा लगाना है और आपा देखा हाँ कि अभी मतलब आपा ने कही है कि जगह जगह अपना व्यापार धंधा टोरन वास्ते जगह जगह चोखा स्कूल बना वास्ते और उद्योग खड़िया करने वास्ते आपा ने पेड़ा वृक्षा री कटाई करनी पड़े परंतु आपा ओ तो करी सका कि जितना आपा इमारता बना रहे हाँ जितनी आपा पेड़ काट रहे हाँ उन्हें सागे सागे एक अनक नयो पेड़ लगावा और आपना जिका सगला भाई है बहन है और आपा एक शपथ लेवा कि आपा रू मतलब हर दिन एक नयो पेड़ लगा सिया और बिना सींच सिया जब तक वो एक खुशहाल पेड़ नहीं बन जावे।
0: तो देखो मुक्ता बहन ते कितनी सोखी जानकारी दी कि अबार बिरखा रो टेम है मैं आपा ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगावा और उन्होंने बड़ा भी करा और पौधा रोपण तो देखो आसानी से कर सका पर उन्होंने आप अच्छे तरीकों से सींच और बड़ो करा वह पौधों वृक्ष बनावा वे मैं बड़ी मेहनत लागे और जो वृक्ष आप बना लिया तो वो अपनी आना री पीढ़िया ने भी आप जो फल फूल है और छाया है और सागे सागे बेसकीमती जो लकड़ी है वह उपलब्ध करा तो रहे और अपन हरेक तरीके से काम आवे और अपनी जो ऑक्सीजन है सांस लेने वाली वायु है वह भी अपने देवे। तो देखो कितनी काम की बात है कि आप बिरखा में सचो काम जो है वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाने को करा और वह मैं ध्यान देवा कि पेड़ पौधा लगाने से पहला जो खड्डा खोद अपने खाद डाल फिर अच्छे तरीके से लगावा ताकि वह मैं कि पौधे ने हमेशा वायु मिलती रहे हवा नीचे से जड़ा ने मिलती रहे तो ताकि और पानी गहराई थी जाते रहे ए बात रो ध्यान देवा ताकि पेड़ आसानी से जल्दी बढ़ो।
1: और अनिल भाई पेड़ पौधा लगा से तो अपनो जो तापमान है वो भी नियंत्रण रहसी अपनो जो आसे पास वातावरण है वो बहुत ही स्वच्छ रहसी और मतलब आपा कहीं एक खुल गया ऑक्सीजन ले सका हाँ और अपनों आप देख

0: हाँ कि जो को ग्रामीण परिवेश है नी पेड़ पौधा सुरक्षा
1: झारखंड रो मतलब मैं समझ गयो।
0: हाँ
1: मुक्ता बहन के भी जो आप देखने लग रहे हैं कभी कति अतिवृष्टि होने लग रही है, कभी ओलावृष्टि होने लग रही है, कभी गर्मी ज्यादा पड़ने लग रही है और कभी कड़ाकर ही सर्दी पाड़ो पड़ने लग रही है, जैसे अपनी फसलों नुकसान हो जाए तो उन सगड़ा से बचने को एक ही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाओ।
0: और अनिल भाई अब सुना मीठो सो एक और गीत लो।
1: हाँ सर सुना यो मीठो सो अगलो लोगी
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मुक्ता बहन देखो, अपा खेतीबाड़ी की बातें करा, खेतीबाड़ी में अपा उत्पादन किया ज़्यादा ले सकता वह सरों भी बात करा, पर कई बातों अपन ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जो कि आधुनिक तकनीक है उन्होंने सगे अपना समझ से बिठार अगे बढ़ा, जी अपा आज भेंट वार्ता माध्यम से जाना कि ई नाम जकी योजना है वह मैं फसल रो उचित मूल्य किया प्राप्त करा और वह माध्यम का ही है। मैं सरू अपा जानकारी दे रहा है डॉक्टर विक्रम योगी और जानकारी दे रहा है श्री संदीप पारिक।
5: वर्तमान समय में किसान के पास खेतीबाड़ी के कई तरीके जो हैं ऐसे उपलब्ध हैं जो पहले नहीं थे। खेतीबाड़ी में नई नई तकनीक आई हैं, नई सुविधाएं जो हैं वो किसानों को आज मुहैया हो रही हैं। और इसी प्रकार बीज की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक भांति भांति के नए नए प्रयोग जो हैं वो खेतीबाड़ी में हुए हैं और उनसे जुड़कर किसान जो है वो अपना फ़ायदा उठा भी रहे हैं। लेकिन फसल को जब किसान काट लेता है उसके बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि उसका उचित दाम जो है वो उसको मिल सके। इस संबंध में भी काफ़ी प्रगति हुई है और बहुत सी इस तरह की बातें हैं जिन्हें आज के किसान को जानना बहुत ज़रूरी है। तो किसान जो है वो अपनी फसल को काटने के बाद किस प्रकार से बेचे ताकि उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके तहत ई नाम जो है वो एक अच्छी सुविधा है जिससे जुड़कर किसान अपने उत्पाद का अच्छा मुनाफा जो है वो ले सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बारे में हमारे किसानों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो इन सब चीज़ों से ना वाकिफ है, अनभिज्ञ हैं। लेकिन इन सब बातों की जानकारी होने के बाद हमारे प्रदेश का किसान भी अपने अनाज का उचित मूल्य जो वो प्राप्त कर सकता है। अब ई नाम के माध्यम से किसान किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में पधारे हुए हैं डॉक्टर विक्रम योगी जी। आप सहायक आचार्य हैं कृषि अर्थशास्त्र कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
6: धन्यवाद
5: डॉक्टर साहब। एक बात हम जानना चाहते हैं कि आज के युग में हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो किसान की जब बात आती है तो उसने भी अपनी खेतीबाड़ी में कई प्रयोग किए हैं, लेकिन उन प्रयोगों का वास्तविक लाभ तब होता है जब किसान को आमदनी भी उनका प्रयोग करने पर अच्छी हो। अब जब किसान को फसल मिल जाती है तो उसका उचित दाम मिले, तो उसके लिए उसके पास आज क्या साधन है?
6: किसानों को उचित दाम मिले इसके लिए भारत सरकार ने ई नाम एक स्कीम थी लॉन्च की।
5: जी,
6: ई नाम क्या है? एक पैन इंडिया पोर्टल है जिसके माध्यम से ये एक अपने किसान भाई है उनको एक राष्ट्रीयकृत बाजार उपलब्ध कराता है।
5: जी,
6: अब किसान भाई इस द्वारा अपने उत्पाद को उनके जो पास की नज़दीक की मंडी है उसमें लाए और ई नाम के माध्यम से वो अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक मार्केट को एक बढ़ावा दे दिया है। पहले एक किसान भाई के जब उत्पाद लाते थे तो अपने एक नज़दीकी मंडी में तो वहाँ के एक जो व्यापारी थे वो भाग लेते थे, जिससे उनसे उचित प्राइस नहीं मिल पाता था या कभी कभी मिल भी जाता था तो कुछ कमियाँ रह जाती थी। अब क्या है कि ई नाम के द्वारा बहुत से व्यापारी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जिसके माध्यम से वो किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।
5: मतलब कहने का कि ऑनलाइन माध्यम है, प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन,

0: जिससे जुड़कर किसान अपनी फसल का उचित मूल्य जो है वो ले सकता है, भारत में कहीं पर भी वो अपनी फसल बेच
1: बेच
0: सकता है।
1: सकता है।
0: लेकिन अब सवाल ये होता है कि ये जो ई-नाम है, क्योंकि किसानों के लिए बहुत ही नई सी चीज़ है ये,
1: हाँ
0: तो किसान के मन में एक स्वाभाविक ये एक प्रश्न उठता है कि ये जो ई-नाम है इसको संचालित कैसे किया जाता है, ये कैसे संचालित होता है?
1: ई नाम का संचालन भारत सरकार का कृषि और किसान विकास मंत्रालय है वो ही करेगा। उसने एक संस्था बना रखी है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम,
0: जी
1: लघु सीमांत कृषक व्यापार संघ, इसके माध्यम के द्वारा ये जो स्कीम है वो चलती है। इसके अंतर क्या होता है, जो हमारी जो नज़दीक की मंडियां हैं उन्हीं को आपस में एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ा गया है। भारत सरकार की मोर देन जो लगभग 5,000 से ज़्यादा मंडियां हैं जिनको एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ दिया गया है। ये कोई अलग से मंडी नहीं है, ये जो हमारे पास की जो नज़दीक की मंडी है वही मंडी है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूसरे भारत के किसी के कोने में मंडियां हैं उनसे जुड़ गई है, जिससे कहीं का व्यापारी देश के किसी भी कोने में बैठा हो वो बीकानेर की मंडी में क्या सामान आया वो वहां बैठा बैठा वो देख सकता है, और कितना प्रोडक्ट आया है, कितनी क्वांटिटी में आया है, कौन कौन सी वेराइटीज आई है, क्या क्या उस उत्पाद की क्वालिटी है, ये सब पैरामीटर उसमें इलेक्ट्रॉनिक
0: और
1: माध्यम
0: किस
1: से
0: किस
1: प्रोवाइड
0: मूल्य पर
1: कर,
0: उपलब्ध है वो?
1: हाँ किस
0: हाँ
1: मूल्य पर, नहीं मूल्य उनको डिसाइड करना है,
0: अच्छा
1: मूल्य व्यापारी डिसाइड करेंगे। अब फार्मर अपना प्रोडक्ट लाया, उचित जो जो भी उसका प्रोडक्ट है वो वहां लाया, और वो प्रोडक्ट उस व्यापारी को भारत के किसी कोने में बैठा हो क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसके पास अवेलेबल हो जाएगा, जिससे वो वहीं बैठा, ये जो ऑक्शन या बैडिंग होती है, जो बोली लगाने की प्रक्रिया है, वो वहां बैठा इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। अब उससे फिजिकल या भौतिकी रूप से अपने यहाँ इस बीकानेर की मंडी में आने की आवश्यकता नहीं है।
0: नहीं है। तो ये जो ई नाम है, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो है जो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करता है किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए। अब सवाल ये है कि अगर कोई किसान जो है वो किसी गांव में है और वो इस ई नाम योजना से जुड़ना चाहता है, उसमें शामिल होना चाहता है, तो क्या उसके लिए कोई शर्त होती है?
1: जैसे कि ई नाम बेसिकली क्या है, इसको लागू करना जो राज्य सरकार उस पर निर्भर करता है।
0: जी
1: राज्य सरकार में जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी रूल्स है, एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिशन रूल्स है, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके एक जो भी व्यापारी इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको एक लाइसेंस देना होगा, जितनी भी मंडियां राजस्थान में हैं उनके लिए एक लाइसेंस बनाने का वैध करना होगा। दूसरा, एकल शुल्क रखना होगा, ऐसा नहीं कि एक व्यापारी को यहाँ बीकानेर के लिए अलग शुल्क देना है, जोधपुर के लिए अलग शुल्क देना है, ऐसा नहीं। और जो ट्रेडिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक होगी, फिजिकली नहीं होगी, भौतिक रूप से नहीं
0: मतलब
1: होगी,
0: उसमें बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी।
1: पारदर्शिता आएगी
0: जी
1: उसके अंदर
0: जी जी
1: जी। और अब हम बात करते किसान भाई कैसे जुड़े, तो किसान भाई अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कराने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पहला, आजकल सभी के पास एंड्रॉयड
0: मोबाइल।
1: मोबाइल है,
0: हाँ
1: आप इसकी वेबसाइट पे जाइए www.enam.gov.in, तो
0: जी
1: वहां पर आप जाके उसके पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए। मोबाइल एप्लीकेशन भी इसकी उपलब्ध है ई नाम की मंडी की, तो
0: अच्छा
1: उस पर भी आप कर सकते हो। यदि ये भी नहीं कर सकता तो किसान भाई जब अपना उत्पाद मार्केट में बाजार में जब लेके आते हैं तो एंट्री गेट जो भी मंडी है उसके एंट्री गेट पर किसान भाई अपना उत्पाद ई नाम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ गवर्नमेंट ये सुविधा प्रदान करवा रही है।
0: तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छी सुविधा है कि जो किसान थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो ई नाम की जो वेबसाइट है वहाँ पर
1: हाँ
0: जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जो करवा सकते हैं, अन्यथा वो ई नाम का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके भी इससे जुड़ सकते
1: जुड़
0: हैं।
1: सकते
0: और
1: हैं।
0: जो मान लीजिए किसान बिल्कुल ही इस संबंध में जानकारी नहीं रखते हैं, तो वो मंडी में जब हम प्रवेश करते हैं तो
1: प्रवेश
0: वहाँ
1: हो,
0: गेट पर ही इस रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो है वो
1: हाँ
0: उपलब्ध है, ई नाम में वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि जब किसान ई नाम से जुड़ता है तो ये जो मौजूदा मंडियां हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक प्रश्न जो है वो दिमाग में उठता है किसानों के।
1: अब मौजूदा मंडियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना भी व्यापार होगा, जो भी बिजनेस होगा, इन्हीं मौजूदा मंडियों में होगा। जो भी आपकी लिखा पढ़ी होगी, जितनी भी आए, जो भी इसकी लिखा पढ़ी होती है, जो भी शुल्क लगता है, वो मौजूदा मंडियों में ही रहेगा। लेकिन बस इतना ही फर्क पड़ेगा, पहले जो 20 व्यापारी इस एक मंडी, मान लो छोटी मंडी, वहां 20 व्यापारी थे, अब उनकी संख्या 100 हो जाएगी, क्योंकि पूरे भारत से जो व्यापारी है वो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बोली लगा सकते हैं। पहले तो एक शहर है उसके जितने

0: व्यापारी थे वही आएंगे, लेकिन अब क्या है, व्यापारियों की संख्या बढ़ जाएगी और उनमें आपस में कंपटीशन होगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। जो मार्केट है उसकी फीस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां तक कि फार्मर को ये अपने उत्पाद की क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करेगी, क्योंकि जैसे ही आप मार्केट में आओगे तो आपके जो प्रोडक्ट है, आपका उत्पाद है, उसके सारे क्वालिटी पैरामीटर आपको चेक किए जाएंगे, तो जिससे आप जब भी नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा कि ये क्वालिटी होती है, इसका अच्छा प्राइस मिलेगा। तो ये किसान भाइयों के और वहाँ जो व्यापारी है उनके लिए भी फायदेमंद है, और ये सभी के लिए एक अच्छी पहल है।
1: जी। अब डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल और भी आता है कि जो हमारे ग्रामीण किसान है उनके मन में एक थोड़ा सा संशय रहता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी फसल का पहचान वगैरह जो कर रहे हैं, तो कई बार मन में सवाल आता है कि जो ई नाम है वास्तव में इसका संचालन जो है वो कैसे होता है, कौन करता है?
0: इसका संचालन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार का है एक प्रक्रम है,
1: जी
0: लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, ये इसका संचालन करता है, जिसको हम इंग्लिश में SFAC भी कहते हैं, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम भी कहते हैं,
1: जी
0: वो इसका संचालन करता है और उस वो ही इसकी पूरी देखभाल उसी के माध्यम से हो रही है। तो किसान भाइयों को कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा कि कुछ पैसा नहीं मिलेगा या कोई भी जो
1: हाँ,
0: प्रॉब्लम
1: मतलब कहने
0: आएगी,
1: का मन में कोई
0: हाँ
1: संशय वाली बात
0: संशय
1: नहीं
0: वाली
1: है
0: बात नहीं
1: क्योंकि
0: रहेगी,
1: भारत सरकार द्वारा
0: भारत
1: ये
0: सरकार का
1: संचालन।
0: डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इसके
1: जी
0: अंदर।
1: जी जी अब मान लीजिए कोई किसान इससे जुड़ना चाहता है तो उसको क्या दस्तावेज देने होंगे और क्या कोई फीस वगैरह भी लगती है ई नाम से जुड़ने के लिए?
0: ई नाम की जो सुविधा है, पंजीकरण की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसान भाई को 1 रुपए भी नहीं देना इसके रजिस्ट्रेशन करने के
1: ये तो
0: लिए।
1: बहुत ही बढ़िया बात है।
0: किसान भाई को अपना थोड़ा बहुत जानकारी देनी है, जो आजकल हम आधार कार्ड के माध्यम से सबको देते हैं,
1: जी
0: एक पहचान पत्र हो और एक हमारा बैंक का खाते की पासबुक हो
1: जिसमें पैसा जमा हो
0: जिसमें
1: जाए।
0: पैसा जमा हो जाए।
1: जी।
0: तो किसान भाई को कुछ भी नहीं करना, बस अपने एक आइडेंटिटी कार्ड या आधार पहचान पत्र
1: पहचान
0: है
1: पत्र
0: और एक
1: और
0: बैंक की रसीद लानी है,
1: बस वो देनी है और उसके बाद वो सीधे ई नाम से
0: ई नाम से
1: जुड़ सकते
0: जुड़
1: हैं।
0: सकते।
1: अच्छा, किसान जब ई नाम से जुड़ जाता है तो फसल तो वो बेच ही पाएगा, इसके अलावा भी और कोई फायदे हैं जो किसान को मिलते हैं?
0: इससे किसान भाई के सबसे है कि बढ़िया फायदा ये है कि ज़्यादा व्यापारी होने के कारण जो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे जो किसानों की समस्या क्या है कि उनके पास वो मोल भाव नहीं कर पाते, इंग्लिश में कहते हैं बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो किसान भाइयों की मोल भाव करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जो व्यापारी है उनमें भी आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, तो जो किसान भाई को सबसे पहले जो जरूरत है अच्छा मूल्य मिले उसके फसल का, वो यहाँ उसको अच्छा मूल्य मिलेगा। दूसरा, ये जो माध्यम है एक पारदर्शी माध्यम है, मन में संशय नहीं रहेगा कि हमारे साथ कुछ चालबाजी हो गई या कुछ माल प्रैक्टिसेज हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा है कि मंडी में आप घर बैठे मोबाइल से देख सकते हैं कि आज मंडी में ज़्यादा आया है या कम आया है और क्या कल क्या मूल्य रहा था, ये सारी जानकारी आप एक ऐप के माध्यम से किसान भाई को मिल जाएगी। तो जब प्राइस का बढ़ रहे हैं तो उस समय किसान भाई इस मंडी में अपने लाके अपने उत्पाद को बेचेगा तो उसके दाम मिलेंगे। और दूसरा, इसमें जो भुगतान की प्रक्रिया है वो एक बहुत ही त्वरित गति से होगी और फास्ट गति से होगी और डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा, जिससे कोई प्रकार का जो फ्रॉड होने का वो कोई चांस नहीं रहेगा,
1: जी, मतलब पैसा भी जो है वो तुरंत किसान के बचत खाते में
0: जाएगा।
1: आ जाएगा। अब एक चीज़ और है कि मान लीजिए कोई किसान, हम देखते हैं जब मंडी में जाते हैं तो वहाँ मोल भाव करके किसान अपनी फसल बेच देता है, लेकिन जब किसान ई नाम से जुड़ जाएगा तो उसको अपनी फसल बेचने में, उपज बेचने में लगभग कितना समय लगेगा?
0: किसान भाई को इसमें बहुत कम समय लगेगा। समय लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में कितना लोट आया हुआ है, कितना उत्पाद आया हुआ है किसी भी फसल का। तो जैसे ही किसान भाई, मैंने बताया था कि गेट पर जाएगा, तो उसमें वहाँ पर उसका एंट्री रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे ही एंट्री रजिस्ट्रेशन होगा, उसके लोट के लिए एक यूनिक आईडी मिल जाएगी।
1: जी
0: वो यूनिक आईडी उसके जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर उसकी जनरेट हो जाएगी। अब जो व्यापारी हैं वो अपनी अपनी बोली लगाएंगे और उसको लॉक कर देंगे। उसको लॉक करने के बाद में किसान भाई के पास ये अधिकार रहता है कि जो व्यापारी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसका उनके पास आ जाएगा कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते हैं या अस्वीकार करना चाहते हैं। तो किसान भाई इसमें कहीं भी बाध्य नहीं है स्वीकार करने के लिए, उसे लगे कम भाव मिला है तो उसको मना भी कर सकता
1: मना
0: है।
1: भी कर, जी
0: और तो यदि भाव उसको अच्छा लग मिला है तो उसको स्वीकार कर लेगा।

0: और ये प्रोसेस एक दो दिन में होते ही कंप्लीट हो जाएगी और उसके जो पैसा है उसके बचत खाते में आ जाएगा।
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है कि किसान आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अपनी फसल का किस प्रकार से उचित मूल्य जो वो प्राप्त कर सकता है। तो ई नाम से जुड़कर किसान किस प्रकार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अपने उत्पाद को बेचकर अच्छा मुनाफा ले सकता है, पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विक्रम योगी जी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो साहब, बहुत ही फूटी सी जानकारी, ई नाम फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने का सशक्त माध्यम, और जानकारी दे रहा डॉक्टर विक्रम योगी और आसू जानकारी ले रहा श्री संदीप पारिक। तो जानकारी बहुत ही फूटी सी, बहुत ही आपन काम की सगला किसान भाई इन जानकारी रो फायदो ले सी।
3: तो मुक्ता बहन, जानकारी रीते बात करिए तो जानकारी तो अपने भारत सरकार अपन आगे बढ़ाने खातर घनी योजना ले हुए, उन सगली योजना की जानकारी अपन होनी चाहिए, और जानकारी हो यदि अपन सच्चे रूप में खुद आगे बढ़ा और अपने भाई बंधुवान भी वह जानकारी उपलब्ध करार आगे बढ़ा सका। वहीं सरु देखो जो कि एक योजना री और हमारे ध्यान में है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सरु भी अपन जानकारी रखा और वह देखा कभी अपनी जो कि बच्चियां है उन्होंने आप आगे बढ़ाने खातर जगह प्रयास कर सका, अपनी सरकार भी वह अपनी सहायता करे भी अपनी जो कि बेटियां हैं वह पढ़े और लिखा आगे बढ़े और हर क्षेत्र में नाम रोशन करे, वह सर उन्होंने जो कि सुविधा है वह भी उपलब्ध कराई जावे।
2: और अनिल भाई, आपा देखा कि परिवार ही सबसे बड़ी संपत्ति अपनी संतान ही होया करे, और प्रत्येक माँ बाप को कर्तव्य है कि आपा बच्चा ने आगे बढ़ा, और बच्चा ने मतलब बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रख, और बेटियाँ रो भविष्य भी उन्नत बनावा, बने आत्मनिर्भर बनावा, और ताकि वह काल को एक चोखो मतलब आगो आगे आप चोखो लेगा वह। और इन वास्ते अपनी जी की भारत सरकार है बहुत चोखी योजना ले रही है, और इन योजना के माध्यम से बालिका रे शिक्षा ने बढ़ावा देना है, मेरी आर्थिक सुरक्षा देनी है, बचत री आदत विकसित करनी है, और भविष्य री जितनी आवश्यकता है बिरी तैयारी करनी है।
3: तो देखो बात तो आप और भी कर सकें अपने कार्यक्रम रमाई, पर बात सागे सागे अपने किसान भाई बहन उड़ीक रखे गितड़ लारी, तो कोई गितड़लो भी अपने।
2: हाँ, तो आपा अगलो गितड़लो सुना, और वीणा रस्तोगी री आवाज में गायड़ो है, बहुत ही फूटो सो गितड़लो है, तो सुनाओ गितड़लो।

0: संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है।

0: तो मुक्ता मैंने अबार अपना संदेश सुने और संदेश से पहला मीठो सो लोकगीत सुने और अपनी जी की बात करा तो देखो आप खेती बाड़ी सागे सागे अपनों जो को मोटो काम है पशुपालन और पशुपालन में आप ध्यान देवा कि भाई अभी जो कि बिरखा री टेम है तो वह हुमस भी हो सी गर्मी भी हो सी और जो तापमान है वो भी ज़्यादा हुआ है तो अपना जो अपना नवजात बछड़ा बछड़ी है तो उन्होंने ध्यान रखा उन्होंने जो कि लू नहीं लगे मैं खातर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलावा और छायादार स्थान पर उन्होंने बांधा और टाइम टू टाइम उन्होंने जो गाय को दूध है वो पिलाते रहो
1: और ही सगे सगे बंगवानी बतंग और को भी ध्यान रखना है कि जहाँ नवजात बछड़ा है बांगे शरीर लगभग 70% पानी भाग होया करे तो पानी की कमी नहीं हो जाए ई वागो भी अपने ध्यान रखना है और सुबह शाम जहाँ जिका पशु पालक है बनो सुझाव देना है कि नियमित जांच करवानी चाहिए समय माथे टीकाकरण कराना चाहिए पशु चिकित्सक भी संपर्क रखना चाहिए।
0: तो देखो अपना बछड़ा बछड़िया री ध्यान रख सियाँ जब भी अपनी जो कि पशुपालन आ रही अगली नस्ल है वह अच्छी उन्नत किस्म उसी तो मैं सर वो अपन ध्यान देवा और अबार अपन ध्यान देवा अगले गीत लगाने

0: अठरेणु कोनी देश वीरानो है गंगाराम नायक री आवाज में भूती फूटो सो हरजस सुनियो अनिल भाई आपा और वक्त हो रे पूरो आज्ञा दिराउ सा आपरी बेन मुक्ता जैन
1: और अनिल सिंह कीचड़ ने दोषी घना घना
0: राम राम, राम।

0: 98 कोनी देश वीरानो है, गंगाराम नायक री आवाज में भूती फूटो सो हरजस सुनियो अनिल भाई आपा और वक्त हो रे पूरो आज्ञा दिराउ सा आपरी बहन मुक्ता जैन
1: और अनिल सिंह कीचड़ ने दोषी घना
0: राम।

0: अभी ग्रामीण श्रोताओं ने अपना कार्यक्रम सुना ग्रामीण जगत, प्रस्तुति थी अनिल सिंह और मुक्ता जैन की। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: सात सुरों का बहता सागर सबको कराए अमृतपान, संतों ने सुर के ही द्वारा जग को दिया है दिव्य ज्ञान। स्वर संगीत और काव्य में हृदय वीणा के तार झंकृत करने की अद्भुत और महान शक्ति है। कबीरदास, तुलसी, सूर, रसखान, रैदास और मीराबाई ने अपने भावभीने भजनों द्वारा भक्तिभाव की ऐसी रसवर्षा की है जिसमें भीख कर प्राणी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री राधा रास बिहारी के श्री चरणों में अपना मन लगा सकता है तथा त्रिविध तापों से जर्जरित अंतःकरण के विविध मल को जलाकर उसे स्वर्ण की भांति परिष्कृत और शुद्ध बना सकता है। और तब होती है अलौकिक आनंद की अनुभूति। भजन गाने वालों ने इन अक्षरों और शब्दों में अपनी अंतरात्मा की आवाज तलाश कर ली है। अनूप जलोटा अपने पिता श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, जो भारतीय भजन सम्राट के नाम से पहचाने जाते हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। अनूप के गले में जो मिठास है, उनके स्वर में जो रस है, उसे सुनकर आप यही महसूस करेंगे कि प्रकृति ने अपने कामों के लिए बाज लोगों को ऐसी शक्तियां और प्रतिभाएं दी हैं जो केवल प्रयास से प्राप्त नहीं हो सकती। तो आइए अब हम आज के कलाकार अनूप जलोटा से भजन सुनते हैं।

शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है। तो शब्दों की सुंदरता देखिए।

अभी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 8:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म आशाएं से गीत।

अभी आपने सुना फिल्म आशिकी 2 से की आवाज़ थी अरिजीत सिंह और अलका झा की। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए श्रद्धा कपूर और अरमान मलिक की आवाज़ में फिल्म बागी से।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म ऑल इज वेल से गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आप सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत हेट स्टोरी 3 से। आवाज़ें हैं अरमान मलिक की।

अभी आपने सुना कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अब्दुल सकूर सुलेमानी की आवाज़ में लोकगीत।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना लोक संगीत आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 8:45 होने को हैं। अब आप हमारे

0: अभी आपने सुना लोक संगीत आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 8:45 होने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी M. पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।

0: शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
2: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़

0: कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
3: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर

0: आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership. Inc. 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
2: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर MOU की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर MOU को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
1: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
3: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.
1: According to the joint statement, Prime Minister Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. We have a report.
4: During the delegation-level talks, 11 agreements were signed in the fields ranging from labor migration, defense, digital technologies, higher education, audiovisual production, establishment of an AI chair, quantum communication, cooperation in student exchange programs, and tourism development. Agreement was also signed on scientific cooperation between the Indian National Science Academy

0: DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in the US tonight. And that's all in the news at night. Good night.
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए यारियां ट्यू से मनन भारद्वाज और अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत।

आपने सुना फिल्म कारवां से गीत, आवाजें थी अरिजीत सिंह की। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म टू स्टेट से, आवाजें हैं चिन्मय श्रीपदा और अरिजीत सिंह की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से गीत।

नमस्कार आदाब। रात के ठीक 9:30 हुए हैं और रेडियो की इस खूबसूरत महफिल में हम हैं आपके साथ। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा ठहरने का, सुस्ताने का और यादों के गलियारों में खो जाने का। अगले 30 मिनट मैं लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत पुरानी फिल्मों से। आज हमारे पिटारे में है पुराने दौर के वो सदाबहार नगमे जिनकी धुनें जितनी मीठी है उनके पीछे की कहानियां उतनी ही दिलचस्प। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सफर को और चलते हैं साल 1965 में, एक बहुत ही शानदार फिल्म और उसका एक शानदार नगमा। फिल्म का नाम है गाइड। श्रोताओं, जब यह गाना बन रहा था तब संगीतकार एसडी बर्मन साहब को दिल का दौरा पड़ा और इस गीतों के काम को 6 महीने तक रोक दिया गया और ठीक होने के बाद उन्हें सिर्फ 5 दिन में यह जादुई धुन तैयार की। मजेदार बात यह है कि देव आनंद साहब ने उस समय में यह गाना पसंद नहीं किया था, पर जब पूरी यूनिट इसे गुनगुनाने लगी तो उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। तो चलिए सुनते हैं फिल्म गाइड से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, जो वास्तव में जिंदगी को नए नजरिए से दिखाता है।

कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जिन्हें जब भी सुने सुकून देती है। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस फनकार की जिसके पास संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग यानी कि कोई शास्त्रीय शिक्षा नहीं थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हम सबके चहेते किशोर कुमार की। संगीतकार आर डी बर्मन और किशोर कुमार की यह जोड़ी जब भी स्टूडियो में बैठती थी तो जादू होना तय था। इस गाने के बारे में कहा जाता है कि बिना किसी एडवांस तकनीक के भी किशोरदा की तान इतनी सटीक बैठी थी कि इस गाने को बिना किसी रीटेक और बिना वक्त गवाए बहुत ही कम समय में रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो आप सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कटी पतंग से।

फोरदा की इस खूबसूरत आवाज के बाद रात के सन्नाटे में हवा के रुख को थोड़ा संजीदा करते हैं। यह गाना जितना खूबसूरत है, इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही खूबसूरत है। संगीतकार सलील चौधरी ने यह धुन मूल रूप से एक बंगाली गाने के लिए बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने इसे फिल्म आनंद के लिए चुना और मुकेश जी की मखमली और दर्द भरी आवाज इससे जुड़ी, तो वास्तव में भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार गीत बन गया। एक समय राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में माना था कि पर्दे पर उनके अभिनय को निखारने में इस गाने का बहुत बड़ा हाथ था। तो सुनिए और खो जाइए कानों के इस समंदर में।

अपने घरों की ये बहुत खूबसूरत बात है कि वो जितने संजीदा होते हैं उसके साथ साथ कई गाने माहौल में लाते हैं जोश और धड़कन। ऐसा ही ये गाना है। जब इस गाने का नाम आता है तो हमारे दिमाग में शम्मी कपूर साहब के वो कमाल के डांस मूव आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड किया था तो उस समय शम्मी कपूर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे और मोहम्मद रफ़ी साहब ने बिना उन्हें देखे, उनके डांस मूव देखे, केवल अपने समझ के हिसाब से उस गाने को उसी डांसिंग मूव के हिसाब से रिकॉर्ड किया और इस डांसिंग स्टाइल के अंदर फूंक दिया। और वास्तव में जब शम्मी कपूर साहब ने पहली बार इस गाने को सुना तो खुद हैरान रहे कि रफ़ी साहब ने बिना देखे उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी किया और ये खूबसूरत सा गीत उन्होंने गाया। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

इस गीत के साथ आगे बढ़ते हैं किशोर कुमार की ओर। जी हाँ, जब पुराने गाने हों और किशोर कुमार की बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्ष 1958, जी हाँ, ये फिल्म है चलते का नाम गाड़ी, बनी थी वर्ष 1958 में। और इस खूबसूरत से गाने की जब रिकॉर्डिंग की गई, तो वास्तव में किशोर कुमार अपने चुलबुले अंदाज के कारण कई अजीब तरीके की आवाज़ें निकाल रहे थे, और संगीतकार एसटी बर्मन उनसे बहुत नाराज़ हुए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मस्ती गाने को और मज़ेदार बना रही है, तो उन्होंने उन आवाज़ों को गाने में वैसे ही रहने दिया। तो चलिए सुनते हैं किशोरदा और आशा भोंसले की आवाज़ में ये शरारती गीत।

अब वक्त हो चला है हमारे आज के आखिरी और आप सबके लिए खास नगमे का। गीतकार शैलेंद्र साहब ने इसे बहुत ही साधारण धुन मानकर लिखा था। यहां तक कि जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इस गाने का काम चल रहा था तो वह मौजूद कई लोगों को लगा कि यह गाना पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि इसकी धुन

थोड़ी विदेशी गानों जैसी लगती थी, लेकिन जब लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज में इसे गाया तो इस गाने ने सारे कयासों को झुठला दिया और एक नया इतिहास लिख दिया। तो चलिए कार्यक्रम के आखिरी लगमे को सुनते हैं

अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। सचमुच श्रोताओं, इस गानों के किस्सों और धुनों के बीच वक्त का पता ही नहीं चला। घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि रात के 10 बजने को हैं और अब यादों के इस कारवा को यहीं रोकना होगा। उम्मीद करते हैं कि गुजरे ज़माने के इन धुनों और इनके पीछे की कहानियों ने आपकी इस रात को और भी हसीन और सुकून भरा बना दिया होगा। आपसे इन्हीं गानों के साथ रोज मुलाकात होती है और रोज होगी। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो

ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजने को हैं।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भेंट वार्ताएं, जिनमें सबसे पहली भेंट वार्ता है हैंडबॉल खिलाड़ी एवं कोच श्यामवीर सिंह राजावत और चंद्रवीर सिंह राजावत से रविकेश मीणा की बातचीत। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर केंद्र का अंशदान है।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मेहमान के रूप में श्याम सिंह राजावत जी, निवासी न्यू जवाहर कॉलोनी ठींगला सवाई माधोपुर से। दूसरे मेहमान के रूप में पधारे हैं हमारे पास खिलाड़ी चंद्रवीर सिंह राजावत जी, निवासी बाल मंदिर सवाई माधोपुर से। कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत है, नमस्कार जी।
2: नमस्कार सर।
1: तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्याम सिंह राजावत जी से। श्याम सिंह जी, आपकी खेल जगत की शुरुआत कहाँ से हुई है?
2: सर, जब मैं 12 साल का था तब से हैंडबॉल खेलना शुरू किया
1: जी।
2: स्टार्टिंग से सब जूनियर टूर्नामेंट खेले, कई सारी जूनियर भी खेले, हम लगभग 30 से 35 चैंपियनशिप खेली मैंने
3: अभी तक। ठीक है, हम खिलाड़ी के साथ साथ कोचिंग भी दे रहे हैं बच्चों को
1: जी।
3: तो हम छोटे बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, वो भी हर साल यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, मेडल ला रहे हैं, अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं और निरंतर प्रतिभा बाहर निकल रही है सवाई माधोपुर से।
1: बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपकी शुरुआत कब और कहां से आरंभ किया आपने खेलना?
4: सभी को नमस्कार। खेलने का तो यह हिसाब से बचपन में जब एक बार गलियों में कॉलोनियों में खेलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वही कोई किसी को देखते हैं और उनको अपना आइडियल बनाते हैं, ऐसे समय पे कुछ सलाह देने वाले मिल जाते हैं, कोचेज मिल जाते हैं, तो वो खेल को निखारते हैं। तो अमूमन छठी सातवीं आठवीं क्लास से जो टीचर थे हमारे सीजीएल जी भार साहब मनटाउन स्कूल में जो पीटीआई थे, उन्होंने मुझे पहली बार देखा और मेरे को टीम में लिया
1: जी।
4: उसके बाद ये सफर चलता रहा, आज तक चल रहा है।
1: बिल्कुल अच्छा, हैंडबॉल आने से पहले आपको कहीं से प्रेरणा मिली श्याम सिंह राजावत जी?
3: सर, स्टार्टिंग जब सवाई माधोपुर में हम खेलना शुरू किया था तब चंद्रवीर सर ही कोच थे हैंडबॉल के।
1: आज गुरु चेला दोनों साथ
3: उन्होंने स्टार्ट किया था, तब से हम आज तक हैंडबॉल खेल रहे हैं और खिला भी रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद राजस्थान लेवल पे बात करें तो आपके प्रियदीप सिंह जी है जो अभी काउंसिल में कोच लगे हुए हैं हैंडबॉल के, उन्होंने भी काफी सहयोग मिला, उनसे सीखने को काफी कुछ मिला। और सबसे पहले उनकी आज काउंसिल में वो कोच लगे, सबसे पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुर थी।
1: अच्छा।
3: तो उन्होंने यहाँ 3-4 साल तकरीबन रहे, काफी कुछ बच्चों को सिखाया, ग्राउंड चलाया, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आपके गुरु कौन है आरंभिक, और इस खेल में कैसे आपकी रुचि बढ़ी है
4: खेल में? जब मैं कॉलेज में था, वहाँ कॉलेज में जब ग्रेजुएशन में था तब वहाँ हमारे सर थे और दोस्त लोग थे जो उन्होंने कहा हैंडबॉल में बुलाया। बेसिकली मैं खेलता फुटबॉल था पर उन्होंने मुझे बुलाया हैंडबॉल में। तो हैंडबॉल की स्पीड और हैंडबॉल का मतलब एक कह सकते आप बड़ा फास्ट गेम है
1: जी,
4: जो उसको देख के मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ और फिर मैंने कहा यार खेलते हैं, खेलने लगे। फिर उसमें बूस्टअप कर दिया कोच प्रियदीप सिंह जी ने, जिनकी पहली पोस्टिंग 2011-12 में राजस्थान काउंसिल में कोच की भर्ती, उसमें वो चयन हुआ उनका, उनकी पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुर मिली उनको
1: जी।
4: तो वो उनको देख के उनका चार्म और वो खुद इतना अच्छा लेवल के प्लेयर थे तो उनको देख के हम भी सोचा कि ऐसा तो बन ही जाए, ऐसा नहीं तो कुछ तो बन ही सही इनके जैसा। तो वहां पे फिर हम इस गेम की तरफ मूव करने लग गए।
1: बिल्कुल, सफर तो चलता रहा। चंद्रवीर जी, आज हम देखते हैं कि आपका बचपन से लेकर अब तक का जो भी मैच था उनमें सबसे यादगार कोई पल अगर आपका रहा हो तो वो थोड़ा सा हमें बताएं।
3: हाल ही में सर सीनियर चैंपियनशिप खेलने गए थे हुगली वेस्ट बंगाल
1: जी,
3: वहां सर क्वार्टर फाइनल एक मैच चल रहा था हमारा
1: जी।
3: जो यूपी वर्सेस राजस्थान का चल रहा था, वो मैच में एक एक सेकंड सांसें रोकने वाला मैच था। एक यूपी के कोच थे तोहित सर, जब लास्ट 3 सेकंड बच रहे थे तब तोहित

0: ने टाइम आउट लेके और एक गोल राजस्थान पे करवा के मैच बराबर कर दिया। तो मतलब
1: क्या बात
0: एक बेहतरीन लेवल की कोचिंग देखने को मिली,
1: जी
0: बेहतरीन लेवल का मैच देखने को मिला।
1: जी
0: मतलब बैक टू बैक, नेक टू नेक फाइट चल रही थी लास्ट
1: जी
0: तक।
1: जी
0: फिर 3 सेकंड खत्म होने के बाद मैच टाई हो गया। फिर दो दो सेकंड का वापस टाइम दिया, एक्स्ट्रा टाइम,
1: जी
0: उसमें 2 गोल की लीड करके राजस्थान जीती। तो सर मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन मैच वो था जो
1: अच्छा
0: मैंने।
1: अनुभव आप लेके
0: जी जी
1: बैठे
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: अच्छा चंद्रवीर जी, आप बताएंगे कि अब जो एक सफल एंड बॉल के खिलाड़ी बनने के लिए मतलब बालकों में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए?
0: बिल्कुल साहब, सफल खिलाड़ी बनने के लिए आपको पंक्चुअल, बिल्कुल
1: समय का
0: आप पंक्चुअल रहे ग्राउंड पे, और डेडिकेशन आपका होना चाहिए और खेल के प्रति प्यार होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: जब तक आप उस चीज से प्यार नहीं करोगे वो आपको चीज नहीं मिलेगी,
1: हासिल ही नहीं कर
0: बिल्कुल।
1: सकते।
0: और कोच आपके भले के लिए ही बोलता है, आप उसको अदरवाइज लेते। जिसने कोच की बात को आंख बंद करके फॉलो किया वो बच्चा रुक ही नहीं सकता। ऐसे 50 उदाहरण हैं, जो माधोपुर के भी 10-20 उदाहरण हैं और बाहर के भी हैं, जो आज बहुत अच्छे लेवल पे हैंडबॉल खेल रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे। सिर्फ इसलिए कोच की बात को उन्होंने फॉलो किया। कोच हमेशा बच्चे को सही सलाह और सही गाइडेंस ही देता है।
1: बिल्कुल सही है श्याम सिंह राजाओ जी। आप बताएं कि मैच के पहले आप अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी किस रूप में करते हैं?
0: सर मैच से पहले हम मेंटली फिट होना जरूरी है।
1: जी
0: प्रेशर में मैच खेलेंगे तो खेल ही नहीं पाएगा खिलाड़ी। तो पहले मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली। उसके बाद ठीक है, मैच के पहले हम थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं और वार्म अपिंग करते हैं। तो उससे टीम के साथ, एक साथ टीम भावना के साथ खेलते हैं,
1: जी
0: तब जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे मैच में।
1: राजा जी, आप राष्ट्रीय स्तर के और मेडलिस्ट खिलाड़ी है, तो आप मेरे को ये बताएं कि जो आपको जो प्रेरणा दी है वो किस किस टीम के माध्यम से मिली है?
0: प्रेरणा सर हमको हमारे एचआई के फेडरेशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं तेजराज सिंह जी,
1: जी
0: उन्होंने राजस्थान लेवल पे हैंडबॉल गेम को बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष किया है सर, और अभी भी कर ही रहे हैं। और उन्हीं के साथ हमारे जो राजस्थान सेक्रेटरी हैं यश प्रताप सिंह जी, वो भी
1: जी
0: काफी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के कई बच्चों का भला किया है और आज भी कर रहे हैं। ठीक है, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग हर जगह, और हर साल इसी वजह से मेडल लेके आ रहे हैं बच्चे।
1: अच्छा, हैंडबॉल खेल में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को समझाएं।
0: हैंडबॉल में सर टीम तो 16 16 खिलाड़ियों की होती है,
1: जी
0: बाकी मैच में 7 खिलाड़ी ही खेलते हैं।
1: जी
0: राइट पोजीशन की बात करें तो एक गोलकीपर है, लेफ्ट बैक, राइट बैक, और लेफ्ट विंग, राइट विंग, और पिवट प्लेयर, ऐसे करके 7 पोजीशन होती है। और बहुत फास्ट मैच चलता है सर, हर पोजीशन का अलग अलग अपनी भूमिका रहती है।
1: सिंह जी, बात करें अपन जो आपके खेल जीवन में कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा है, थोड़ा सा वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: खिलाड़ियों का सर संघर्ष, जीवन में संघर्ष तो सभी के होता है, हर गेम
1: जी
0: वालों को।
1: जी
0: बाकी हमारे हैंडबॉल में ज्यादा इसलिए क्योंकि लोग पॉपुलरिटी कम है, ठीक है, क्रिकेट जैसा पॉपुलर गेम है नहीं।
1: जी
0: तो गवर्नमेंट से जो भी सहायता सपोर्ट या और भी सोशल, तो वो मिल नहीं पाती है सर। एक्चुअली फाइनेंशियली काफी संघर्ष करना पड़ता है हर एक स्पोर्ट्समैन को।
1: जी
0: जैसे कई क्रिकेट वाले हैं उनमें पैसा है सर, वहां तो ठीक है सब जगह सपोर्ट करती है, बाकी निचले स्तर पे खिलाड़ी को गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं है। तो कहीं टूर्नामेंट आयोजित करवाना, टूर्नामेंट में जाना आना, तो कई चीजें जो दिक्कत करती है, आज भी वो चीजें बच्चों के साथ देखने को मिलती है।
1: जी जी चंद्रवीर जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो एक सफल खिलाड़ी होता है एक शारीरिक ताकत के साथ और मानसिक संतुलन के साथ, तो इनका खिलाड़ियों का खान पान कैसा होना चाहिए अभी से, अगर बचपन से बच्चों को हम ये चाहें कि ये खेल में जाए, हैंडबॉल में जाए, ये किसी भी खेल में जा सके, तो उसका खान पान कैसा होना चाहिए?
0: सर ये हैंडबॉल गेम क्या बड़ा रफ एंड टफ गेम है, और
1: जी
0: ये टोटल 100% बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है।
1: जी
0: इसमें आपस में आपको रश करना ही पड़ेगा अपोनेंट के साथ।
1: जी
0: खान पीने का इसके अंदर सबसे ज्यादा अहम रोल है। आपको देसी खाना,
1: जी
0: दूध दही छाछ घी, क्यों हैंडबॉल में हनुमानगढ़, गंगानगर या ग्रामीण परिवेश के बच्चे सबसे हैंडबॉल में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं।
1: जी
0: जैसे करौली महावीर जी के
1: जी
0: बच्चे,
1: क्या बात है,
0: वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको खान पान उनको अच्छा मिल रहा है गांव के अंदर, और शुद्ध और देसी मिल रहा है। दूध भी खा रहे हैं, छाछ भी पी रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, और बढ़िया घर पे खा रहे हैं, बाहर का कोई मिलावटी नहीं खा रहे।

0: दे सकते हैं। तो आप अपने घर पे भी वर्कआउट कीजिए, जिसके लिए आपको ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं होती।
1: तो वो तो हम लोग वॉकिंग कर ही लेते हैं।
0: नहीं सर, देखिए वॉकिंग करने से और फिटनेस का ध्यान रखने से ये पूरा अलग है, क्योंकि वॉकिंग में क्या होता है, जस्ट अपने जो जॉइंट्स हैं वो मूव करते हैं और अपने पाचन क्रिया ही वही अच्छी रहती है। आपके फिटनेस लाइफस्टाइल को आप अच्छा नहीं कर सकते वॉकिंग करने से, ना ही अपनी जो बॉडी कंडीशन है वो चेंज कर पाओगे। बस ये है कि हाँ, जब भी आप वॉकिंग करते हो तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो सही रहेगी, क्योंकि अंततः आप थोड़ी बहुत अपनी बॉडी की कैलोरीज बर्न करते हो, लेकिन अपनी फिटनेस को अच्छा रखने के लिए आप।
1: लेकिन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो वॉकिंग से सुधरती है ये भी तो कहा जाता है।
0: नहीं सर, देखिए अगर आपको बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको फिटनेस के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 5,000 या 7,000 स्टेप चल पाओगे
1: जी।
0: आप 20,000-25,000 आप स्टेप नहीं चल पाओगे, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है उसमें।
1: ठीक है, हम बात करेंगे, आपने बताया घर पर अगर कोई वर्कआउट करना चाहता है तो अगर कोई इक्विपमेंट्स के साथ करना चाहे और बिना इक्विपमेंट के करना चाहे, हम सबसे पहले ये जानेंगे अगर कोई आदमी बिना इक्विपमेंट के घर पर ही शुरू करना चाह रहा है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहूंगा, वॉकिंग तो वो पहले से कर रहा है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहता है, तो वो कैसे शुरू करे?
0: देखिए सर, मैं आपको बेसिक 2-3 एक्सरसाइज बताता हूँ। जैसे कि आप पुशअप्स लगा सकते हो घर पे,
1: ठीक है,
0: ठीक है, आप स्क्वाट्स लगा सकते हो, आप कोर एरिया को कम करने के लिए आप क्रंचेस लगा सकते हो, लेग रेजेस लगा सकते हो, लंजेस लगा सकते हो और प्लैंक लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो जनरल फिटनेस है वो मेंटेन रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आपको अच्छी फिटनेस रखने के लिए आपको जिम जाना अनिवार्य है, या आप अपने घर में कुछ इक्विपमेंट्स मंगा लीजिए जिससे आप अपनी फिटनेस को अच्छा रख पाए।
1: बेसिक इक्विपमेंट्स?
0: बिल्कुल सर, बेसिक इक्विपमेंट्स में आपको रखने के लिए आप एटलीस्ट 2.5 के 2 डंबल ले सकते हो, 5 केजी के 2 डंबल ले सकते हो और एक रेजिस्टेंट बैंड भी अपने यूज कर सकते हो
1: जी,
0: जिसमें आप अपना जो बॉडी का ऑल ओवर वर्कआउट है वो आप पूरा कर पाओगे।
1: तो जो डंबल है उनसे आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, कि डंबल्स और रेजिस्टेंस बैंड्स से कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो एक बिगिनर जो करना चाहे वो घर पर एक्सरसाइज शुरू कर पाए?
0: देखिए अगर आप कोई भी वर्कआउट अपना प्लान घर पे चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले 2.5 के डंबल से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आपने शोल्डर की कोई एक्सरसाइज करनी है तो शोल्डर प्रेस लगा सकते हो, साइड रेजेस लगा सकते हो, फ्रंट रेजेस लगा सकते हो और आप ट्रैप्स लगा सकते हो, ठीक है, ये आपका शोल्डर का वर्कआउट हो गया। अगर आपको चेस्ट का वर्कआउट करना है तो आप सिंपल जमीन पे लेट जाइए, ठीक है, तो आप सिंपल जमीन पे लेट के 5-5 केजी के डंबल उठा के देन चेस्ट प्रेस लगाइए, देन डंबल फ्लाई भी आप वहां पे कर सकते हैं और पुशअप्स भी लगा सकते हैं। ये नॉर्मल बेसिक जो आप वर्कआउट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं आप अपनी बॉडी को। ऐसा नहीं है, अगर आपके माइंड में है कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, मेरे को बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी बनानी है, तो उसके लिए आपको जिम में जाना अनिवार्य है, क्योंकि सिर्फ 2 डंबल से आप अपनी ऑल ओवर जो मसल बिल्डिंग को आप इतना इनहेंस नहीं कर पाओगे।
1: नहीं, जैसे आपने अभी जो डंबल के एक्सरसाइजेस बताए वो तो हमारे जो अपर बॉडी है उसमें आप बैक हो गया या फिर शोल्डर और आर्म्स जो है हमारे उनको मजबूत हम कर रहे हैं, बाकी जो लोअर बॉडी पार्ट है जैसे लेग्स है हमारे या फिर हमारी जो कमर है,
0: लोअर बैक
1: है या फिर अपर बैक है, इनको मजबूत करने के लिए भी एक्सरसाइज है
0: जी। बिल्कुल, आप अपर बैक को मजबूत करने के लिए आप डेडलिफ्ट जैसे वर्कआउट कर सकते हैं
1: घर पे
0: कर सकते हैं 2 डंबल से भी। ऐसा नहीं है कि डेडलिफ्ट के लिए आपको हैवी डंबल्स की जरूरत पड़ती है, आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे आप उनका रेप्स ज्यादा बढ़ा लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको 5-6 रेप लगाने, आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप रेप्स भी ज्यादा लगा सकते हैं, 25-30 रेप्स लगा सकते हैं, जिसमें आपको एक फटीग महसूस होगा उस लेवल पे और उस टाइम में आपकी जो मसल बिल्डिंग है वो थोड़ी बहुत बनने लग जाएगी। लेकिन आप एक टाइम में आपको फिटनेस लेवल बढ़ाने के लिए आप थोड़े और हैवी डंबल घर पे मंगवा सकते हो, आपकी जो फिटनेस लाइफस्टाइल है वो और अच्छी हो जाएगी, जिसमें अगर अपन कुछ एक्सरसाइज और ऐड करें, जिसमें अपन स्क्वाट्स ऐड कर सकते हैं, लेग्स के लिए लंजेस लगा सकते हैं, सुमो स्क्वाट्स लगा सकते हैं और हिप थ्रस्ट भी लगा सकते हैं, ये आपकी लोअर बॉडी को मजबूत करेगा।
1: आमिर जी, अब हम बात करेंगे बिगिनर से थोड़ा ऊपर, जो आदमी, जो भी महिला है या फिर पुरुष है जो जिम जाना चाहता है, अगर वो जिम जा रहा है तो वो किन बातों का ख्याल रखे, क्या कोई भी व्यक्ति जिम जा सकता है?
0: देखिए हर कोई व्यक्ति जिम जा सकता है, ठीक है, बस थोड़ा सा ये हो कि उसका कार्डियोवास्कुलर इतना ज्यादा भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे कि वो थोड़ा भी अगर सांस
1: ले अगर एक बार पहले डॉक्टर को दिखा ले, अगर कोई पहले इशू है तो
0: जी
1: जी,
0: अगर उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं
1: जी,
0: तो वो पहले स्टार्टिंग यही करे कि वो अपना घर पे वर्कआउट करे एक अच्छे कोच के अंडर में, ठीक है, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम कंडीशन आ रखी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो दवाइयां चल रही है, उनसे पहले वो राहत पाए, उसके बाद में वो एक जिम ज्वाइन करे। और जिम जाने से पहले एक खास दिन का ध्यान रखें, जो भी आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो ध्यान नहीं रखते, वो जीन्स में आ जाते हैं, वो स्लीपर्स के अंदर आ जाते हैं, इनमें बिल्कुल वर्कआउट ना करें। आप एक जिम में जाने के लिए प्रॉपर लोअर टी शर्ट और अपना शूज और एक वाटर बॉटल और एक टॉवल वो अपना साथ रखें, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर कोई इंसान अपना पसीना बहाता है
1: जी,
0: जिससे अपने को काफी बीमारियां भी अपने आ सकती है, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम काफी क्रिएट हो सकती है, जिसके लिए आप अपना खुद का टॉवल यूज करें, जो भी आप बेंच यूज कर रहे हो, कहीं पे भी आप वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी डंबल कर रहे हो, तो उसको अपने स्वेट से दूर रखें,
1: जगह को साफ रखना चाहिए
0: जी। बिल्कुल,
1: हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उम्र इसमें मैटर करती है, जैसा आपने पहले बताया था कि 14-15 साल से ऊपर का, किस उम्र तक के लोग हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो 40-50 की उम्र को पार कर जाते हैं वो जनरली ये सोचते हैं कि हमें तो बस अब इन जो हमारी बॉडी पेन कर रही है उसके साथ ही जीना है और धीरे धीरे ऐसे ही मर जाना है।
0: देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, 15 साल के बाद

0: में आप जिम ज्वाइन कीजिए और जब तक आप जीवित हैं तब तक आप अपना जिम के लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जिसे आप अपने को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि आप शारीरिक तौर पे, जैसे अभी आप देखते हो कि 50 से 60 साल के बाद में लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में दर्द है, चलने के लिए उनको सहारा चाहिए। जनरली आप देखो 50 साल वाले लोगों के ये काफी प्रॉब्लम आ रही है, वो इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान नहीं रखते।
1: क्योंकि ऐसा होता है कि 30 की उम्र के बाद में हमारा जो मसल्स है वो घटने लगते हैं बॉडी में, और उनको बनाए रखने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट, ये दोनों जो है बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: डाइट की हम बात करेंगे कि जो जिम जा रहा है वो जिम जाने से पहले क्या खा के जाए।
0: जिम जाने से पहले आप सिंपल एक बनाना खा सकते हैं, आधा घंटा पहले एक बनाना या एक एप्पल। और जिम जाने से पहले अगर आप कॉफी का सेवन कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी का, मिल्क वाली नहीं, ओनली ब्लैक कॉफी, एक कप गर्म पानी के अंदर थोड़ी कॉफी मिला के आप पी सकते हैं। क्योंकि वो क्या करेगा, आपको जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे आपको वर्कआउट की तरह प्रेरित करेगा ताकि आप वर्कआउट और अच्छा कर पाओ। और बनाना क्या करता है, अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा ताकि आप जब भी जिम ज्वाइन करें, वर्कआउट करें, ताकि आपकी बॉडी में बिल्कुल वीकनेस ना आए, आप वर्कआउट अच्छा कर पाए और 1-1.5 घंटे तक आप वर्कआउट अपना कर पाए।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। लोगों को लगता है कि जिम जाते ही उनको सबसे पहले वो जो डिब्बे हैं वो शुरू करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी को सामान्य फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए काम करना है तो वो घर का बना खाना, साधारण जो हमारा भोजन है उसके साथ भी काम कर सकते हैं। हम आपसे आमिर ये पूछना चाहेंगे कि कितने समय तक जो वर्कआउट है जिम के अंदर वो करना चाहिए।
0: देखिए, एज ए बिगिनर के लिए आप, मैं बताता हूँ, कोई भी बिगिनर पर्सन है जो वर्कआउट करना चाहता है वो एटलीस्ट 40 से 45 मिनट या 1 घंटा माने चलिए उनको वर्कआउट करना चाहिए। जिम जाते ही सबसे पहले उनको वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए अपनी बॉडी की प्रॉपर, ताकि जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करें आपकी बॉडी में कोई भी क्रैम्प्स या मसल पेन इश्यू ना आए। ठीक है, आप अपना वर्कआउट अच्छा करें, देन वर्कआउट खत्म करने के बाद में लास्ट में स्ट्रेचिंग करें ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ में आपने जो बिल्डअप किया है, आपने मसल को फटीक किया है, वो रिलैक्स हो जाए और आपकी जो रक्त प्रवाह है, ठीक है, वो वापस नॉर्मल हो जाए सुचारू रूप से।
1: अगर हमने ग्रुप जो है मसल्स का, जैसे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स है, उनको कर लिया तो उनको रिकवर होने के लिए कितने घंटे का समय लगता है?
0: देखिए, अगर आपकी डाइट बहुत ज्यादा अच्छी
1: है,
0: ठीक है, आप अपना खान पीन का पूरा ध्यान रखते हैं, हर 2 से 2.5 घंटे बाद अपनी मील ले रहे हैं, प्रोटीन का लेवल आप प्रॉपर रख रहे हैं बॉडी के अंदर, तो आप मानने चलिए 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है उस मसल। अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही, अगर आपका वर्कआउट करने के बाद 2 दिन बाद भी उस मसल के अंदर सोरनेस है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप अपनी बॉडी के अंदर उत्तम मात्रा के अंदर प्रोटीन नहीं ले रहे, ठीक है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। तो आप ये कर सकते हैं कि 1 दिन के अंदर एक ही जो बॉडी का मसल पार्ट ग्रुप है, जैसे चेस्ट है या बैक है, शोल्डर, कोई भी मसल पार्ट है, उसको एक ही कीजिए, जैसे उसकी 4 से 5 एक्सरसाइज इनफ होती है, उसको ही कीजिए ताकि आपकी जो रिकवरी मील्स है वो उसको एक मसल को अच्छे से रिकवर कर सके, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए वो पेन ना बढ़े।
1: एक ग्रुप आपने हमें बताया, अन्य कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो मसल्स के?
0: जैसे चेस्ट हो गया, अपना चेस्ट हो गया, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स हो गए, फोरआर्म्स हो गए, अपने लेग्स हो गए, ये सब अलग अलग पार्ट्स। और इनको करने के लिए मैं आपको जनरल चीज बताता हूँ, जैसे कोई भी बिगिनर है उसको अगर वर्कआउट करना है तो जैसे मंडे को वो चेस्ट लगा सकता है, ट्यूजडे को वो अपना बैक का वर्कआउट कर सकता है,
1: ठीक है,
0: और अपने वेडनेसडे को अपना लेग का वर्कआउट कर सकता है, उसके जस्ट नेक्स्ट डे जैसे अपने थर्सडे को अपना बाइसेप ट्राइसेप लगा सकता है, फ्राइडे को अपना शोल्डर का वर्कआउट कर सकता है, और सैटरडे को वापिस लेग्स का वर्कआउट कर सकता है, क्योंकि लेग्स एक ऐसा पार्ट है कि वो काफी बड़ा मसल ग्रुप है, वो जल्दी से गेन नहीं होता और उस पे क्या होता है, पेन भी काफी होता है। तो हर कोई इंसान, मैं देखता हूँ कि लेग्स से एक्सरसाइज होती है उससे दूर भाग, लेकिन लेग का वर्कआउट सबसे अच्छा करना चाहिए आपको, क्योंकि लेग वर्कआउट करने से आपकी ऑल ओवर बॉडी ज्यादा अच्छी होती है, कंडीशन ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जब मेन ग्रुप की बात करते हैं तो उनका क्या होता है, जब भी अपने लेग्स लगाते हैं तो उनका हार्मोन ज्यादा बिल्डअप होता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा पावरफुल बनता है, और टेस्टोस्टेरोन जितना अपना अच्छा रहता है मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी उतना ही जल्दी आपका मसल मास रिकवर करेगी और आपका फैट ड्रॉप करेगी।
1: एक मिसकंसेप्शन जो है जनरली देखा जाता है कि महिलाओं को जिम करने की क्या जरूरत है?
0: देखिए सर, आप एक जेंट्स हो या फीमेल हो, दोनों को ही जरूरत पड़ती है, दोनों के शरीर में मसल्स है, दोनों के शरीर में जॉइंट्स है, सबको एक मसल्स को बिल्डअप करने के लिए आपको जिम ज्वाइन करनी है। लोग कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि योगा कर लो, योगा करने से आप फिट रहोगे।
1: योगा भी अच्छा है अपनी जगह, लेकिन अगर अपने को मसल्स को बिल्ड करना है
0: जी
1: तो हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए सर, मैं योगा के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि योगा खराब है, लेकिन योगा से आप अपनी पाचन क्रिया या इनर जो ऑर्गन है आपके वो अच्छे रख सकते हो, लेकिन अगर आपको मसल बिल्डिंग ही करनी है, आपको बॉडी फिटनेस रखनी है, अपन मसल मास को बिल्डअप करना है, फैट को ड्रॉप करना है, तो आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए जिससे आप अपने फिटनेस लेवल को आप अचीव कर पाए। और महिलाओं के लिए भी यही है कि आप अपने रेगुलर रूटीन में 1 घंटा आप अपना जिम में ज्वाइन कीजिए। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे, आसपास जिम नहीं है या घर से कोई परमिशन नहीं है, तो आप घर में भी अपना वर्कआउट कीजिए।
1: एक जो फिटनेस का बहुत बड़ा पहलू है उस पर हम बहुत ही संक्षिप्त में बात करना चाहेंगे, जो डाइट है। डाइट में मुख्य रूप से आप हमें ये बता दीजिए कि जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको अपने डाइट में कौन कौन सी चीजें जो है वो ऐड करनी।
0: अगर कोई एग्स खा सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई एग खा सकता है, कोई चिकन खा सकता है, तो दिन के अंदर सिर्फ 5 से 8 अंडे अपने जो रेगुलर रूटीन में आप कह सकते हैं, पूरे दिन के अंदर 5 से 7 अंडे आप ऐड कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि 8 के 8 अंडे आपको

0: एक टाइम ही खाने, वो दो से चार करके आप कभी भी खा सकते हो
1: जी।
0: ठीक है, जिसमें इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है। ठीक है, पनीर भी आप ऐड कर सकते हो
1: जी।
0: जैसे और घर का बना खाना दाल चावल, ये बहुत ही अच्छा है। राजमा चावल हो गए, ठीक है, इनमें भी आपको प्रोटीन की मात्रा मिलती है। सोयाबीन बड़ी होगी जो बहुत ही सस्ती मिल जाती है और काफी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, प्रोटीन के लिए काफी लाभदायक भी है। ठीक है, तो आप घर पे भी बना खाना आप आराम से खाइए। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप, लेकिन आप ये देखिए काफी लोग क्या करते हैं कि सर हम घर का बना खाते हैं लेकिन हम फिट नहीं रह पा रहे, हमारा वेट बढ़ा जा रहा है, क्योंकि वो क्या करते हैं घर का बना खाना इतना ज्यादा खाते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती।
1: जी जी, सही बात कही आपने कि जो एग्स हैं या फिर चिकन है या फिर किसी भी तरह का नॉन वेज आहार जो आपने बताया, वो अपनी डाइट में हम जो है वो अगर सम्मिलित करते हैं तो प्रोटीन जो है उससे अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। ऐसे लोग हमारे आसपास आपको ज्यादा मिलेंगे जो प्योर वेजिटेरियन है, उनके लिए आप कुछ ऑप्शंस और बताइए कि वो प्रोटीन का इंटेक कैसे बढ़ाएं।
0: जैसे एक सोया पनीर आती है, सोया पनीर वो खा सकते हैं, राजमा चावल खा सकते हैं। आप देखिए जो आजकल सत्तू पाउडर का काफी चलन है, जो अपने जो काले चने होते हैं उनको पीसकर ही बनाया जाता है, तो वो भी आप इंटेक कर सकते हैं। दाल चावल खा सकते हैं, सोयाबीन बड़ी अपने को मार्केट में आराम से मिल जाती है, तो वो भी आप इंटेक कर सकते हैं।
1: वे प्रोटीन,
0: और देखिए सर अगर आप इन डाइट्स को प्रॉपर अगर मेजर नहीं रख पाते, ठीक है, तो आप एक प्रोटीन का जो डिब्बा होता है, लोग इसको काफी मिसकंसेप्शन है कि भाई डिब्बा खा के बॉडी बनाई, ऐसा कुछ नहीं होता। वो चीजें सिर्फ दूध से ही बनी होती है, बस ध्यान ये रखना होता है कि आपको जो भी आप जहां से भी चीज परचेज कर रहे हो वो ओरिजिनल हो, ताकि आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो उस चीज का। वो आप ऐड कर सकते हो एक स्कूप प्रोटीन आप वर्कआउट के बाद में जरूर ऐड कीजिए, ताकि आपने जो भी वर्कआउट किया है उसकी रिकवरी के जो मोड है वो अच्छा हो जाए पहले से।
1: जी, हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि आमिर खान की जो बातें हैं उनको सुनकर उनकी लाइफ में मोटिवेशन आए, वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज को चाहे वो घर पर करें या फिर जिम जाकर करें, और अपनी डाइट को जो संतुलित करें, अपने हेल्थ को, अपनी फिटनेस को अच्छा बनाएं और एक अच्छे जीवन को जो है जीने की ओर अग्रसर हों। आमिर खान आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे फिटनेस कोच आमिर खान से की गई बातचीत, यह आकाशवाणी केंद्र सूरतगढ़ का अंशदान था। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गजलें। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंकज उदास के द्वारा गाई इस गजल के साथ।

जनाब अब्दुल हमीद अदम साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें अदम साहब ने रंग, खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गज़ल, एक ताज़ा तरीन गज़ल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले कतार से

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 11 बजने को हैं, अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labour migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a